एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन प्रत्येक पंक्ति में एक साथ किया गया है। यह ध्यान रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 94। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: की झोली भर के
1: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग।
2: वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताऊ।
3: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाऊ।
2: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
3: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहन नहीं भाई है।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉकर जेदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज है आपका स्पेशल संडे। तो यस, संडे वाली वाइब के साथ आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर आ चुके हैं और मुझे लगता है सुबह की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है हमारे आने से। तो फटाफट से अब ज़रा उठने का सोच लीजिए। वैसे आज भी धूप खिली खिली है और हवाएं शबाब पर अपने चल रही है। फिलहाल डाइवर्जन जो है वो लागू हो चुका है एंड यस, सुबह का पहला ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी तरह सुबह हम क्या सुन रहे हैं और क्या बताया जा रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए भाई, इतनी अहम बात है तो हम आकर के आपको बताने वाले हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। उससे पहले इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए।

0: फिर कोई नहीं है गम, क्योंकि ऐसा आज का थॉट ऑफ द डे कि सारे गम आपके मिटा देने वाला है। जी हाँ, आपके लिए इतना खूबसूरत थॉट ऑफ द डे का तोहफा आज के संडे स्पेशल में मौजूद है कि आप कहने वाले वाह, जितने गम थे और जिन गमों से आप कहीं परेशान थे वो सारे के सारे मिट जाने वाले हैं आज के इस थॉट ऑफ द डे को सुन लेने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे आज इतना आज सुबह सुबह इतने ज़्यादा दावे कैसे कर सकते हैं, राइट? बात तो सही कि सुबह सुबह कोई इतने ज़्यादा दावे कैसे कर सकता है, लेकिन तब तो कर सकता है ना जब सच में ऐसा हो। यस, सो अब जो आपको थॉट ऑफ द डे हम बताने वाले हैं, जो आप तक पहुंचाने वाले हैं, वो थॉट ऑफ द डे आपके जो गम थे और उस गम से जो आप परेशान थे वो सब कुछ अब मिट जाने वाला है। यस, लिटरली मिट जाने वाला है। कहीं ना कहीं होता है ना कि जो ज़ख्म हरे होते हैं वो हमको परेशान करते रहते हैं, लेकिन भाई साहब ये थॉट ऑफ द डे बड़े कमाल के होते हैं, तुसी समझ लो जी कि बहुत सोने होते जी, क्योंकि इनके सुन लेने से, इनको जान लेने के बाद में चीज़ें बदलने लग जाती हैं। अब आज का थॉट ऑफ द डे, जाहिर सी बात है आप सुनने के लिए सोच रहे हैं कोई बातों को पूरा करके अब जल्दी से थॉट ऑफ द डे भी दे दो। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं आपके मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए आरजे अदनान की तरफ से आज क्या है।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

वैसे तो कहते हैं कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। मुझे लगता है अगर इस थॉट को थोड़ा सा बदल कर ये कहा जाए कि ये थॉट नहीं एक तोहफा है, तो इसकी खूबसूरती में इतने ज़्यादा चांद लग जाएंगे कि आप चार चांद वाली बात भूल जाएंगे। सो ये एक तोहफा है, ये आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए। दरअसल आज का थॉट कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप जो खोज रहे हैं वो आपके नुकसान की भरपाई कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो खोज रहे हैं वो आपके नुकसान की भरपाई कर देगा। इसके तो वैसे कई सेंस निकल रहे हैं सच में। वैसे मुझे जो लगता है वो ये है कि मुझे उम्मीद है आप जो खोज रहे हैं वो आपके नुकसान की भरपाई कर देगा। यानी जिस सुकून की आप तलाश में हैं, जिस चीज़ को आप फील करना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आपके नुकसान की, अभी तक जो आप परेशान हुए, अभी तक जो आप हौच पौच में रहे, अभी तक जो आपके अंदर फीलिंग्स थी भागा दौड़ी वाली, एक कसक थी, एक हॉल था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। एंड मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें जिस दिन आपको वो मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है, यस मुझे उम्मीद है कि वो आप कि जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई कर देगा। यानी कुछ ऐसा जो लाइफ में आप चाम देख रहे थे, आप लाइफ का एक फ्लो चाह रहे थे, एक रफ्तार चाह रहे थे, एक बेफिक्री चाह रहे थे। वो बात कही ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो बस अगर वो बेतकल्लुफी और बेफिक्री चाह रहे थे और वो मिल जाए, तो शायद आपके जो लाइफ में नुकसान हुए हैं उस नुकसान की सारी भरपाई हो जाएगी उसके मिल जाने से। एंड लिटरली मैं उन लोगों को विशेस देना चाहूँगा जो लोग सच में कुछ खोज रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि मेरी तरफ से बहुत सारे विशेस है कि जब भी आपको मिले तो आपको ऐसा लगे कि हाँ आपके लाइफ में जो कुछ भी नुकसानात हुए थे उसकी भरपाई हो गई है। एंड सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ज़रूर मिला जिससे मेरी लाइफ की भी भरपाई हो गई। एंड थैंक्स टू दैट पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको महसूस करने के बाद आपको लगता है अब तक की जो भी लाइफ में रहा अब तक की लाइफ जो भी जी आपने जी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब जो आपने महसूस कर लिया है शायद आप कभी ना कर सकते थे, आप इससे महरूम रह सकते थे, आपको कभी ये फील ही नहीं होता। लेकिन आज अगर आपने इस चीज को फील किया है, इस चीज को समझा है, इस चीज को महसूस किया है, तो यकीन कीजिए आपको ये लगेगा कि इतना कर देने से लाइफ आपकी तर गई है। सो मुझे भी उम्मीद है कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं और उसकी खोज में लगे हैं, और जिस दिन वो मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है कि वो आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। So, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ भी होगा, और किसी के मिल जाने के बाद या कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐड हो जाने के बाद या कुछ आपके सीख जाने के बाद, कुछ आपके समझ आ जाने के बाद में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि यार क्या चीज़ मिल गई मुझे, मतलब लिटरली इट्स मैजिक, ये किसी जादू से कम नहीं है आपकी ज़िंदगी में। एंड आप कहेंगे कि वाओ, इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी, इवन इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, आपका जहन भी यहां तक नहीं गया था, और आपको वो चीज फाइनली मिल चुकी है। सो ये खूबसूरत थॉट ऑफ द डे उन खूबसूरत इंसानों के लिए है जो कोशिशें कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं कि अपनी जिंदगी को और संवार दे। उन सभी की कोशिशों को दिल से सलाम करते हैं आरजे अदनान, और आज का ये खूबसूरत सा तोहफा उनको देते हैं। हो सकता हो ये तोहफा मुझे भी कहीं से मिला हो, है ना। चलिए फिलहाल आज वक्त है कि इस खूबसूरत से तोहफे को मैं आप तक पहुंचा दूं।
अब आपको मिल गया है, अब आपको महसूस कैसा होने वाला या क्या हो रहा है ये तो खैर आप ही बताने वाले हैं। फिलहाल आज की सुबह कैसी रही ये भी आप बताने वाले हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन में जो कोई सुनता है वो चैट पर आ करके लिखते जो कुछ है वो हम तक पहुंच जाता है। फिलहाल इस खूबसूरत से नगमे के उस पार वापस आकर आपके मैसेजेस पढ़ने वाले हैं।

0: सो मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं, यही थॉट सोच सोच के कि यार बात तो बड़ी सटीक कह दी है अतार ने आज मॉर्निंग में, सुबह सुबह ऐसी बात कह के आए है। आपका ब्लश करना लिटरली भैया बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स पर। वैसे अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं और आप भी अपनी बातों को कहना चाहते हैं तो आप भी जुड़ जाइए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स को मिलता है प्ले स्टोर पर और आईफोन यूज़र्स को मिलता है ऐप स्टोर पर। करना बस इतना होता है कि सर्च के ऑफ कोर्स ऑप्शन में जा कर के आपको लिखना होता है RADIO यानी रेडियो, फिर स्पेस देना होता है और लिखना होता है GYANASTHALI स्पेस 89 पॉइंट लगाना होता है 6 फिर स्पेस FM। हालांकि आप GYANA जब तक पहुंचेंगे तब तक आपको काले और लाल रंग के आइकन में एप्लीकेशन पहले ही सर्च में बाय एटीसी लैब्स का मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके ज़रिए आप अगर फ्रीक्वेंसी से सुनते हैं तो भाई मैसेजेस नहीं कर पाते, रेडियो गार्डन से भी नहीं कर पाते। तो आप जब जुड़ जाएंगे 89.6 FM की एप्लीकेशन से तो वहाँ से आप सीधे हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे, अपने दिल की बात, अपने जज्बात और ऑफ कोर्स हर वो बात जो शायद अभी तक नहीं कह सके थे वो हमसे आप साझा कर सकेंगे। चलिए इसी कड़ी में कुछ मैसेजेस आ चुके हैं 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, तो शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं कि भाई किसने क्या लिखा है और क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं आज मॉर्निंग चौक आरजे अदनान के पास।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

तो पहला जो मैसेज आया है वो है महेंद्र दीपनकर फ्रॉम राजस्थान, लिखा है गुड मॉर्निंग अदनान सर जी। गुड मॉर्निंग महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड साथ ही आप लिखते हैं हाउ आर यू सर, आई एम गुड। और आप लिखते हैं ऑनेस्टली द मोमेंट आई हियर योर वॉइस माई पॉजिटिविटी लेवल गोज फ्रॉम 0 to 100। ओह माई गॉड। अच्छा, कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं जो बीपी को ऐसे कर देते हैं 0 to 100 वाला। थैंक गॉड कि मैं उनमें से नहीं हूँ। थैंक यू सो मच इतने सारी मोहब्बतों के लिए, और कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था इसलिए मुझे ज़्यादा ही पसंद आया। थैंक यू सो मच महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। एंड हमारी सविता दुबे जी हैं हरखापुर गोंडा से, लिखती हैं सुप्रभात सभी को, सर कल का सफ़र शानदार रहा। अरे वाह क्या बात है, आप तो कल सफ़र में थी और आपने बताया भी था, जिक्र भी किया था, और आपका सफ़र शानदार रहा ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा पूर्णिमा का मैसेज आ गया है, पूर्णिमा लिखती हैं संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप आज। इस संडे वाला गुड मॉर्निंग आपको भी, और मैं तो एकदम मस्त हूँ, चंगा हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, वजह हम बाद में बताते हैं। सो सविता जी लिखती हैं कि जीवन बहुत कठिन दिन देखी हूँ मैंने, यानी आपने जीवन का बहुत कठिन दिन देखा है, लेकिन सर अब मुझे ज्ञानस्थली मिल गया, मैं खुश हूँ। वाह क्या बात है, मतलब सच में आपको ज्ञानस्थली मिला और आपने जो फील किया वो खैर बेहतर आप ही समझ सकते हैं, पर इस बात की बधाई ज़रूर हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। एंड इसके बाद थॉट ऑफ द डे को देखते हुए लिखा है ऑफकोर्स पूर्णिमा ने कि थॉट बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी पसंद आया पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्रीति जी फ्रॉम बहराइच लिखती हैं वेरी लवली मॉर्निंग सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में प्रीति जी। एंड यस, चूंकि हम बात कर रहे थे कुछ मिल जाने की, सो लाइफ में ऐसा मुझे लगता है कभी एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ आपको कुछ तो ऐसा मिला है जिसने आपकी ज़िंदगी को एकदम चेंज करके रख दिया। आप इतने ज़्यादा खुश होंगे कि इवन वो खुशी का लेवल जो है आपके फेस पर भी समा नहीं पा रहा होगा, और शब्द तो बहुत ही छोटे पड़ गए होंगे, लेकिन उस मोमेंट से आपको ज़रूर ये फील हुआ होगा कि आपने सच में जो पाया है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, उसको तो हमने सोचा भी नहीं था और वो मिल गया ना। तो चलिए भाई, आपको ऐसा जो स्ट्रेंथ मिला है, ऐसा जो सबक मिला है, ऐसी जो जगह मिली है, ऐसा जो काम मिला है, या फिर ऐसा जो शख्स मिला है, उन सभी को डेडिकेट करिएगा ये सॉन्ग। मुझे लगता है कि ये सॉन्ग आपके उस फीलिंग के लिए है जिस पल आपको ये महसूस हुआ था कि आपको तो बहुत कुछ मिल गया है और अब आप सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

अच्छा, कई सारे ऐसे वैद्य होते थे जो पहले एक जड़ी बूटी देते थे और कहते थे कि आपकी ये बहुत बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी, ये मतलब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हमेशा कहते थे कि ये मंत्र जो है वो फूंक दिया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि चोट लगती थी तो माँ जो है जब वो सहलाती थी तो सारे दर्द दूर हो जाते थे, राइट। ऐसे बहुत सारे जादू लोग बताते हैं और कुछ तो आपने घर पे अपने फील भी किए होंगे माँ वाला जादू। एंड कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जब आप कर लेते हैं तो लिटरली आप फील करते हैं, आपके जो चेंजेस है वो आपको साफ नज़र आने लग जाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप भी जो सोच रहे हों उसको लेकर के आप वो फील कर लें, यानी वो सच में ऐसा हो जाए तो कैसा होगा? तो आपको ऐसे क्या अंदाज़ा लगता है कि क्या सच में कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा थॉट होगा या कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद में आप जो कुछ चाह रहे होंगे वो आपको फील भी होने लग जाएगा? मतलब लिटरली इस स्टेटमेंट में ऐसा जादू है, इस सोच को अपने सोच में लाने का ऐसा जादू है कि आप इसको फील करेंगे, आप सच में फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें चेंज हो रही है एंड आप जो है उसको समझ पा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं लफाजी कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। तो चलिए, आप जब तक सोचिए, और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप चैट बॉक्स पर आकर के बता सकते हैं। उसके बाद जब मैं आता हूँ तो मुझे क्या लगता है और मैं इसको लेकर के क्या मानता हूँ ये आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे छोटे से मैजिक के बारे में, जो आपकी लाइफ में सच में जब आप महसूस करते हैं तो वो आपको महसूस होने भी लग जाता है। यस।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
4: हेलो,
1: अरे कहाँ हो तुम?
4: अरे तुम्हें वो जोली शॉप याद है ना, जहाँ तुम्हें एक बार मैं लेकर गया था?
1: कौन सी?
4: अरे जहाँ तुमने वो हीरे का हार पसंद किया था।
1: हाँ, याद है।
4: लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे।
1: हाँ।
4: और मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम्हें ये हार जरूर दिलवा दूंगा।
1: काश आदमी कुछ और मांग लेती। जी हाँ, याद है।
4: मैं बस उसी के सामने वाले सलून में बाल कटवा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सो मैं मैजिक की बात कर रहा था और पूछ रहा था भाई ऐसा क्या होता है समटाइम्स जिसको मिलते हैं हमको लगता है कि हमारी लाइफ में मैजिक आ गया। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं और हम एक ऐसे ही स्टेटमेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे और आप उसको जैसे ही लिटरली आप फील करने वाले हैं आप देखेंगे कि यार सच में इतनी बड़ी चीज़ चेंज हो रही है, मतलब इतना बड़ा चेंज आ रहा है, लिटरली बता रहे इतना ही बड़ा है भैया। सो क्या चेंज है और क्या करना होता है ये आपको बताने वाले हैं। सो बात बस इतनी सी है कि आपको बोलना होता है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

नहीं नहीं मतलब ये नहीं बोलना होता है। अगर आप ये करने लग गए तो आप भी कहेंगे हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो। और ना ही आपको ये बोलना है कि भैया आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गुंडा विद योर मॉर्निंग शॉक आरजे अदनान। नहीं नहीं दरअसल आपको वो बोलना है जो अब हम बोलने वाले हैं, यानी वो आपको मैं बोलूंगा एक बार आपको बोलना है, और बोलने के साथ साथ में दूसरी बार जब आप उसको दोहराएंगे तो अपने मन में दोहराएंगे और उसको सोचते हुए दोहराएंगे। बोलना बस इतना ऐसा है कि जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा पहले खुद को महसूस करिए। जी हाँ, जैसा मैं बनना चाहता हूँ वैसा मैं खुद को पहले महसूस कर रहा हूँ। और ये देखिए, इतना आप करेंगे आपकी ज़िंदगी में सच में आपको वो चीज़ें फील होंगी। यानी इतनी सी बात है कि पहले खुद को आप वैसा महसूस करो जैसा आप बनना चाहते हो, फिर देखो आप जादू। सो जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, मस्त मौला बनना चाहते हो, बहुत फ्रैंक बनना चाहते हो, बहुत फंकी बनना चाहते हो, बहुत डीप कुछ सोचना चाहते हो, कुछ बहुत कूल करना चाहते हो, आप बस वैसा सोच तो लो एक बार प्रॉपर कि आप ऐसे हो गए हो, फिर देखिए क्या जादू होता है। ये बहुत छोटी सी बात सुनने में लग सकती है, लेकिन जब आप इसको करके देखेंगे ना तो ये जादू आपको फील होने लग जाएगा। मतलब लिटरली डज वर्क, बहुत बहुत काम करता है ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने भी उन चीज़ों को फील किया जब मुझे ये चीज़ पता चली। सो मैंने भी कुछ चीज़ों को फील किया, और जब सच में वो चीज़ें मुझे फील हुई कि हाँ मैं ऐसा हो रहा हूँ, तो काफ़ी इमोशनल हो गया, क्योंकि ऐसा लगा था कि ये चीज़ें शायद ही कभी मुमकिन हो पाएगी, शायद ही कभी मैं वैसा बन पाऊँगा जैसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जब मैंने इस स्टेटमेंट को बोला और मैंने महसूस किया, और मैंने सच में वैसा महसूस किया जैसा मैं बनना चाहता था, मुझे वो चीज़ नज़र आई, लिटरली नज़र आई। एंड मुझे लगता है आज आपको भी नज़र आने वाली है। और अगर आपको भी नज़र आ जाती है तो आप भी बता सकते हैं कि आपने भी वही सोचा है जो आप सच में बनना चाहते हैं, उसको आपने महसूस किया है, और अब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अब उसी रास्ते पर सीधे सीधे आ गए हैं। अब यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना है और इस जर्नी को, इस यात्रा को एंजॉय करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करता है। आप भी ज़रा करके देखिए, आप जैसे बनना चाहते हैं, आप जैसा होना चाहते हैं, आप बस वैसा महसूस कर लीजिए, देन सी द मैजिक, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि अरे यार क्या बात है, इधर की उधर उधर का इधर हो रहा है सब। तो चलिए, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है, एंड डेफिनेटली करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही खूबसूरत सी बात है जिसको मैंने महसूस किया था। और मुझे लगता है कि आप भी बहुत वक्त से ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो ऐसा मिले, कुछ तो ऐसा हो जिसके बाद मैं उन चीज़ों को महसूस कर पाऊँ जिसको इतनी वक्त से, इतने टाइम से मैं वो करना चाहता था या करना चाहती थी। एंड मुझे लगता है कि आज जो फ़लसफ़ा आपने जान लिया है, समझ लिया, उसके बाद अब ये मुमकिन है, और आप डेफिनेटली उसको फील करने वाले हैं, है ना।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यस यस यस, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो पे। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके साथ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। अब भाई, इस शो में हमारी इतनी सारी बातचीत होती है और इतना सब कुछ हम जानते हैं, समझते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब लिटरली जब आपसे मैं जुड़ता हूँ तो काफ़ी कुछ होता है जो काफ़ी अच्छा महसूस करा रहा होता है। एंड साथ ही साथ आपको कई सारी अपडेट्स भी हम देते हैं और फिलहाल आज भी कुछ अपडेट हम देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए काम की अपडेट फिलहाल हो सकती है। सो चलिए अब आपको ले करके चलते हैं और सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आखिर जो रोज़गार मेला 2026 लग रहा है, जी हाँ, उसके बारे में, यानी परसों 15 सितंबर को प्रतापगढ़ में ये रोज़गार मेला लगने वाला है जिसको लेकर के मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि आखिर इस रोज़गार मेले में क्या होने वाला है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है और किस तरह की नौकरियों को दिया जाएगा, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें, यस ऑफ कोर्स, इस रोजगार मेले के बारे में। सो फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। सो कई कंपनीज में से 1000 से ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ हैं जिसको फिल किया जाएगा और जिसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जॉब फेयर में किया जाएगा, यानी जो भी ऑफकोर्स कैंडिडेट्स का चयन होगा वो जॉब फेयर में किया जाएगा। और ये फिलहाल 15 सितंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने वाला है। सो आइए आपको बताते हैं कि भाई मेले की डेट और ये कहाँ लगेगा और टाइमिंग क्या है, इसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स अब आपको हम बताने वाले हैं। सो फिलहाल प्रतापगढ़ के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए रोज़गार मिला नौकरी पाने का एक अच्छा चांस हो सकता है। सो इस मेले का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के अंडर में ज़िला सेवा योजन कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस मेले में रजिस्ट्रेशन या हिस्सा लेने के लिए उन्हें एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश रोज़गार निदेशालय ने अपने एक्स हैंडल पर इस जॉब फेयर के बारे में बताया है। सो अब बात आती है कि आखिर कौन जा सकता है इस जॉब फेयर में, तो आपको बता दें शैक्षिक योग्यता की अगर बात, सो इस रोज़गार मेले में 10वीं पास को लेकर के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट्स पहुंच सकते हैं। यानी हर वो स्टूडेंट्स जो कि 10वीं पास आउट है, 12वीं इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट है, या फिर ITI से पास किया है, पॉलिटेक्निक किया है, या कोई डिप्लोमा कोर्स आपने कम्प्लीट किया है, वो सभी कैंडिडेट्स जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई अनुभव क्या चाहिए, सो पढ़ाई पूरी होने के बाद जिन कैंडिडेट्स के पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का एक्सपीरियंस जो है उसको मस्ट नहीं किया गया है, यानी वो मैंडेटरी नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी उम्र पोस्ट वाइज 26 से 30 साल के बीच है, यानी किसी में 26 है, किसी में 30 है, अलग अलग पोस्ट वाइज है। सो फिलहाल आपको हमने बताया है भैया इस रोज़गार मेले के बारे में। तारीख जो है वो 15 सितंबर 2026 है, जैसे कि आज 13 है। सो परसों लगेगा रोज़गार मेला, लगेगा कहाँ, प्रतापगढ़ रोज़गार मेला 2026। वैकेंसी जो है 1030 वैकेंसी जो है इसमें पूरी की जाएगी, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। कहाँ लगेगा, इजी हरे रामा हरे कृष्णा प्राइवेट ITI, दशरथपुर रोड, पट्टी, प्रतापगढ़। जी हाँ, और सैलरी एक्सपेक्टेड कितनी है, 20,000 पर मंथ का ऐसा कहा गया है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होना है, rozgarsangam.up.gov.in पर, जिसकी स्पेलिंग है rozgarsangam, rozgarsangam.up.gov.in इसमें लगेगा। किन पदों पर भर्ती होना है तो आपको बता दें, प्रतापगढ़ रोज़गार मेले में जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ट्रेनी मशीन ऑपरेटर है, ITI डिप्लोमा है, असिस्टेंट ऑपरेशन जैसे जॉब टाइटल के लिए लोगों की ज़रूरत है। सो सैलरी भी इन पदों के हिसाब से ही मिलेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 17,500 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी, ट्रेनी को 19,850 रुपये, मशीन ऑपरेटर को 20,500, ITI डिप्लोमा को 15,000 और असिस्टेंट ऑपरेशन को 17,000 रुपये हर महीने की सैलरी मिलेगी। सो जो भी यंगस्टर्स इस रोज़गार मेले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 15 सितंबर को आयोजन स्थल पहुंच सकते हैं। इस दौरान आप अपनी तरह के जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी ऑफकोर्स लेकर जाना उसको ज़रूर लेकर जाइए, लेकिन इससे पहले रोज़गार संगम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूर पूरा कर लिए। इसमें अगर आप किसी भी तरह की परेशानी होती है तो बाकायदा इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 155330, यानी 155-330। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही, कोई भी परेशानी आ रही है, तो इस पे अपनी क्वेरी पूछ करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। सो ये फिलहाल एक पूरी अपडेट थी जो कि
मेगा जॉब फेयर के बारे में थे। आई होप कि भाई ये आपकी काफ़ी ज़्यादा काम की होगी। प्रतापगढ़ या आसपास के रहने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जा सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि बताया गया, रोज़गार संगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और वहीं पर आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन कहीं पर भी रह जाती है तो हमने आपको बता दिया है 155-330 ये जो है एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप इस मेगा जॉब फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं और आपको इजीली यहां पे गाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप कि भाई ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है और डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आपके काम आएगा ही आएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज संडे के दिन भी आप थोड़ा सा फ्री होते हैं और आप ऐसी ही चीज़ों की तलाश करते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके काम की है तो आप तक पहुंचा दी जाए। एंड फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, आप तक पहुंचा दिया है। और यस, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं और आप जुड़ सकते हैं और आप इसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर लेना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मौके जो हैं वो आपको जब अपने आस पास मिलते हैं तो यस, बेहतर होता है आपके लिए कि आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग दूर नहीं जाना पड़ता है और अपने आसपास ही ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि भैया आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो चलिए फ़िलहाल वक्त है अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलने का, उसके बाद वापस आएंगे। आने के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहने वाला है। आज है संडे, सो ऑफकोर्स 10 से 11 गैगागोंडा विद आरजे अदनान में हम काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछने वाले हैं जिसका जवाब आपको देना है और आपके साथ में जुड़ेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपका हालचाल लेंगे और हर वो लफ्ज़ जो आपसे कहते कहते आपके खुद के रुक गए हैं वो भी सुनने की कोशिश हम जरूर करने वाले हैं अपने मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। सो स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: सो फाइनली 10 बज चुके हैं और 10 बजते ही ख्याल आता है कि भाई पूरे पूरे एक हफ्ते हो गए हैं, क्यों ना आपसे बात कर लिया जाए। तो ऑफ कोर्स आज दिन होता है स्पेशली आपसे जुड़ने का, आपसे बात करने का और कुछ सवालों को करने का। अच्छा, मेरे पास क्या होता है ना कि सवालों का जो है वो ख़जाना रहता है। ख़जाना क्यों रहता है मुझे भी नहीं पता इत्तेफाक की बात है, लेकिन रहता है, इतना ज़रूर पता है। तो फिर क्या करना होता है, करना ये होता है कि हमारे अंदर यानी मेरे अंदर जो सवाल रहते हैं वो मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसका जवाब क्या है। सो मुझे लगता है कि आज का जो थॉट ऑफ द डे है वही अपने आप में एक सवाल है। सो क्या कभी किसी ऐसे मोमेंट पे आपको लगा है कि आपको बहुत कुछ मिल गया या शायद सब कुछ मिल गया? किसी पर्सन के मिल जाने से, लाइफ के किसी सबक से जो आपको मिल गया हो, कभी अचानक से आपने फील किया हो, कभी कुछ भी ऐसा रहा हो जिसके सुनते ही, जिसके समझते ही ऐसा फील आया हो? ये आज का हमारा ज़रा सवाल है। इसके अलावा तो हम बहुत सारी बातें और करने वाले हैं। नंबर वही है 6393 316 429, यानी 6393 316 429। उससे पहले हम बता दें कुछ मैसेजेस आ गए चैट बॉक्स पर। नरेंद्र जी काफ़ी वक्त बाद आए हैं बलरामपुर से। गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। इसके बाद जो हैं आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। संजय जी फ्रॉम पटना, बीवी के ताने और एफएम के गाने सुनने ही पड़ते हैं, या ढिंचक ढिंचक ढिंचक ढिंग। एंड इसके बाद गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में। अरविंद फ्रॉम मनकापुर हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्वीट फ्रेंड्स एंड आरजू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस यस यस यस यस, फिलहाल अब हम चलते हैं अपने ऑफकोर्स लिसनर की तरफ और देखते हैं कि भाई कौन कॉल पे जुड़ गया है और क्या सवाल हमको करना है, क्योंकि हम अपने सवाल को लेकर के तो रेडी हैं, आप अपने जवाब को लेकर के ज़रूर आइए और हमसे आज बातचीत करिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, आपके अपने रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम पर। चलिए फिलहाल देखते हैं कौन है। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, क्या चाल है और कैसी हैं आप?
1: अभी एकदम मजा में
0: छू, मेरा सब छुई छू है
1: कमी ना है मजा
0: में? नहीं नहीं, मजा में पूरा मजा में आधा पौना भी नहीं, पूरा पूरा
1: मजा में,
0: राइट राइट राइट। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ।
0: अरे वाह, कोई स्पेसिफिक कोई वजह है या बस कॉल मिल गई?
1: सर दो है,
0: दो है, दूसरी क्या है?
1: पहला कौन सा बताएं?
0: दूसरी बताइए पहले।
1: ओके, सो पहला तो
0: नहीं, दूसरा बता, दूसरा, हाँ, दूसरा,
1: तो दूसरा ये है कि टिकट कंफर्म हो गई, अक्टूबर में जाने की तैयारी है राजस्थान की।
0: मानो घनो राजस्थानो, अच्छा बहुत बढ़िया,
1: राजस्थान जयपुर,
0: क्या बात है, जयपुर, हाँ हाँ हाँ
1: जी, इस बार दोनों जगह जानी है।
0: अरे वाह, क्या बात है
1: जी। और एक है कि हमारी बिटिया जो है,
0: हाँ,
1: कल का साइंस एग्जीबिशन था क्लास में, तो उसकी हेड थी, तो कल वो जीत चुकी है कॉम्पिटिशन और वो विनर है।
0: अरे कांग्रेचुलेशंस टू हर, क्या बात है, वाओ वाओ।
1: तो सर आज ना उसके जो टीम में जो जितने भी मेंबर्स थे वो सारे आज आ रहे हैं हमारे घर पे सेलिब्रेट करने के लिए।
0: अच्छा, सब घर पे आ रहे हैं?
1: जी घर पे आ रहे हैं, हमने इनवाइट किया था पर्सनली और उसने भी इनवाइट किया था, बट मैंने एज अ गार्जियन मैंने खुद उनको इनवाइट किया था, तो उनके पेरेंट्स, कुछ के पेरेंट्स लाएंगे, कुछ ऑटो से आएंगे।
0: ओके, मतलब कुछ पैदल आएंगे, कुछ ऑटो से आएंगे?
1: नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स लेकर आएंगे, कि जैसे किसी के अगर भैया तो वो लेकर आएंगे, नहीं तो कुछ लड़कियां जो ऑटो से आएंगी।
0: ओके,
1: तो आज बस वही धूम धड़ाका मस्ती पार्टी होगी
0: भैया, पार्टी शार्टी होने वाली है। वैसे उसे मुझे वो लाइन जाननी है जो आपने व्हाट्सएप पे जब उनको इनवाइट भेजा होगा तो नीचे डबल स्टार के बीच में आपने जब टाइप किया होगा।
1: नहीं, नहीं, मैंने, मैं, मेरा जो इनविटेशन होता था पर्सनली मैं खुद कॉल करके बताऊंगी।
0: हाँ, वही वही वही,
1: मुझे ये मैसेजेस का थ्रू ये मुझे ज्यादा कम समझ में आता।
0: कोई बात नहीं, उसमें जो आपने, अच्छा आपने अगर कॉल किया होगा तो कॉल में जो लास्ट में आपने बोला होगा कि भैया आइएगा लेकिन ये लेते आइएगा, तो क्या मंगाया?
1: नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं कहा था मैंने, ये कहा था देखिए मुझे तो परमिशन लेनी थी गार्जियन के तौर पे, तो क्या होता है ना कि बच्चों को इनवाइट करो उससे पहले उनके गार्जियन को कन्विंस करना पड़ता है।
0: कन्विंस करना पड़ता है जी। मैं किस कंपनी से बोल रही हूँ, क्या बोला था आपने? मैं किस कंपनी से बोल रही हूँ, क्या बोला था आपने शुरुआत में, क्या किस कस्टमर केयर से कॉल?
1: भेज ही देते क्योंकि कुछ दिन, तीन दिन पहले उसके फ्रेंड की एक पार्टी थी तो बच्चे गए थे।
0: अच्छा,
1: तो जाहिर सी बात है कि जब एक दूसरे के घर लोग जाते हैं तो पेरेंट्स जरूर भेज देते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: हाँ, तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, पर्सनली सभी की मम्मियों से बात की पहले, उसके बाद मैंने सभी के पापा से बात की। जी हाँ, तो जिनके भाई है वो भैया लेकर आएंगे, छोड़ देंगे, तो शाम तक बच्चे अपना रहेंगे, खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, फिर और जो ऑटो से आ सकते हैं वो ऑटो से आएंगे।
0: क्या बात है, यानी काफी ज्यादा मजा होने वाला है। लेकिन
1: जी, मेरी मम्मी मेरी... क्योंकि कल वो लोग जीते हैं ना, तो उसकी जो एक्साइटमेंट है ना अलग ही लेवल की है।
0: करेक्ट करेक्ट। लेकिन मेरी मम्मी नहीं जाने देती थी दोस्त के यहाँ, उसके पीछे कोई वजह आप समझ सकती? मैं तो नहीं समझ पाया, उसे मुझे एक वजह लगती जो मैं बताऊंगा अभी।
1: उनका जो मम्मिया जो होती है ना, ज्यादा ही परेशान होती है।
0: नहीं,
1: उनका जो कंसर्न लेवल होता है वो हाई लेवल का होता है।
0: अच्छा, दरअसल उनको ये पता था कि उनका लड़का वैसे ही काफी, उन्होंने कहा यो जाएगा तो और बिगड़ जाएगा। हमारे फ्रेंड्स थे ही ऐसे बचपन से, मैं क्या करूं।
1: हाँ, वो सोचते ना कि अगर बच्चा बिगड़ा है तो और बिगड़ जाएगा। हाँ, नहीं बिगड़ा है तो बिगड़ेगा ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बवाली वाला। वैसे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एक बार वापस से बिटिया रानी को, बहुत बहुत मुबारकबाद। और
1: थैंक यू,
0: लाइफ में जरूर अच्छा,
1: बहुत ज्यादा एक्साइटेड।
0: नहीं, बहुत अच्छा, और हम सब लोग मिलकर अच्छी बात है कि उसकी उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं 89.6 FM पर। एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल भी किया और ये बताया सारी जानकारी।
1: मुझे ये बताना था
0: जी
1: कि आज आपने जो थॉट चुना था,
0: जी सुना नहीं था, सुनाया था
1: मुझे, मैंने अपने आप से रिलेट किया। मैं सोच रही थी कि अगर मेरी कॉल लग जाएगी तो मैं इस बात को जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत पसंद आया, एंड थैंक यू आज के थॉट के लिए, क्योंकि आज आपने ये थॉट चुना, बेसिकली ये संडे था।
0: बेसिकली
1: मैं सुन पाई, तो आज आपने ये थॉट चुना ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसके लिए थैंक यू।
0: क्या बात है, थैंक यू। वैसे कुछ आप बताना भी चाहेंगे कभी, अगर आप शेयर कर पाए तो, अदरवाइज कोई बात नहीं।
1: ओके, तो पूछिए।
0: मतलब पूछा तो मैंने,
1: नहीं फिर से पूछिए ना।
0: अच्छा, पर्सनली तो फिर वो अलग से कॉल करनी पड़ेगी। वैसे सवाल बस इतना सा था,
1: ऑल राइट, ऐसे पूछिए ना, कॉल किया है मैंने।
0: सवाल इतना सा था कि आपने जो थॉट ऑफ द डे सुना है, तो क्या कभी किसी ऐसे मोमेंट में आपको स्पेशली फील हुआ है, जैसा कि आपकी आपकी जो भी कमियां थी, जो भी नुकसान था लाइफ का, वो भरपाई सब कर दिया उसने, एक सिचुएशन ने, एक ऐसे थॉट ने, कैसी लर्निंग ने, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग।
1: सर मैं बता तो दूं, लेकिन लाइफ ऐसे किसी के, आपने इसमें एक चीज और ऐड की थी।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: किसी कुछ मिल जाने पे या किसी पर्सन के आ जाने पे कुछ ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा फील हुआ,
0: कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है दोनों तीनों चीज़।
1: ये जो पर्सन है ना, ये मेरी लाइफ में रिलेट कर पा रहा है इस टाइम।
0: क्या बात है, दैट्स वेरी ग्रेट। मतलब आप काफी ब्लेस्ड हैं, मैं यही कहूंगा।
1: जी, मैं ब्लेस्ड, मैं आज मॉर्निंग से यही सोच रही, जब आपका प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था, आज संडे था, तो मैं जब मॉर्निंग टाइम में उठी तो मैंने भगवान को ना थैंक्स कहा उन सभी चीजों के लिए जो आज तक इन 8 सालों में 9 सालों में मेरे साथ हुआ है। पापा थे तब जो चीजें हुई हैं, और उनके जाने के बाद जो चीजें मुझे मिली है, तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है। और जो चीजें इन दिनों, इन महीनों में मुझे मिली है, इन सालों में जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहूंगी।
0: वाओ, क्या बात है।
1: उठते ही इस चीज को फील किया, और आज मुझे लगा था कि अगर मेरी कॉल लग जाएगी तो मैं इस चीज को जरूर शेयर करूंगी।
0: बिल्कुल, नहीं थैंक यू सो मच कि आपने उस चीज को फील भी किया और कॉल भी किया।
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत वेलकम बिटिया रानी को।
1: थैंक यू, बाय
0: बाय बाय, टेक केयर। वैसे मैं फ्लो फ्लो में क्या वेलकम बोल गया, ओह माय गॉड, कुछ भी मतलब निकल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना था, वेलकम निकल गया, ये देखो भैया कुछ भी हो रहा है। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल पर कौन है। लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा मिला है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी लर्निंग, कोई ऐसी सीख, कोई ऐसा सबक, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी रात, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे दिन, कोई ऐसी सुबह, कुछ भी ऐसा, दोपहर भी चलेगा, तो बता सकते हैं आप, मतलब हाँ हमसे बता सकते हैं आप, कोई बात नहीं, डोंट वरी। नहीं नहीं, मैं कोई और बात नहीं करूँगा, लिटरली मतलब सच पता, आई शपथ। हाँ जी, कौन है?
2: अर्जुन की सबके अलग है पहचान, 98.6 ज्ञान स्थली रेडियो गोंडा की है वो शान, और कहते हैं उन्हें आरजे अदनान, आरजे अदनान। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
0: आज ही सुबह तो आपने हमारी बुला दीजिए, अब हमारी सही वाली सुबह हो गई है। क्या बात है। जी जी, श्रीमान संगीतकार जी
3: बोल रहा हूँ, नरेश प्रजापति।
0: जी
2: और
0: जी।
2: ग्रीन सिटी से बात कर रहा हूँ।
0: वाओ क्या बात है। सो नरेश जी आपका रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो गाना गा करके वेलकम किया उसके लिए तो हम जितना शुक्रिया अदा करें, वैसे दो चार थाल हैं यहाँ पे, मैं उतारूं आरती आपकी।
2: वाकई में सर आपका ये अंदाज है वो बड़ा लाजवाब है, और मुझे आपका ये अंदाज है ना वो बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने कहा चलिए कार्यक्रम में कॉल करने से पहले ना अदनान जी के लिए छंद पंक्तियां लिख दी जाए, और ये पंक्तियां अभी मेरे जहन में याद आई और तुरंत मैंने उन्हें लिख डाला।
0: हाउ सो स्वीट, मतलब बहुत प्यारा लगा मुझे सुनकर के, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे वही सेम सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में आया है, कोई ऐसा शख्स आया हो, कोई ऐसी लर्निंग मिली हो जब आपको लगा हो कि मेरी जिंदगी की जो नुकसान हुए थे सारी भरपाई हो गई, कभी ऐसा लगा हो?
2: जी सर एक बार और फिर से दोहराइए इस सवाल को।
0: जी जी सवाल ये है कि कभी क्या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा शख्स मिला है जब आपको ये लगा हो कि भाई आपकी लाइफ में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई?
2: अच्छा भरपाई हो, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ना ही कोई ऐसा पल आए कि भाई हमें कभी कुछ परेशानियों से गुजरना पड़े। सबके जीवन में खुशियां ही आती रहे, मेरा तो यही कहना है, और मेरे जीवन में तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि कोई ज्यादा क्षति हुई और उसकी भरपाई किसी के आने से मिली हुई, लेकिन सब कुछ अभी तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है और अच्छा ही अच्छा होता रहे, यही मेरी तो ईश्वर से दुआ।
0: वाह क्या बात है। वैसे एक ऑफर है आपके लिए
2: जी,
0: अगर आपको कुछ ऐसा फील करना है कि आपके जो थोड़े बहुत भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई करना हो तो आप दुखरनाथ मंदिर के पास आइएगा, ठीक है?
2: और यदि ऐसा कुछ होता है ना तो उसकी भरपाई के लिए मेरा एक सबसे बड़ा साथी है ना, सबसे सच्चा साथी और सबसे अच्छा साथी, वो है रेडियो।
0: क्या बात है, क्या बात है, बड़ी काम की
2: बात कर दिया। कुछ पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने खुद ने लिखी है, मोबाइल का जो आजकल ज्यादा क्रेज हुआ है ना।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो आपकी अनुमति हो तो मैं वो छंद पंक्तियां बोलना चाहता हूँ।
0: जी जी अनुमति, मैं बोल के बताऊँ या कोई मेल वगैरह करो? अरे अनुमति अनुमति की दादी मती भी है, कोई बात नहीं, आप करिए आराम से।
2: बड़े तो बड़े क्या करे, बच्चों को भी मोबाइल की लत लग गई है। बड़े तो बड़े क्या करे, बच्चों को भी मोबाइल

0: सपनों को भी, मानो मोबाइल ही उनका सहारा हो गया है।
1: क्या बात है, वाह।
0: काश मैं भी फेमस हो जाऊं, काश मैं भी फेमस हो जाऊं। रील बनाने का ट्रेंड चल रहा है और यही सोचकर सोशल मीडिया की राह पर मेरा फ्रेंड चल रहा है।
1: आइला ये वाला बहुत मजेदार था।
0: तो ये भी मेरे द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। और जो मोबाइल का आज बहुत ज्यादा, यानी कि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो सबसे पहले मोबाइल को ही देखता है कि भाई हाँ मोबाइल रहा है, कोई का मैसेज, कोई का क्या, कोई संदेश वगैरह कुछ, व्हाट्सएप पे कुछ, तो इस तरह का जो क्रेज। बच्चों को देखो तो हाँ, उनने यूट्यूब खोला और उसमें फिर वो कार्टून वाले शॉर्ट्स वीडियो चालू हो जाते हैं।
1: नरेश जी, नरेश जी,
0: बहुत ज्यादा
1: बिल्कुल जी। एक आपके लिए लाइन अर्ज कर रहा हूँ
0: जी,
1: कि नरेश जी ने 89.6 एफएम पर मैसेज किया, कमाल हो गया। नरेश जी ने 89.6 एफएम पर कॉल किया, मैसेज दिया, कमाल हो गया। आपने कॉल किया, आपकी शायरी सुन, आप तो फेमस और धमाल हो गया।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया सर। और वाकई में आपका ये अंदाज है वो बड़ा लाजवाब है और हर किसी को अपनी ओर खींच लाता है। एक गजब सी कशिश है आपकी बातों में,
1: आए है, क्या बात
0: एक गजब सी कशिश है आपकी बातों में। तभी तो हम 89.6 एफएम गोंडा के दीवाने बन रहे हैं और अपनी ओर खींच लाती है इसकी तरंगे। तभी तो शौक से हम इसे सुन रहे हैं।
1: ज्ञान
0: मनोरंजन ज्ञान मनोरंजन और सूचनाओं का ये खजाना है और वक्त बदला है, रेडियो नहीं अब भले ही डिजिटल का जमाना है। जिद है, जोश है और जुनून है, बड़ी दूर से इस कार्यक्रम में आए हैं साहब, रेडियो सुनते हैं क्योंकि इसमें शांति और सुकून है।
1: क्या बात है भैया, दिल खुश कर दिया, वाह वाह वाह। मतलब ये आपका कॉपीराइट वाला है, आपने लिखा है?
0: नहीं नहीं, ये खुद मैंने ही लिखा है।
1: अरे वाह, क्या बात है, मतलब ये आपको लिखने का हुनर जो आ रहा है वो बहुत जबरदस्त है, मतलब मुझे तो काफी मजा आ रहा है।
0: नहीं, ये कॉपीराइट मैंने कहीं से भी नहीं किया, किसी का भी ये कॉपी नहीं है।
1: नहीं, आपका कॉपीराइट है ना, ये आपका खुद का कॉपीराइट,
0: मेरा खुद का होता है।
1: करेक्ट करेक्ट, वही मैंने कहा ये आपका कॉपीराइट है। एंड थैंक यू सो मच नरेश जी की कॉल किया और इतनी बेहतरीन शेर व शायरी हमको सुनाई आपने।
0: जी मजा आ गया सर, वाकई में आज का जो दिन है ना, संडे का दिन, उसका बिल्कुल भरपूर फायदा हो गया।
1: बिल्कुल
0: सार्थक संडे हो गया और
1: संडे।
0: मेरे बेटे का नाम भी सार्थक
1: है। अरे क्या बात है, तब तो सार्थक स्क्वायर हो गया।
0: बिल्कुल,
1: बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।
0: और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं मेरे साथ मेरे भाई राहुल जी, और वो भी कॉल लगा रहे हैं, लगेगा अन्नू पांडे जी सुन रही हैं।
1: अरे बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी कॉल रिसीव करने वाला हूँ।
0: चलिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मुझे भी, थैंक यू सो मच रमेश जी, लव यू।
0: ओके थैंक
1: यू। सो भाई ये देखिए कितना ज्यादा मजेदार ये पल होता है जब इस तरह से आप एंट्री लेते हैं और उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें अपने आप में बड़ी बेहतरीन लगती मुझे कि भाई आप जुड़े हमसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन है। हाँ जी हेलो।
2: पेड़ से फूल लाखों गिरते हैं,
1: क्या बात,
2: उठाता है कोई कोई, मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई,
1: निभाता है कोई कोई, वाह।
2: काबिले अदा, काबिले सद एहतराम जनाब अदनान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब।
1: क्या बात है, जब तक आपका संडे में प्यार भरा ये आदाब नहीं आता पचपेड़वा से, तब तक हमको लगता है कि मेरे अंदर का जो पेड़वा है वो बड़ा ही नहीं हो रहा है। बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने वापस से कॉल किया और आप हमसे जुड़े। आप पहले हालचाल बता दिए, कैसे हैं आप?
2: मेरा हाल बहुत अच्छा है और इसी मोहब्बत पर हम कुछ कहना चाहेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, प्लीज अर्ज कीजिए।
2: कहा गया है कि मोहब्बत एक ऐसा फूल है जिसे कोई एक बार सूंघ लेता है तो जिंदगी भर उसकी खुशबू को नहीं भूलता। मोहब्बत में इतनी ताकत है

0: कि सुनसान रास्तों और वीरान इलाकों को भी आबाद कर सकती है। मोहब्बत वो पाक लफ्ज है जिसको अदा करते हुए दो बार ओठ एक दूसरे को छूते हैं। कुदरत ने शायद इसीलिए मोहब्बत में इतनी मिठास रखी है कि दुश्मन को भी आसानी से खत्म किया जा सके। मोहब्बत इंसान को इंसानियत का तरीका बताती है। मोहब्बत चाहे किसी से भी हो, जज्बाए मोहब्बत नेक होना चाहिए। मोहब्बत माँ बाप, बहन भाइयों, वतन, दरख्तों, यहाँ तक कि एक पहाड़ से उखड़े हुए पत्थर से भी हो सकती है, मगर शर्त यह है कि जिस नजर से तुम इस पत्थर को देखते हो उस नजर से फिर किसी और को मत देखो। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत जैसे जज्बे को बदनाम करते हैं।
1: क्या बात है, वाह, बहुत
0: ऐसा लगा आपको?
1: अरे मतलब विजय पांडे जी क्या बात कर रहे हैं, आपका बोलना ऐसा लगता है साक्षात बचपिड़वा से जो आप सीधे बोल रहे हैं वो सीधे हम तक आ रहा है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, और मोहब्बत को लेकर जो आपने बयां किया दिल खुश हो गया, क्या बात है।
0: ये तो आपका प्यार है, स्नेह है, और हम आपके चैनल से जुड़े हुए हैं स्टूडियो से।
1: बिल्कुल,
0: और हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम मारा काल लगे तो सुनाएं।
1: नहीं, बहुत बहुत अच्छा, और शुक्रिया कि आपने कॉल किया आज के संडे वाले इस शो में और हमारा दिन आपने बना दिया।
0: ये तो अनु पांडे जी का स्नेह है हमारे बहन का कि हम भूल जाते हैं तो वो हमको आगाह कर देती है,
1: आगाह कर देती कि आज रविवार का दिन है, आपको मोहब्बत को बताने का दिन है। वाह क्या बात है
0: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद आपको,
1: धन्यवाद। सो भाई ये पचपड़वा से हमारे विजय पांडे जी थे, और इनका अंदाज तो भाई आप इससे पहले भी कई हफ्तों में आप सुन चुके हैं, और जाहिर है कि आपको पसंद आता होगा क्योंकि कुछ अंदाज होते ही हैं शुरू शायराना अंदाज में, मतलब शेर व शायरी ऐसी आती है जैसे लगता है कि वाह क्या बात है, बस सनराइजेस हो रहा है, पक्षी जो है वो आसमां में उड़ रहे हैं, हवाएं अपनी ही रफ्तार से चल रही है, और एक सुबह की जो एक वाइब है वो आपको मिल रही है, कितनी खूबसूरत बात है ना। फिलहाल आइए चलिए, अब गिटार सुनने का वक्त है, हाँ लिटरली गिटार सुनने का वक्त है। किस तरह की गिटार, ये तो हम आपको गाना सुनाए दे रहे हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह की गिटार की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM।

0: आए है क्या बात है। अरे अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे भाई। गाने कैसे हैं? अच्छे अच्छे चले जाए तो फिर हम कौन सी चीज़ें। फिलहाल एक बार वापस से आपका संडे स्पेशल गागा गुंडा विद आरजे अदनान स्पेशल वाले प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, जो कि है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Arjun Khan.

0: सो यस ऑफ कोर्स संडे का टाइम है, कॉल आप घुमा रहे हैं 6393 3164 29 पर, यानी 6393 316 429 6393 3164 29। और इस पर हमारी आपकी बातचीत हो रही है। फिलहाल हमारा जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या कभी आपको किसी शख्स, किसी सीख, किसी सबक, किसी जगह, किसी भी दिन ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसा मिला है जिसके मिलने के बाद आपके जो लाइफ के नुकसान थे, जो ज़िंदगी का नुकसान था, उसकी भरपाई हो गई है? कभी कभी ऐसा हैव यू एवर फील? सो यस, टेल मी। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि उनके साथ का क्या एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ।
0: और मैं अर्जुन अदनान बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप?
1: अच्छा मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, खुशी हूँ।
0: अरे वाह, आपका नाम ही खुशी होना चाहिए। सही बात है, आप हमेशा खुश रहते हैं।
1: अरे खुश रहना पड़ता है जिंदगी में, तो बहुत सारा उतार चढ़ाव आया है, बहुत सारी दुख हुई है, पर जो खुशी जो मिलता है ना अपने अंदर, जो मन के अंदर जो खुशी है उसको झांक लीजिए, उनका बात मान लीजिए, आप हमेशा खुश रहेंगे।
0: मन के अंदर जो खुशी है, आज रुकिए, जाके घर पे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किधर पड़ी है ये।
1: खुशी आपका मंदिर, आपके मन में ही है खुशी।
0: अच्छा, मेरा मन ही शायद इतना अंदर है कि हाथ में टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ चिमटी डाल करके, जैसे वो पहले सिक्के निकालते थे, जैसे सिक्के निकालते थे ना गुल्लक से डाल करके, बस वैसे ही। सो ये बताइए, सवाल जो मेरा था वो आप समझ गए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए।
1: आओ, कोई जो आपको, जिसको देख के लगा कि सब कुछ आपका मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया,
0: तो थोड़ी सी आवाज आपकी बाबा से कट रही है।
1: मुझे रेडियो से बहुत कुछ खुशी मिली है, बचपन से, याद से नहीं, बचपन से ही।
0: वाह, रेडियो ने आपको काफी कुछ दिया, राइट? वाओ, क्या बात है। और मुझे ये इस बात की खुशी है कि आपको कम से कम ये पल महसूस हुआ कि आपका जो नुकसान हुआ जिंदगी भर का, उसकी एक भरपाई हो गई, ये बहुत अच्छा लगा। और मेरी दुआ है कि आपके साथ ये रेडियो और इसका रिश्ता हमेशा रहे, ताकि आप हमेशा खुश रहे।
1: हमेशा हमेशा साथ रहेगा, जब तक मनूंगी तब तक साथ ही रहेगा मेरा रेडियो।
0: क्या बात है, तो चलिए रेडियो को डेडिकेट करते हुए दो लाइन का कोई सॉन्ग गुनगुना दिए।
1: रेडियो के ऊपर तो गाना तो याद नहीं है।
0: नहीं नहीं, कोई याद नहीं करना, मतलब जो भी आपके मन में जैसे रेडियो के प्रति जो प्रेम है उसको समर्पित करते हुए आप सुना सकते हैं दो लाइन।
1: लीजिए, थोड़ा बात करेगा ये भी आपसे।
0: अच्छा,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं।
0: अच्छा, कैसा है आज का आपका रविवार का दिन? अरे वाह, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं।
2: ठीक। दिल मानता नहीं है।
0: दिल मानता नहीं है तो उसको मनाना भी नहीं है, सीधे लेके चले आना यहाँ तक।
2: ठीक।
0: आइए फिर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, क्या बात है, देखिए कितनी अच्छे से बात हो गई भाई, उनका दिल मानता नहीं है और मैंने इनवाइट इसीलिए कर लिया। हाँ जी सविता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ, रेडियो के लिए गाना गाने बोल रहे हैं।
0: हाँ हाँ, कोई भी, मतलब अपना बचपने वाला गाना, कोई भी ऐसा जो आपको पसंद है, आपने रेडियो पे सुना है, वो भी गाना चलेगा, सब चलेगा,
1: सब चलेगा,
0: सब चलेगा।
1: रेडियो बजने लगा है, उसको भूल
0: गई। मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड कर ले तू जरा। हालांकि उसको नहीं गाना आपको। हाँ हाँ हाँ,
1: कल मैं जा रही थी तो जाने टाइम में जो रोड के किनारे जो चीजों में देखी हूँ उसको देख के मैं गाने गाऊँ?
0: हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज,
1: महसूस करके बहुत ही अच्छा लगा था।
0: क्या बात है।
1: जिंदगी सब है सुहाना, यहाँ चल क्या है किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, और एक गाना गाना चाहती हूँ।
0: इसके आगे वाला नहीं गाए
1: यार। नहीं, और एक गाना।
0: ओके ओके।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
0: यडले यडले ये वाला नहीं करा आपने। ये हमें बड़ा मजा आता है।
1: ये मैं नहीं निकाल पाऊंगी, आप ही निकाल पाएंगे। आप तो सबका ही नकल। अच्छा सर, मेरा आप नकल करके बताइए, मैं जिस तरह से बात करती हूँ।
0: हेलो, मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ।
1: अच्छा।
0: और सबसे सबसे बढ़िया पता है क्या था? आपने जो गाया जिंदगी एक सफर है सुहाना, और आपने यहाँ को क्या बोला था?
1: पता नहीं, भूल गई।
0: अच्छा, फिर से गाइए, फिर से वही गाइए जैसे गा रहे थे अभी, आपको याद आ जाएगा। गाइए।
1: मैं भी भूल गई।
0: दो लाइन।
1: सफर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ को आपने जो यहाँ बोला है वो बहुत बढ़िया लगा है हमको। अब हम यहाँ की जगह कहेंगे कोई आना है तो आप यहाँ आ जाओ, मतलब यहाँ आ जाओ।
1: आज यहाँ आ जाओ, आप हमारे गांव कब आएंगे बताइए?
0: वहाँ वहाँ हम जल्दी आएंगे।
1: हाँ जल्दी आइए, आइए सर एक बार, ताकि आप जो आए थे ना 2 साल पहले, आप और 2-4 बार आ जाइए तो और भी बहुत बहुत बन जाए हमारे गाँव में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम उधर का पास लेने वाले हैं, MST ले लेंगे कि आए दिन हम उधर से ही गुजरेंगे।
1: ना ये मजाक नहीं करी आप।
0: अरे हम मजाक करते ही नहीं है, मजाक तो हमको मना कर दिया गया, डॉक्टर ने कहा ज्यादा मजाक कर रहे हो आप, सेहत के लिए सही नहीं है।
1: नहीं नहीं तो सही, आप आ जाइए कभी, ठीक है?
0: पक्का पक्का, डन एकदम। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच।
1: शुक्रिया सभी को,
0: थैंक यू। सुबह ये तो थी हमारी सविता दुबे जी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और देखा भाई आपने इनका निराला अंदाज कितना ज़्यादा खूबसूरत है। फिलहाल इसी कड़ी में चलते हैं आगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई उनका जवाब क्या होने वाला है। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, यहाँ कॉल ही नहीं लग रहा है। ए जी, यहाँ तो कॉल ही नहीं लग रहा है। चलिए फिलहाल हम लेते हैं अगली कॉलर को और देखते हैं भाई कौन है अगली कॉल पे। हाँ जी, हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: अरे गुड के साथ मॉर्निंग आपकी भी, कैसी हैं आप?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बता मैं तो, आप कैसी हो?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
3: हाँ,
0: अनु के साथ ये खासियत है कि जब अनु से बात करो तो पहले अनु सांसें खींच करके उसके बाद आप बात शुरू करते हो, मतलब लिटरली काफी मजेदार रहता है, बहुत बढ़िया।
3: पता है?
0: नहीं पता, नहीं पता।
3: आपकी बातें सुन सुन के इतनी हंसी आती, इतनी हंसी आती है कि क्या बताऊं।
0: क्या बताएं?
3: हम जाते तो जहर से बातें हंस रही हूं तो हंसते हुए बोलूंगी ना।
0: हमको बहुत अच्छा लगता है।
3: हमको बताएं सर, आप हमको चिढ़ा रहे हो।
0: नहीं नहीं, चिढ़ा नहीं रहा है, मतलब चिढ़ाना क्या, मतलब ये आप सच में करते हो, बहुत अच्छा लगता है और ये हम सभी को पसंद आता है।
3: आगे से नहीं करते यार।
0: नहीं नहीं, प्लीज प्लीज करिए, मतलब अरे मतलब मजा आता है आपको जब ऐसे आप कहते हो तो ऐसा लगता है कितना सारा एक्साइटमेंट है अंदर, कितना कुछ भरा है कहने के लिए, तो हम लोगों को बहुत पसंद आता है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं। अभी अविनाश जी से आप पूछ लीजिएगा, उनकी कॉल आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, पक्का बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे एकदम। अरे अरे, अविनाश भैया से नहीं पूछेंगे तो भैया विजय पांडे भैया अगर आप पहले करते तो आपको पता चल जाता, वो भी यही कहते हैं। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप बताइए, आपको कभी ऐसा जिंदगी में महसूस हुआ है कि एक वक्त बाद कुछ ऐसा मिला हो जिसको लगा हो कि भाई इसके बाद हमारे जिंदगी में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई है?
3: हुआ है ऐसा, पता है पहले ना मैं दूसरा चैनल सुनती थी, तो फिर वहाँ पे विविध भारती के कार्यक्रम बहुत रिले होने लगे।
0: अच्छा।
3: तो हमको बहुत गुस्सा आता था, विविध भारती के कार्यक्रम हमको तो पसंद थे। पर उनके घर पे पसंद थी, किसी और के घर पे वो आके करे वो हमको नहीं पसंद था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो हम बहुत निराश थे। लेकिन जब हमारे यहाँ हमारा गोंडा का FM आया, रेडियो गैलेक्सी 89.6 FM आया ना, तो हमको इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि पूछिए मत, फिर सारे नुकसान की भरपाई हो गई और मेरा टाइम फिर से पास होने लगा।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब आपको लगा कि
3: आप खुशी मिले और इतना खुश हो गई ना, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब तो अपने घर में हर टाइम कुछ भी करें, अच्छे अच्छे तो मिलते हैं।
0: वाह तो चलिए ये खुशी बहुत महसूस हुई ना, आप यही तो कह रहे हो।
3: हाँ।
0: तो अब हमारी तरह आप बोले इतनी खुशी,
3: इतनी खुशी
0: नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने बोला उस तरह बोलना है, इतनी खुशी। अरे नहीं मतलब, अरे इस इमोशन में मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आप, मतलब बहुत जज्बात है आपके अंदर, उसके बाद आप ये बोलना चाह रही इतनी खुशी, ऐसे बोलिए
3: इतनी खुशी।
0: ठीक है थोड़ा सस्ता था लेकिन चलेगा।
3: अभी सस्ता है ना, तो अभी जो आप बोल रहे थे नरेश भाई को, मैं आपके दुख रहे नाम मंदिर पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर महंगा हो जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, इतनी खुशी नहीं चाहिए।
3: और वो खुशी ना कुछ ज्यादा ही दुगनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं ना पहले मंदिर के सामने बैठूंगी तो थोड़ी थोड़ी देर में उधर गली में जाके देखती रहूंगी, जो सामने गेट है वो कॉलेज का ना, उधर देखती रहूंगी, देखूंगी कुछ खास मतलब कोई खास उधर से आ रहा है ना, फिर आके मंदिर
0: आज तो मतलब काफी ज्यादा दुखरनाथ मंदिर पर भीड़ है भाई, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, और आज तो वैसे ही बहुत सारे लोग
3: आएंगे। जब भीड़ कम होगी तब आऊंगी बैठने के लिए उठा।
0: अच्छा
3: मतलब इसको मैं ढूंढ रही हूँ ना, कुछ कैसे निकल गए, मैं देख ही नहीं पाई भीड़ में।
0: चलिए बहुत बढ़िया है, आपका इंतजार रहेगा, एंड थैंक यू सो मच शानू की कॉल किया और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें बताई।
3: अगर आप जिम ना, मैं एक सॉन्ग भी गुनगुनाना चाहूंगी।
0: अच्छा प्लीज जल्दी थोड़ा सा बस। हाँ
3: जल्दी से,
0: हाँ हाँ मतलब थोड़ा जल्दी दी, और भी कॉल समय लेना है फटाफट से। अच्छा ठीक है, सो नेक्स्ट आप वीक जरूर प्लीज तैयार रहिएगा, पक्का है ना, एक सॉन्ग हम आपसे सुनेंगे।
3: आज भी मैं तैयार हूँ और वो सॉन्ग लास्ट वाला है, इसीलिए सोचती हूँ गा दूँ।
0: अच्छा ठीक है तो गा दीजिए।

0: अलविदा।
1: अभी नहीं कहने वाले अलविदा, अभी पूरे 20 मिनट बाकी हैं। डोंट वरी, मैं अभी अलविदा नहीं कहने वाला, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। सो भाई, ये तो थी अनु, और ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग बात। अब अगर इनको हमें एक वर्ड में डिफाइन करना है कि ये कौन थी, तो ये थी ऑलराइट। बड़ा मज़ेदार रहता है। सो काफ़ी ज़्यादा फन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रही है, और इसी कड़ी में आइए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार
1: जी। नमस्कार अविनाश जी, कैसे हैं आप?
2: जी जी, बहुत बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? खुश मिजाज तो लग रहे हैं, लेकिन अब अंदर ही अंदर आप कैसे हैं पता नहीं है, लेकिन
1: आज सब अंदर वाली बातें बड़ी कर रहे हैं। कोई कह रहा मन में खुशी, हमने कहा जा करके घर जाके टटोलना पड़ेगा, मन काफी अंदर है। अब आप भी कह रहे हैं अंदर से कैसे हैं, अंदर से भी आपको क्या लग रहा है, कैसे होंगे हम?
2: अब तो देखिए क्या है कि मतलब कि हम देखिए हो सकता है अंदर से खुश ना हो, लेकिन दिखाने के लिए बहुत खुश मिजाज रहने की कोशिश करते हैं।
1: नहीं नहीं, देखिए
2: ऐसा तो हो सकता है ना।
1: देखिए एक बात हम बता दें आपको, अगर हमने ऐसे कर दिया तो उसका मतलब हम अंदर से खुश अनु पांडे की तरह, अनु भी अंदर से खुश रहती है और मैं भी जब अंदर से खुश रहता हूँ तो ये अंदर से आता है ये वाला।
2: जी जी बिल्कुल, और अनु पांडे की क्या बताएं, वो तो लगातार ही ज्ञान स्थल के नए श्रोता को, नए नए श्रोता को लाने की कोशिश करती है, और इसमें
1: बिल्कुल
2: 90% सफल भी होती है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए वो जो जोड़ने वाले सिलसिला जो जारी रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और भी आगे इसको जारी रखे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, और वो 90% का तो मुझे कोई परसेंटेज नहीं पता, लेकिन वो जो शिद्दत से जो कुछ भी करती हैं वो जरूर पूरा होता है, मुझे इतना पता है।
2: जी जी, नहीं मुझे पता है 90%, क्योंकि देखिए वो उन्होंने सुबह से मतलब कि सबको फोन लगा के पहले से सूचित कर देते हैं कि आज आने वाला है कार्यक्रम, आप लोग जुड़िएगा। तो उसमें कुछ कोशिश मेरा भी रहता है, मेरे भी जो संपर्क में है उन सभी को मैं बोलता रहता हूँ। तो इससे क्या है कि अब हो सकता है किसी का कॉल ना लगे, या फिर किसी कोई काम में बिजी हो तो बस ना जुड़ पाए, लेकिन इसलिए मैं 90% के 100 तो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए बस यही है कि 90%।
1: क्या बात है, अपनी बात लेकिन आपने 100% कह दी।
2: वो तो बोलना ही है, वो तो अब 100 तो अब हो सकता है कि अगर 100 से भी अगर ज्यादा होता तो वो भी हो जाना था।
1: 100 से ज्यादा 101 ही होगा, उससे ज्यादा क्या ही होगा। अच्छा,
2: 100 से ज्यादा से क्या, बस परसेंट होता है ज्यादा, और कुछ नहीं।
1: सही बात है। अच्छा तो ये बताइए अविनाश जी, कि कभी आपने जिंदगी में ऐसा फील किया कि कुछ उस चीज के मिल जाने के बाद आपको लगा हो कि आपके नुकसान की जो जिंदगी की थी वो भरपाई हो गई?
2: हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2011 का जब भारत विश्व कप जीता था, तो उस समय देखिए मैं अपना जो 12वीं की एग्जाम दे रहा था, बोर्ड एग्जाम, तो मैंने वो मतलब इस साल जो 2011 का जब टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैंने अपना एग्जाम बोर्ड एग्जाम छोड़ दिया था, और पूरे ध्यान में रहा क्रिकेट। वो मतलब पूरे जब 19 फरवरी जो 2011 का जब बांग्लादेश और भारत का मैच था, उसी दिन से मैं 2 अप्रैल तक लगातार मैंने मतलब कि दिन रात एक कर दिया, मतलब मैच एक भी गेंद मैंने ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूँ देखना, क्योंकि अगर बिजली चल जाता तो मैं रेडियो हमारा रहता है वो, उसको मतलब कि मैंने जो सिलसिला आपको बताया था कि मैंने एक स्पीकर है मेरा ब्लूटूथ, उस पर कनेक्ट करके सुनता था, तो इसी तरह से मैं सुनता, मतलब एक गेंद के वो मैंने कमेंट्री नहीं मिस की। तो अब जब भारत विश्व कप जब अपने हाथ में उठा लिया, सचिन तेंदुलकर जी का जो आखिरी विश्व कप था, उन्होंने जब अपने विश्व कप हाथ में उठाया और उनको कंधे पर उठा के पूरे टीम जब मैदान से बाहर जा रही थी, तो मुझे इतना खुशी मिल रही, मुझे बहुत लगा कि चलिए मेरा बोर्ड एग्जाम अगर मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, भारत तो वर्ल्ड कप जीत गया।
1: माय गॉड, क्या बात है, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी, जहां बोर्ड एग्जाम तो मिस हुआ लेकिन वर्ल्ड कप आने की खुशी बहुत थी, क्या बात है।
2: जी जी बिल्कुल,
1: बहुत प्यारी बात बताई।
2: ये मेरे, और जब धोनी जी का जो छक्का जो लगा था, तो रवि शास्त्री ने जिस प्रकार से अपना कमेंट्री किया था, वो मुझे मतलब कि दिल को छू जाता है। वो भी जब क्या है कि जब भी मौका मिलता तो हम जैसे युवराज सिंह का 6 गेंदों में 6 छक्का जो देखते हैं, और इसी तरह से मैंने वो एम एस धोनी वाला भी जो है वो भी मैं अपने मोबाइल पर सेव कर रखा है। वो इस तरह से कुछ कुछ जो लम्हे होते हैं वो हम सबके लिए इतने खुशीदायक होते हैं, जब भी हम देखते हैं तो फिर में वही उमड़ आता है, वही सब यादें।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, एंड बहुत सारे विशेष आपको।
2: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप फिर से एक बार गुड मॉर्निंग।
1: थैंक यू सो मच। सो ये हमारे अविनाश जी थे, और जिन्होंने हमसे बातचीत किया, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारे शख्स और शख्सियत, जिसे कह सकते हैं कि भाई काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, बड़ा मज़ा आया। चलते अगली कॉल पे। हाँ जी हेलो,
3: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: हसीना भी मंसूरी बोल रही, बालदाना का इंदौर से।
1: अरे क्या बात है, इंदौर से आपका स्वागत करते हैं हसीना जी, अपना हालचाल बता दी।
0: बस अच्छे सर, आप कैसे हो?
1: बस अच्छे क्यों हैं आप, ज्यादा अच्छे होना चाहिए आपको।
0: हाँ ज्यादा अच्छे, जैसे सुनते हैं वो लोग ज्यादा ही अच्छे रहते हैं।
1: ऑल राइट, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा जिंदगी में कभी हुआ है कि कुछ ऐसा मिल गया हो और आपको लगा हो कि जो अब तक के नुकसान हुआ था जिंदगी का उसकी भरपाई हो गई है, कभी ऐसा लगा?
0: नहीं ऐसा तो नहीं लगा सर, कभी भी
1: ऐसा नहीं लगा।
0: नहीं
1: तो मुझे लगता आपको गुंडा का टिकट कटाना चाहिए।
0: लगेगा सर,
1: फिर लगने लगेगा जब आप स्टूडियो में आप आएंगे, आप कहेंगे अरे ये तो वही जगह है भाई जिसके बाद मुझे ये लगने लगा कि मुझे सच में सारा नुकसान की भरपाई हो गई हमारे।
0: जी जी जी सर, बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: है ना। मैं गलत देखी कहता ही नहीं हूँ, भले ही आदमी मजाक में ले लेता, हमको बहुत ज्यादा लोग मजाक में लेते हैं। अच्छा आप बता सकती हैं हसीना जी, ऐसा क्यों होता है कि लोग हमको मजाक में ले लेते हैं?
0: नहीं मजाक में तो मेरे को नहीं लेते सर, मैं जो बोलती ना तो वो मेरे को सीरियस नहीं लेते हैं और मेरी बात को भी सच मानते हैं, बहुत तारीफ करते हैं।
1: नहीं ये तो आपकी बात हुई कि आपकी तारीफ करते हैं और आपको सीरियस लेते हैं, इसके लिए तो हम दुआ करते हैं हमेशा आपको सीरियस लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लेते, मुझे मजाक में लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे क्यों ऐसा होता है?
0: अब मजाक अपनों से कई की जाती है, दूसरों से नहीं की जाती ना सर, बहुत ज्यादा अपनापन है इसलिए आपको ऐसा करते हैं आपके साथ।
1: पक्का वो मजाक ही करते ना हमारे साथ?
0: हाँ मजाक करते। अच्छा, तो मजाक की जाती है।
1: ये फिरकी ले रहे थे, हम समझ नहीं पाए, हम मजाक करते थे, वो हमको मजाक में लेते थे, लेकिन वो सीरियस लेते हैं, लेकिन वो ये बताते नहीं थे कि वो मजाक में लेते हैं और ये हमारे साथ मजाक होता था।
0: हमने बताया ना सर आपको।
1: अभी अभी गुत्थी सुलझ गई। वाह क्या बात है, और मैं चाहूंगा कि कभी आपको ऐसा कोई मोमेंट जरूर ये कुदरत फील कराए कि आपको लगे कि आपका जो लाइफ में जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई किसी एक शख्स के मिलने के बाद या कोई सबक मिलने के बाद या किसी ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद या कुछ भी ऐसा मिलने के बाद महसूस हो।
0: जी आमीन सर, आपकी दुआ हो जाए हमारे साथ तो ऐसा हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी।
1: बेशक बेशक, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया।
0: जी एक गाना गा के सुना दो।
1: अरे प्लीज प्लीज प्लीज सुनाइए।

0: है, ठीक है।
1: वाह, क्या बात है, क्या आवाज है आपका भाई, आपको तो और अच्छा। नेक्स्ट वीक आप प्लीज पूरा एक गाना प्रिपेयर करके मुझे सुनाइएगा, एक स्टैंजा के साथ प्रॉपर,
0: जी।
1: पक्का ना?
0: दूसरा सुनाओ क्या, अभी और
1: अच्छा सुना दी दूसरा भी।

0: नौकरी छोड़ के, ये सरस का गाना है सर।
1: बड़ा भारी पड़ जाएगा आपके पास आना, आदमी को नौकरी छोड़ना पड़ जाएगा। किसी की नौकरी तो नहीं छुड़वा दी आपने?
0: नहीं, ऐसा नहीं करते हम। ना नौकरी छुड़वाते हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कोई पशु पक्षी है, कहीं रोड पे कुछ किसी का कुछ हो गया हो, तो भी दो मिनट खड़के उसका हालचाल पूछते हैं। मगर कोई कोई क्या सर उल्टा बोल देते हैं। अभी एक जने से मैंने पूछा था, कोई के हाथ में लग गई थी, तो मैंने कहा भैया आप कहाँ से गिर गए थे, क्या हुआ था? तो बोले आपको क्या लेना देना, आपका मेरा इलाज करवा रहे हो क्या? ना बताओ भैया, कोई भलमाई का जमाना ही नहीं होता।
1: ऐसा होता है
0: यानी कैसे कैसे लोग पड़े।
1: ये पड़े
0: हम लोग किसी का भी दर्द देख के ना सर अस्पताल में भी कभी जाते हैं तो उनसे पूछते हैं सर कि आपको क्या हो गया था, क्या परेशानी आ गई थी, मतलब नॉलेज मिलता है इस सर से, मतलब क्या हो गया था।
1: हाँ करेक्ट, सही बात है। नहीं, आपने अगर अच्छी नीयत से पूछा है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बधाई है कि आप कम से कम वो इंसानियत आपके अंदर है वो आप फील तो करते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है
0: जी। हमारे
1: थैंक यू सो मच कॉल भी करने के लिए आपका। सो भाई, ये थी हमारी हसीना जी और इन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश से कॉल किया था। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो। ऑलराइट, सो भाई ये मुझे लगता है कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है जिस पे कॉल फिलहाल नहीं लग पा रही है, और हम चलते हैं अब अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल आखिर किसकी है। हाँ जी, हेलो। ओहो, सो ये लगातार कुछ नेटवर्क का इशू आता जा रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ये ज़्यादा ही तो नहीं अपने अपन को फील कर रहा है। ये नेटवर्क भी होता है ना, कई बार इतना ज़्यादा इसको बुरा लगता है कि भाई हम लोग अच्छी बात ही नहीं कर सकते, बताओ ज़रा। चलो फिलहाल देखते हैं। हाँ जी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके?
2: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर?
1: बहुत बढ़िया। राहुल जी आपका स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच। एंड राहुल जी, आपने हमारा सवाल सुना, हमने क्या पूछा?
2: आज सवाल से ज्यादा आप भरपाई करवा रहे हो सभी से।
1: तो आपकी कोई भरपाई हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई हो तो हम जुगाड़ बताते हैं फिर।
2: नहीं, भरपाई नहीं होगी तो भी क्या है सर, आप हो ना, आप अकेले सब, एक अकेला सब पे भारी, वो बात तो आप अकेले ही हो, बहुत सारी भरपाई का कि बागडोर आपको संभालनी पड़ेगी सर।
1: नहीं, मैं दरअसल भारी वारी जैसा कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरा वेट का हम बताएं तो राहुल जी, मेरा वेट जस्ट 60 kg है, मतलब यकीन कीजिए ना कीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। आवाज़ भले ही मेरी 2-2.5 kg की अकेले है, 58 kg के हम होंगे।
2: आपका वजन तो 60 के आसपास ही होगा
1: है ना, और आवाज़ 2 kg है तो 58 मान लीजिए मेरा वजन है, 2 kg की आवाज़ हो गई, कितनी होगी आवाज
2: सर?
1: जी
2: हमारे साथ हैं रेडियो की आन बान शान, ज्ञानस्थली रेडियो के सर आरजे अदनान।
1: अरे थैंक यू सो मच,
2: शुरू से सुन रहा हूँ सर आपका प्रोग्राम। क्या सविता जी का कॉल था, नरेश जी का था, अनु पांडे जी का, विजय पांडे जी का, तो मैं सुन रहा हूँ सर। अभी अविनाश जी का था नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से।
1: क्या बात है, तो मजा आया
2: पूरा
1: आपको।
2: प्रोग्राम शुरू से, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था, मेरे को टाइम नहीं मिला। अभी आपके लिए मैंने 10 मिनट पापा से रिक्वेस्ट करके निकाला है।
1: अरे
2: क्या करे सर, बाकी सबके लिए तो मैं इतना समय नहीं निकाल सकता, आपके लिए निकाला है मैंने।
1: थैंक यू।
2: तो मेरे को ये पर्टिकुलर ये बात बतानी पड़ेगी ऑन एयर, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैं आंखों में कहीं धूल तो नहीं झोंक रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, वैसे हम आंखों में चश्मा लगाते हैं, डोंट वरी। एंड जो बोला है आपने वो मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। वैसे क्या काम कर रहे थे, इतना ज्यादा बिजी हैं, वगैरह बता सके तो?
2: वैसे मैं खेत में हूँ अभी, खेत का काम कर रहा था।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: अभी मैं अमनी का पास नरमा बो रखा, अगर जानते हो तो आप।
1: निर्मा,
2: नरमा कपास।
1: अच्छा कपास, जी जी जी कपास जानते हैं। नरमा शायद आपके यहाँ लोकली बोला जाता होगा।
2: हाँ, हरियाणा दिल्ली एनसीआर में बोला जाता है क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में आते हैं।
1: अरे
2: जो है हरियाणा बॉर्डर पे है हम, तो दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, हरियाणा, ये सब दिल्ली एनसीआर में आते हैं।
1: देखिए मतलब आप कपास बो रहे हैं और अपने पिताजी से आपने स्पेशली थोड़ा सा छूट मांगी और कॉल किया, मतलब मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मुझे लगता है प्यार,
2: आप कब के बिछड़े हुए हमें आप आज मिले हो, तो आपके लिए तो जाने पहचाने से अजनबी की तरह निकलने हो आप, तो थोड़ा बहुत तो फिर हमने प्रॉमिस भी किया था आपने की अगले हफ्ते हमसे प्रॉमिस होना था कि आपके अगले हफ्ते लगाना,
1: बिल्कुल
2: क्या करेंगे प्रॉमिस, लेकिन मैं प्रॉमिस वैसे ज्यादातर निभा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं करता नहीं हूँ प्रॉमिस, क्योंकि कई बार प्रॉमिस हर कर दे और फिर प्रॉमिस के लिए टाइम ना मिले, उसे निभा ना पाए, फिर हम लोग ही कटघरे में सबसे पहले खड़ा होंगे इसके लिए, हम तो पतली गली होके पहले निकल जाते हैं सर।
1: सही बात है, लेकिन लेकिन आपने राहुल निभाया, मतलब मैं बहुत दिल से खुश हूँ कि आपने उस चीज को इतना सीरियस लिया और आज किया, तो मतलब ये एक प्रेम नहीं तो और क्या है। थैंक यू सो मच।
2: ठीक है सर, आपके लिए गाना है,
1: अरे
2: आपके लिए
1: प्लीज प्लीज प्लीज।
2: कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जिंदगी जीने के लिए मरना उसी के लिए, कहते हैं खुदा ने सा नी सा धा धा पधा नी सा नी।

0: तरह मिला तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। मेरा थोड़ा गला तबीयत भी खराब है, मैं दौड़ के आया हूँ तो अच्छे से नहीं गा पाया।
1: माय गॉड राहुल जी, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है और आपने गला भी बोला।
0: धीरे धीरे गाया मैंने, नेक्स्ट टाइम अच्छे से गाऊंगा। थोड़े पापा भी है पास में, क्या करूँ सर, मजबूरी का नाम होता है ना दोस्तों।
1: पापा पास में और गाना गाना, मतलब इससे बड़ा डेंजर कुछ नहीं होता। आसपास किसी यार बहुत होती है कि अगर सुन ले अच्छा गाना।
0: हाँ गाना तो, लेकिन मैंने क्या करूँ, मैं आपके लिए थोड़ा तो करूँ, नहीं तो मेरे को सब लोग ये कहेंगे कि आपने तो ज्ञान स्थली पे जाके कुछ अच्छा सा कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तो गा दिया।
1: दो लाइन में भी आपके लिए गाना चाहूंगा
0: जी, जरूर सर।

0: जी सर, आपके लिए तो बेशुमार सभी लिसनर हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2008 में सीधा किस्मत कनेक्शन में ले गए हमें, तो अच्छा लगा सर। गाने मैं भी गाता हूँ, आपके बसरम साहब को आपने याद किया सर, मैं भी नेक्स्ट टाइम गाऊंगा कभी अच्छे से एकदम मैनेज करके। आप थोड़ा असमंजस की स्थिति थी तो थोड़ा
1: कोई बात नहीं, हम समझते हैं, करना मुश्किल था बहुत, लेकिन इतना प्यार दिया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं।
0: जरूर हम राही प्यार के फिर मिलेंगे, चलते सर।
1: चलते आप चलते
0: बोल रहे हो सर।
1: जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत प्यार दिया। दरअसल मेरे लिए मैटर ये नहीं करता आपने कैसे गाया, आपने गाना गाया और मुझे डेडिकेट किया, वो मोहब्बत दर्शाता और कोई बात नहीं, इसलिए मैं पूरी पूरी कद्र करता हूँ।
0: जी सर, धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यारे इंसान है। और देखिए ना, मतलब ये इमोशन नहीं तो और क्या होते हैं कि कोई काम में इतना ज़्यादा बिजी है और आसपास वालिद हैं आपके, और सोचिए मतलब मुझे लगता है डेंजरस में से इससे बड़ा डेंजर और कोई काम नहीं होता है कि आपके पापा हों, भले ही कितना भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, लेकिन अगर गाना गा ले और सुन लो और देख लो आप एक्सप्रेशन कि पापा ने देख लिया और उसके बाद आँखों से घूर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कितना, मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पापा के बोल ना देखिए ये क्या गाया है काफी ज्यादा खतरनाक सा लगता है, मतलब साउंड करता है बहुत खतरनाक। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका?
2: सर मेरा हाल चाल अच्छा है, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, मैं तो लगता है कि कोई आकाशवाणी का बहुत सीरियस शो चल रहा है।
2: हाँ, है
1: नहीं, आप बहुत सीरियस है आज, इसलिए हम कह रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है मैं खुद ही एक उधर सीरियस आरजे से बात करूं। जी बताइए अपने बारे में, आपने ट्यून किया है।
2: ड्रीम तो था आरजे बनने का, पर पूरा नहीं हुआ, तो कभी स्टूडियो पे आऊंगी तो माइक में बोलूंगी जरूर।
1: अरे ड्रीम्स कम्स ट्रू हियर, यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, आप जब चाहिए तब आइए, आपके लिए दरबार खुला है 89.6 एफएम का 18 घंटे सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब 18 घंटे चलता है ना रेडियो, इसलिए कह रहा हूँ। वही मैं सोचूं, बाकी लोग सोचेंगे 18 घंटे क्यों बोला, 24 घंटे क्यों नहीं, तो बाकी के जो घंटे होते हैं वो दरअसल बंद रहता है ना, इसलिए 6 घंटे 18 घंटे चलता है आराम से। सो मोहसिना आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है। सवाल मेरा सेम था, क्या आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी के मिल जाने या किसी चीज के मिल जाने के बाद?
2: बहुत से जगहों पे तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही लंबा गैप हो गया था मेरे और मेरे रेडियो के बीच में। फिर जब हमने ज्ञानस्थली को सुना तो हमें ऐसा लगा कि हाँ हमारे जीवन में खुशियाँ जो है वो दोबारा से वापस आ गई।
1: वाओ क्या बात है।
2: देखिए जिस ईयर मेरी शादी हुई थी उसी ईयर पे इसको ओपन किया गया था, 2022 का सन था, तो उसके बाद हमने इसको सुना था। और शादी से पहले 2-3 साल के लिए गैप हो गया था, रेडियो मेरा बंद था, तो उसके बाद जो खुशी हुई वो बहुत ही अच्छी लगी, और जब से मैंने इसको सुना मैं कंटिन्यू सुनती रहती हूँ।
1: वाओ, तो कभी मतलब ये मुझे जरा बताइए कि जैसे आपको जब ये पता चल गया गोंडा में एफएम आया, तब आपने कहा कि चलो अब इत्मीनान हो गया, आप शादी करके हम जा सकते हैं, नहीं तो अभी तक कोई आया नहीं था तो हम कैसे गोंडा छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ
2: नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जब अच्छा। आपका ये मतलब रेडियो ज्ञानस्थली नहीं था तो हमारे ट्रांजिस्टर पे फैजाबाद का वो चलता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर से जो है वो कभी कभी नेटवर्क पकड़ता है या नहीं पकड़ता, तो उसे विविध भारती भी हम लोग कनेक्ट कर लेते थे, लेकिन फोन में ऐसा नहीं है। रेडियो गार्डन पे जाए या फिर एप्लीकेशन लोड करेंगे तो वो तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन रेडियो गार्डन पे नहीं आता था।
1: अच्छा।
2: तो मैंने इसके लिए एप्लीकेशन लोड किया था आपका, फिर बीच में कुछ ऐसे इशू हुए उसको बंद कर दिया, फिलहाल मैं रेडियो गार्डन पे ही सुनती हूँ।
1: ओके वाह क्या बात है।
2: उससे पहले 2-3 साल के लिए मेरा रेडियो बंद हो गया था, तो उसके बाद जो एक बैग मतलब मेरी छोटी सिस्टर है उसके थ्रू मुझे पता चला कि अपने गोंडा में भी हो गया है दुखनाथ के पीछे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी।
1: नहीं वही मैंने कहा कि अगर आप इसलिए नहीं शादी कर रहे थे कि भाई कोई गुंडा है नहीं, जिम्मेदारी कोई निभाएगा कैसे, तो मतलब मैं सोचूं कि इस एहसान का मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा, लेकिन फाइनली आज आपने बता दिया फिलहाल ऐसा नहीं था, मुझे बहुत राहत हुई, नहीं तो मैं बोझ तले दबाता अभी तक, लिटरली बता रहा हूँ।
2: आपकी
1: कौन ले
2: कभी सीरियस होते ही नहीं है,
1: सीरियस
2: मतलब शो के दौरान तो नहीं होते हैं, तो लोग आपको ऐसा करते हैं घुमा देते हैं, आप लोगों की बातों में उनको घुमाते हैं, फिर लोग आपको घुमा देते हैं, वो आपको लगने लगता है लोग आपकी सेल्फी ले रहे हैं।
1: नहीं मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि अभी मुझे लगता है पेट्रोल थोड़ा सा मेरा फ्यूल बच जाता है जब लोग मुझे घुमाते हैं, मतलब सच में बाइक से और स्कूटी से घुमाते हैं ऐसा नहीं है, जब मेरे फ्रेंड्स मुझे घुमाते तो मुझे खुशी होती है आज मेरा पेट्रोल बच रहा है। एंड थैंक यू सो मच मोहसिना, बहुत ही प्यारी आपने बातचीत किया और शुक्रगुजार हूँ कि आपको आपका रेडियो मिल गया और लाइफ टाइम आपको यूं ही खुशियां मिलती रहे, ऐसी मेरी दुआ है आपके लिए। लाफिस, थैंक यू सो मच। तो भाई ये मोरबी गुजरात से मोहसिना थी जिन्होंने बातचीत किया और रहने वाली चूंकि गोंडा की हैं तो एक मोह तो है, और वैसे भी ज्ञानस्थली एफएम के जो भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं उनको बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि भाई इस तरह से हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
1: जी गुड मॉर्निंग आशु जी, कैसी हैं आप लखनऊ से?
3: बहुत अच्छी सर जी।
1: उधर हवा चल रही है कि नहीं चल रही है?
3: चल रही है सर, मौसम अच्छा हुआ है इसमें।
1: मौसम अच्छा हुआ तो हवा नहीं चल रही है क्या?
3: नहीं चल रही है सर, हवा भी चल रही है।
1: अरे इधर हमने फैन ऑन कर दिया, उधर हवा नहीं चल रही क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आप मजाक ले रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे थे?
3: नहीं सर, हवा बहुत अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी।
1: अरे क्या बात है। हाँ तो मैंने वो बर्फ भी लगाया वो पीछे। अच्छा तो बताइए भाई आपको कब महसूस हुआ ऐसा लाइफ में?
3: सर जी हमारे साथ तो बहुत कुछ अच्छा हुआ, ये तो जीवन है सर, सुख दुख तो लगा रहता है सर।
1: बेशक बेशक, बट कब ऐसा लगा कि कोई चीज ऐसी मिल गई है जिसके बाद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई है?
3: सर जी हमारे दो तो मुर्गा था ने बच्चे मेरे दोनों है।
1: वाओ।
3: और साथ दिया मेरा, और जब से हमें दीदी जोड़ी रेडियो ज्ञानस्थली से सर,
1: लेकिन
3: बहुत हम दुखी और बहुत शांत रहने लगे थे सर।
1: अंडरस्टैंड।
3: भाई दीदी ने जोर दिया उससे थोड़ा मन रहता है सर।
1: मुझे लगता है दीदी ने कई लोगों को और कई लोगों के दिलों को जोड़ा है क्योंकि जिस तरह से उनका नेचर है बहुत अच्छी है वो, सच में। नहीं वैसे भी वो देखा मैंने कि सबके लिए वो साथ निभाने आ जाती हैं और जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो जरूर करती हैं।
3: बिल्कुल सर।
1: क्या बात है। तो दीदी को डेडिकेट करेंगी कोई गाना आज? आज मौका मिला है दीदी को करने का।
3: तो नहीं होता कोई सॉन्ग लेकिन बिल्कुल सर।
1: नहीं कोई भी दो लाइन ऐसा जो आपको बहुत प्यारा सॉन्ग हो भाई वो आपकी बहुत प्यारी दीदी को खुद बखुद डेडिकेटेड हो जाएगा।
3: सर। उंगली पकड़ कर मैं हूँ चली माँ, ओ मेरी माँ तू मेरी बहना।
1: वाह, मतलब क्या जो माँ को डेडिकेटेड गाना होता है वो एक माँ की तरह जो बड़ी बहन ने फर्ज निभाया आपने उनको डेडिकेट किया, लिटरली मतलब अनबिलीवेबल। एंड बहुत सारी खुशियां मिले दीदी को और बहुत सारी वो अच्छाइयों को देखे, महसूस करे, उनकी लाइफ में जो उनकी कमियां हैं वो सब कुछ दूर हो, मैं ऐसी दुआ करता हूँ आपके लिए भी और उनके लिए भी। थैंक यू सो मच। बेशक, एंड थैंक यू सो मच आशु जी कॉल करने के लिए। क्यों सुबह ये थी हमारे साथ में आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ नवाबों के शहर से, और फिलहाल जो कॉल्स हम नहीं ले पाए उसके लिए हम माजरत, लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आज वक्त ज़्यादा हो गया, अगले वीक हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि जो लोग रह गए हैं भाई वो भी उनसे भी बात हो और हर हफ्ते हम बात कर पाएँ, पॉइंट टू पॉइंट बातें हो पाए। एंड यस फिलहाल अब चूंकि मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, क्योंकि इससे नहीं देंगे तो मैं अगले प्रोग्राम में कैसे आ पाऊँगा भाई साहब, जादू थोड़ी ना है। तो मैं इस प्रोग्राम से तो जा रहा हूँ लेकिन अगले ही प्रोग्राम में वापस से गीता दीदी के साथ लौट रहा हूँ टॉफ़ी लेकर के। तब तक के लिए आप सुनते रहिए ये वाला गाना जो आपको झूमने पर तो मजबूर करेगा लेकिन आप कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: उठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी
1: हे मामा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ये वाइब तो शुरू होने वाली क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम संडे स्पेशल गीता दीदी के साथ हम्टी डम्टी विद गीता दीदी शुरू हो चुका है और मैं इस प्रोग्राम की होस्ट और हम सब की दीदी और चहेती दीदी और रंग बिरंगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बार हर संडे को कोई नए कपड़े के साथ हमारी गीता दीदी आ जाती है।
0: आपको इतनी जलन क्यों होती है बाय द वे मुझसे?
1: जलन नहीं होती है, मेरी क्यूरियोसिटी होती है कि इतने नए नए कपड़े आप धोते कैसे हैं, हर हफ्ते एक नया कपड़ा आ जाता है, मतलब ये सोचता हूँ मैं, वो भी रंग बिरंगा।
0: नहीं, मुझे जलने की बदबू आ रही है।
1: बिल्कुल नहीं, यहाँ जलेगा तो स्टूडियो बंद बंद है, आग पकड़ लेगा। सो दीदी।
0: हाँ हाँ बोलिए
1: दीदी।
0: बोलिए ना।
1: यस ऑफ कोर्स, आपका एक बार वापस से दीदी वेलकम करते हैं हम्टी डम्टी विद गीता दीदी में। आज हमारे काफी श्रोता आपको सुन रहे हैं, इतने दिन से आप आ रही हैं, इतना सारा प्यार देते हैं लोगों को, इतनी ज्यादा स्टोरीज आपको पसंद आती है, आज उनके लिए जरा बोलिए जो लोग स्टोरी को सुन करके कहते हैं कि वाह क्या बात है, मजा आ गया।
0: मुझे तो ऐसे लोगों के ऊपर मतलब फख्र होता है कि वो आज के समय में भी हमारे जैसे छोटे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और पसंद करते हैं और फिर उसको उसकी सराहना भी मतलब करके हमारे जो दिल को बाग बाग कर देते हैं। तो ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके लिए मैं सुबह की सुप्रभात।

0: बिल्कुल
1: आधार तो बना है ना आपका।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तब तो ठीक है। ये लीजिए देखिए आ गई हैं सविता दुबे जी। नमस्ते गीता दीदी और सर जी के लिए।
0: नमस्ते, नमस्ते नमस्ते भाई सविता जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है। सो गीता दीदी आप हमारे बाकी श्रोता भी बहुत स्पीड से आए हुए हैं आपकी स्टोरी को सुनने के लिए और सब जानना चाहते हैं कि आज
0: तो
1: कौन सी स्टोरी
0: आज
1: है?
0: तो मैं स्टोरी का खजाना लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आज जो है हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो पूरा माहौल ही जो है वो ऑरेंज कलर में रंगने वाला है। तो उसमें हमारे नन्हे मुन्ने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और होप शायद कुछ फान आए इधर। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग हुई है तो आने में थोड़ी सी मुझे भी दिक्कतें हुई हैं और बच्चों को भी दिक्कतें होंगी क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि आज जो है वो सकुशल इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें।
1: बिल्कुल तो क्या स्टोरी आज होने वाली है?
0: बस आज स्टोरी में मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे योग्यता हो जाती है ना लोगों के अंदर तो बड़ा उनको गुरूर हो जाता है, घमंड आ जाता है और उस घमंड में वो फिर दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते हैं।
1: ये तो दिक्कत होती है मतलब बुराइयां जो शुरू हो जाती है
0: तो ऐसी कुछ कहानी मैं लेके आई हूँ कि कभी भी जो अपनी योग्यता का घमंड नहीं करना चाहिए।
1: तो चले
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की कहानी है योग्य कौन। तो मैंने बताया ना योग्य वही है जो जिसके पास अगर योग्यता हो तो सहनशीलता का भी गुण हो, वाणी भी अच्छी हो, हर चीज उसका मतलब मधुर होना चाहिए तभी उसकी पहचान जो है बनती है। तो कहानी ऐसे है कि गंगा नदी गौमुख से निकलकर उत्तरांचल में कुछ दूर तक एक नदी बहती है जिसका नाम है जाह्नवी, यानी गंगा की ही वो धारा है। उसी जाह्नवी के किनारे एक महर्षि थे, उनका एक आश्रम था जहाँ धर्म शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल में कड़ा अनुशासन था, गुरु की आज्ञा मानना, परस्पर प्रेम रखना और सभी का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें वहाँ के प्रमुख नियमों में से थीं। अब इसी गुरुकुल में विभूति, दक्षेस, सुवास और नवीन नाम के चार शिष्य पढ़ा करते थे। विभूति और दक्षेस बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी बुद्धिमान थे और हर विद्या को शीघ्र ही सीख भी लिया करते थे। लेकिन उनमें एक बड़ा दोष था, बहुत ही ईर्ष्या करते थे दूसरों से, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के थे और अहंकारी भी थे, यानी कि उनको अपनी शिक्षा का बहुत ही घमंड था। उन्हें ना किसी दूसरे की प्रशंसा करना अच्छा लगता और ना किसी के प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता। तो ये दो जो थे इस तरीके इस प्रवृत्ति के थे और इसके विपरीत सुवास और नवीन बहुत ही साधारण बुद्धि के होते हुए भी बहुत ही विनम्र थे, मिलनसार और सद्भाव रखने वाले थे। महर्षि दोनों शालू शिष्यों को सुधारना चाहते थे पर उनको अभी तक उचित अवसर मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन जाह्नवी नदी के दूसरे किनारे पर रहने वाले एक जमींदार ने भोज का आयोजन किया। वे स्वयं भी कभी इसी गुरुकुल में शिष्य के रूप में रहते थे जहां उन्होंने विद्या अध्ययन किया था। उन्होंने महर्षि को संदेश भेजा और अपने दो योग शिष्यों को भेजने की आज्ञा कही कि हमारे दो जो शिष्यों को आप यहाँ पर भेज दीजिए। अब जो ऋषि थे उनको मौका मिल गया था सो उन्होंने विभूति और दक्षेश को चुना और जमींदार के यहाँ भोज पर भेज दिया। दोनों शिष्य जमींदार के घर पहुँचे। जमींदार ने कहा भोजन तैयार है, पहले कुएं पे जाकर आप दोनों हाथ पैर धो लीजिए, चबूतरा छोटा है इसलिए उन्होंने कहा कि चबूतरा छोटा है और मतलब जो नियम है कि भोजन से पहले कुओं पर जा कर के हाथ मुँह धोना तो वे गुरुकुल के सबसे श्रेष्ठ और विद्वान थे सो उन्होंने उन नियमों का भी पालन किया और दोनों को अलग अलग भेजा कि आप लोग एक एक करके जाइएगा क्योंकि बताया कि वहाँ पे हाथ पैर धुलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है इसलिए आप लोग एक एक करके जाइए। दक्षेश ने ईर्ष्या से कहा विद्वान

0: मतलब विभूति पहले कुएं पर चला गया। तो जमींदार ने दक्षे से पूछा कि सुना है जो शिष्य कुएं पर गए हैं वे गुरुकुल के सबसे श्रेष्ठ और बड़े विद्वानों में उनकी गिनती है, क्या ऐसा सत्य है? अब दक्षेश को बड़ी गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया और ईर्ष्या तो उसके मन में भरी हुई थी, सो उसने अपने मित्र के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। विद्वान, अरे वो तो पूरा का पूरा खच्चर है, गधा है गधा। कुछ देर बाद भोजन परोसा गया, दोनों के सामने भूसा, हरी घास और चने रखे गए। अब ये देखकर वो दोनों के दोनों क्रोधित हो उठे और अपमानित होकर के गुस्से में गुरुकुल लौट आए। घटना सुनने के तुरंत बाद जमींदार का संदेश वाहक पहुंचा और बोला, गुरुवर शायद हम लोगों से कोई भूल हो गई है, कृपया दोनों शिष्यों को फिर से भेज दीजिए। इस बार महर्षि ने सुवास और नवीन को भेजा। वहाँ भी पहले नवीन कुएं पर गया। जमींदार ने सुवास से पूछा, सुना है नवीन बहुत श्रेष्ठ और विद्वान है। अब सुवास मुस्कुराकर बोला, अरे महाशय आपने ठीक ही सुना है, गुरुवर हमें प्रतिदिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जमींदार ने पूछा, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो सुवास ने तुरंत कहा, श्रेष्ठ तो नवीन ही है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ महाराज। फिर नवीन से भी यही प्रश्न किया गया तो उसने कहा, अरे सुवास तो सूर्य के समान है, मैं उसकी विद्वता के सामने एक छोटे से दीपक के समान हूँ। जमींदार उनके उत्तरों से बहुत खुश हुआ, उन्होंने दोनों का बहुत अच्छे से सम्मान किया और दक्षिणा में 5-5 गायें तथा चांदी के खड़ाऊँ भेंट किए गए। जब विभूति और दक्षेश ने यह देखा तो वो और भी क्रोधित हुए, वे महर्षि के पास पहुँचे, बोले हम उनसे अधिक बुद्धिमान हैं, फिर हमारा इस तरीके से अपमान क्यों किया गया? महर्षि चारों शिष्यों को लेकर जमींदार के पास पहुँचे और जमींदार से कारण पूछा। जमींदार ने विनम्रता से कहा, महर्षि मैंने दोष योग विद्यान मांगे थे, लेकिन पहले दोनों शिष्यों ने स्वयं एक दूसरे को खच्चर और बैल की तरह बताया, इसलिए मैंने उन्हें वही भोजन परोसा जो उनके बताए परिचय के अनुसार उचित था। यह सुनते ही विभूति और दक्षेत का जो सर था वो शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर और क्षमा मांगी कि महर्षि मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। महर्षि ने कहा, बुद्धि और विद्या तभी सार्थक है जब उनके साथ विनम्रता, प्रेम और सद्भाव हो। अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य को योग्य होते हुए भी अयोग्य बना देती है, वही विनम्रता दूसरों का सम्मान साधारण व्यक्ति को भी महान बना देती है। तो कहाँ खो गए अदनान जी? समझिए कि चारों शिष्यों ने गुरु की शिक्षा हृदय से स्वीकार की, उस दिन उनको अच्छे से समझ में आ गया कि सच्ची योग्यता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि अच्छे संस्कार में, विनम्रता में, सद्भावना में और दूसरों के सम्मान में होती है।
1: वाओ,
0: तो इसलिए जो बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि अपनी जो विद्या है उसका कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना आप विनम्र बनोगे उतना ही दूसरों की नज़रों में आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तो कहानी कैसी लगी?
1: बहुत बढ़िया। और ये अहंकार जो आपने बताया ना,
0: ये हमने देखा है, ये तो कहानी है, लेकिन मैंने अपने आसपास भी लोगों को देखा है कि अगर थोड़ा सा भी ज्ञान उनके अंदर आ जाता तो वो अपने सामने किसी को ठहरने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान होती है, जो विद्वता होती है, वो आपके अंदर विनम्रता और सद्भावना भी लाती है।
1: और वैसे भी ज्ञान तो इसी चीज़ के खिलाफ है, और जिस चीज के खिलाफ है अगर आप वही कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी सच में
0: वंचित हैं, वंचित हैं, आपकी विद्या अभी पूर्ण नहीं हुई है,
1: नहीं हो पाई है। तो चलिए भाई, आपको स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइए। और गीता दीदी चली बच्चों को बैरिकेटिंग के इस पार।
0: अरे अभी मैं चली नहीं, क्यों मुझे भगाने पे लगे हुए अदनान जी।
1: अच्छा तो एक स्टोरी और है क्या?
0: और क्या, मैंने कहा ना आज मैं पूरा खजाना लेके चली हूँ घर से।
1: तो प्लीज,
0: डर भी लग रहा था इस खजाने को कोई रास्ते में ना चोरी कर ले।
1: फाइनली आप पहुंच गए हो, नहीं चोरी हुआ।
0: बिल्कुल, इसलिए मैं बचा कर लाई हूँ अपने श्रोताओं के लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो ये कहानी और मुझे सुनानी है, वो भी इसी तरीके की है। तो चलिए सुनते हैं फिर, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत पुराने समय की बात है ये। खड्डी नाम के एक छोटे से गांव में पंजकू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपने गांव में अपनी बहादुरी, मेहनत और साफ कोई के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसका शरीर मजबूत था, स्वभाव चुस्त और कर्मठ तथा वह किसी से कभी डरता नहीं था। गांव के लोग उसे शेर दिल पंजकू कहकर पुकारा करते थे। पंजकू की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा सच का साथ देता था, सच ही बोलता था। उसका मानना था कि मनुष्य को संकट के समय भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक वर्ष ऐसा हुआ कि खड्डी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। समय पर वर्षा नहीं हुई और खेतों में फसलें नहीं लग पाई। किसानों के घरों में अनाज का संकट पैदा हो गया। लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी परेशान हो गए कि अब सब कैसे होगा। राजा के राज में उस समय भूमि के अनुसार कर भी देना पड़ता था। गांव का नंबरदार कर वसूलने के लिए घर घर जाने लगा। जब वह पंजकू के पास पहुंचा तो उसने कहा, पंजकू राजा का कर जमा कर दीजिए। पंजकू ने शांत स्वर में कहा, नंबरदार जी, इस वर्ष खेत में फसल ही नहीं हुई है। जब उपज ही नहीं हुई तो कर देने के लिए हमारे पास बचा क्या है? नंबरदार ने उसे डराने की कोशिश की। उसने कहा, राजा का आदेश है, कर तो देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा। पंजकू ने दृढ़ता से कहा, जो कर देना चाहिए मैं खुशी से दे दूंगा, लेकिन जब खेत में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, कुछ खेत ने हमें दिया ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? झूठ बोलकर या किसी से उधार लेकर कर देना मेरे लिए उचित नहीं है। नंबरदार को पंजकू की बात पसंद नहीं आई। उसने राजा के पास शिकायत भेज दी। एक शिकायत से काम नहीं बना तो उसने कई शिकायतें भेजी। आखिरकार राजा तक जब ये बात पहुंच ही गई कि खड्डी का पंजकू राजा का कर देने से साफ साफ इनकार कर रहा है। उस समय राजा के आदेश की अवहेलना करना बहुत बड़ा अपराध भी माना जाता था। राजा ने तुरंत थानेदार और कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि पंजकू को पकड़कर दरबार में लाया जाए। जब थानेदार और सिपाही खड्डी गांव के पास पहुंचे तो गांव के लोग घबरा गए। उन्हें पंजकू की चिंता होने लगी, लेकिन समस्या यह थी कि उस जमाने में फोटो या पहचान पत्र जैसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। सैनिक पंजकू को पहचानते कैसे? उन्होंने गाँव वालों से पूछताछ की। किसी ने कहा, पंजकू बहुत निडर आदमी है, तो दूसरे ने कहा, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। उधर पंजकू को भी सिपाहियों के आने की खबर मिल चुकी थी। वह घर से गेहूं लाने के लिए निकला और उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से सिपाही गांव की ओर आ रहे थे। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसकी मुलाकात थानेदार और सिपाहियों से भी हो गई। थानेदार ने रौब जमाते हुए पूछा, अरे क्या नाम है तुम्हारा? पंजकू ने बिना घबराए सीधा उत्तर दिया, पंजक कल्याणा। थानेदार पूछा, घर कहाँ है? पंजकू ने कहा, खड्डी कल्याणा। फिर थानेदार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पंजकू ने उसी आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सेंथल गेहूं लाने। थानेदार ने सोचा, यह कोई साधारण आदमी है, उसकी बातों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे पंजकू होने का संदेह हो। उसने उसे जाने दिया। पंजकू आगे बढ़ गया और सिपाही खड्डी गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने जब लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला जिस व्यक्ति से वे रास्ते में मिले थे वही पंजकू था। थानेदार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पंजकू के प्रत्येक उत्तर पर विचार किया। उसने अपना नाम पंजक कल्याण बताया, यानी पंजकू का दूसरा रूप। घर के बारे में उसने खड कल्याण कहा। जो उसके गांव की ओर संकेत करता था। और जब पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं तो उसने साफ साफ कहा कि सैंथल गेहूं लाने। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला था, फिर भी सिपाही उसे पहचान नहीं पाए। थानेदार और सिपाहियों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक पंचकू वहाँ से बहुत आगे निकल चुका था। आखिरकार वे खाली हाथ वापस लौट आए और राजा को पूरी घटना सुना दी। राजा ने जब पंचकू की बुद्धिमानी, निडरता और सत्य बोलने की आदत के बारे में विस्तार से जाना तो वो भी प्रभावित हुआ। उसने समझा कि ऐसा व्यक्ति केवल कर से बचने वाला आदमी नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देने वाला निर्भीक आदमी है। अंत में राजा ने पंचकू की भूमिका उस वर्ष का कर माफ कर दिया। पंचकू की यह घटना आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे कि संकट कितना भी बड़ा हो, सच्चा और निडर व्यक्ति अपनी बात कहने से कभी नहीं डरता। तो इसी कारण आज भी किसी सच्चे साफगोई से बात करने वाले और निर्भीक व्यक्ति को सम्मान से पंच कल्याण कहा जाता है।
1: वाह, क्या बात है।
0: तो ये भाई यही तो है, कहते हैं कठिन परिस्थितियां मनुष्य की परीक्षा अवश्य लेती हैं। ऐसे समय में झूठ और डर का सहारा लेने के बजाय सत्य और साहस के साथ खड़े रहना चाहिए।
1: बेशक
0: सच्चाई की यह राह कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन अंत में सत्य में वो विजयते।
1: यस, बिल्कुल। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी पंच कल्याण वाली, जरूर बताइएगा। और आप अपने अंदर के उस निडर शख्स को जगा लीजिएगा जो अब बहुत साफ गोई से अपनी बात कह सकता है।
0: देखिए कहानियाँ से कितनी हमको सीख मिलती है, कितना मॉरल होता है कहानियों में, लेकिन हम क्यों केवल कहानी को कहानी की तरह से सुनते हैं पर उसके जो उसका मॉरल होता है उसको धारण नहीं कर पाते हैं।
1: इसीलिए तो गीता दीदी ने ये अब मुहिम चलाई है कहानियों को वापस से जिंदा करने की। एंड थैंक यू सो मच गीता दीदी कि आप इतना बेहतरीन प्रोग्राम में सबसे पहले शुरुआत स्टोरी से ही करती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: एंड थैंक्स टू आप सब लोग जो बहुत कीमती वक्त निकाल करके सुनते हैं और खो जाते हैं कि कहानियों की दुनिया में। सो फिलहाल ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गीता दीदी चली बैरिकेटिंग पार कराने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, तो चलिए भाई गीता दीदी को हम जाने देते हैं और थोड़ी देर में गीता दीदी वापस से हाजिर होती, लेकिन आप ज़रूर सुनते रहिए अपना हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी अपने घर के बच्चों के साथ।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ,

0: जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता,

0: देख के राजा को आ तेरा नीतू लीन समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: Whoa, look at that! Let's count those tractors. One.

0: Dice.
1: No, Papa.
0: Sleep time now.
1: Okay, Papa.
0: Good night, Johnny.
1: Good night.
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: रास्ता पड़ गया हम लोग को दीदी।
1: हाँ बहुत बैरिकेडिंग कर रखी है ना
0: जी दीदी।
1: हाँ आने में थोड़ी सी दिक्कत भी हुई होगी ना
2: दीदी,
1: क्योंकि मुझे आने में जब दिक्कत हो सकती है तो मेरे ये छोटे छोटे बच्चों को आने में क्यों नहीं दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी देखिए प्रोग्राम के लिए बच्चे सारे स्टूडियो में हाजिर हैं और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं, तो चलिए चलते हैं क्योंकि समय हो चुका है और प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम पूछेंगे विराट से, विराट क्या सुनाने वाले हैं आज?
0: आज हम दीदी आपको सुनाने वाले हैं एक चुनौती स्वदेश के लिए, स्वदेशी के लिए।
1: और आप
2: दीदी? हम मंत्र।
1: मंत्र, अच्छा। हाँ हाँ भाई भाई गणेश जी आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, तो भाई उनका जो सुस्वागतम है वो मंत्रों से ही होना चाहिए, क्यों रीता?
0: जी दीदी बिल्कुल,
1: है ना। तो चलो भाई हम विराट को बाद में मौका देते हैं और सबसे पहले हम मंत्रोच्चार करते हैं ताकि जो है हमारे गणेश जी खुश हो जाएं और उनके आगमन शुभ हो, उनका आगमन। तो चलो सुनते हैं इनका मंत्र।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मा देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
1: वाह वाह, और भी है
2: जी दीदी? हाँ। गायत्री मंत्र।
1: गायत्री माँ, वो तो मुझे भी आता, चलो मेरे साथ हम लोग साथ साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः

0: प्रचोदया। तो तालियां बजा दो भाई हमारे गणेश जी के लिए, इतने प्यारे प्यारे मंत्र हो गए हैं। तो आज हमारे एक और दीदी आपकी आई हुई है ना, बहुत दिनों बाद आई हैं, कितनी क्यूट दीदी है ना ये।
1: जी दीदी, दीदी।
0: तो आज क्या सुनाओगी रीता हमारे बच्चों को?
2: जी दीदी, आज गणेश चतुर्थी है जिस तरह से, तो आज हमें कुछ ना कुछ उनके नाम पे छोटा सा भजन तो गाना ही चाहिए।
0: भजन?
2: जी दीदी।
0: तो चलो सुनते हैं इनका प्यारा सा भजन, और आज ये आप लोग के लिए खास भजन लेकर के आए हैं, आप लोग सुनिए और एंजॉय कीजिए गणेश चतुर्थी के उपलब्ध में ये सुंदर सा भजन।
2: आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चार लाइन तेरे चूहे ने करी रे कमाल गणेश तेरे चूहे।
0: अरे वाह।

0: ओह चावल भी खाया मेरा आटा भी खाया
1: खा गई चने की दाल
0: ओह माय गॉड।

0: दानेदार पेड़े और खा गया पेड़ा दानेदार गणेश तेरे चूहे ने। वाह भाई वाह, देखिए गणेश जी का चूहा तो बहुत शैतान है ना बच्चों।
1: जी दीदी।
0: सब खा करके कुतर के रख के भाग गया। तो बहुत अच्छा आपका भजन था, तो एक बार दीदी के लिए ताली भी बजानी पड़ेगी। तो भाई विराट, हमने आपको रोका था कि आप आज क्या सुनाने वाले हो?
1: आज हम सुनाएंगे एक चुनौती स्वदेशी के लिए।
0: ओ, स्वदेशी यानी कि जो अपने देश का बना हुआ हो, है?
1: जी दीदी।
0: चलो सुनते हैं इनकी क्या।
1: क्या तुम चुप रहोगे जब गीता के देश को हेलो शैम्पू धोएगा और कोलगेट से चमके विदेशी दांत काटेंगे भारत का वैभव? क्या तुम चुप रहोगे जब पेप्सी की लहर विदेशी जहर पिलाएगी और यूनियन कार्बाइड मृत्यु की लहर लाएगी? क्या तुम चुप रहोगे जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वादे ऋण के बुलबुलों की तरह फट जाएंगे और नेस्कैफे कॉफ़ी की कालीख में दब जाएगी भारतीय पेय उद्योग की आत्मा? क्या तुम चुप रहोगे जब फिलिप्स के बल्ब विदेशी क्रूर रोशनी का अंधेरा और विमको की माचिस से जला डालेंगी इतिहास में पका हुआ हमारा व्यक्तित्व? क्या तुम चुप रहोगे?
0: वह बहुत अच्छी बात बताई है कि देखिए हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। वास्तव में हमको चुप नहीं रहना है। तो बस ये हमारा देश गीता का रामायण का देश है, तो यानी कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए। शैम्पू वगैरह आजकल तो इतना फैशन में आ गया है कि कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पे शैम्पू का इस्तेमाल नहीं होता है। प्राचीन काल में शैम्पू की जगह कितनी आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ होती थी, रीठा, आंवला, सीकाकाई, उससे बाहा। आज कहते हैं कि देखो हम गंजे हो गए। गंजे क्यों हो गए? क्योंकि आप विदेशियों द्वारा बनाए हुए शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर अपनी चीज़ को अपनाए रखे रखते तो हम आज, हाँ, ये जो गंजेपन की शिकायत हो रही है ये नहीं होती। इसके अलावा देखिए ये जो कोलगेट आ रहा है, कोलगेट कहते हैं कि दांत चमकेंगे, ये कितना उसका विज्ञापन करते हैं, लेकिन मालूम है इसमें सुनते हैं कि हड्डियों का चूरा मिला होता है। हाँ, तो ये भी हार्मफुल है हमारे लिए। हमारे लिए तो बनाई गई है नीम की दातुन। पुराने समय से, प्राचीन समय से लोग जो है नीम की दातुन करते चले आ रहे हैं और उनके दांत कैसे जगमग जगमग करते थे, है ना? और उससे मुंह के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सांसें जो बदबूदार होती हैं वो सब अच्छी सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना चाहिए। जो ये नीम की दातुन है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन क्या बच्चों को लगता है कि बहुत कड़वी है ना?
1: जी दीदी।
0: हाँ, तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन उस वो कड़वा है तो इसीलिए हमको फायदा कर रहा है। और आजकल ऐसा शायद ही कोई बच्चा जो पेप्सी ना पीता हो। पीते हैं ना?
1: दीदी, सब लोग पीते हैं।
0: हाँ, और एक तरफ जहर भी कहा जाता है पेप्सी। और बहुत सारे लोग बच्चों मालूम है कहते, हमने सुना है कि वो टॉयलेट धो देते हैं, उसको कहते हैं वो टॉयलेट क्लीनर है।
1: जी दीदी,
0: क्योंकि उसके अंदर मालूम है क्या है, कुछ मतलब सोडा वगैरह का यूज बहुत कर लिया जाता है ना, तो केमिकल सोडा क्या है वो सफाई का काम करता है।
1: जी,
0: तो अब हमारे आंतों की भी सफाई वो कर देता है, इसलिए हम पेट से कमजोर भी हो जाते हैं। तो पेप्सी वेप्सी पीने वाली चीज नहीं, दुनिया भर की आजकल आ गई पेप्सी, आ गई और क्या है, कोका कोला, लहर और थम्सअप, ये सारी चीजें जो हमारे
1: सब में, दीदी मैंने सुना एसिड मिला होता है।
0: हाँ, एसिड और सोडे का ही यूज होता है जो बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान कारक। और आपने कहा था यूनियन कार्बाइड, ओह माय गॉड, यूनियन कार्बाइड जानते हो? मैंने बहुत छोटी थी मैं उस समय, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा, ये 1984 की घटना है भोपाल त्रासदी के नाम से, आज भी जो है ये किताबों में लिखे इतिहास बन के रह गई है। इतने सारे लोग, ये जो यूनियन कार्बाइड था इसका जो गैस थी वो फैल गई चारों तरफ, तो जो जहाँ था वो वहीं पर सो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। हाँ, तो मैं तो उस समय बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ा यूनियन कार्बाइड के बारे में, गैस भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि किस तरीके ये जो विदेशी कंपनियां आती हैं ये यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाती हैं और उसके बाद तबाही मचा के ही हमारे देश से वापस जाते। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बच्चे ने बताई है कि हमको जो है, हाँ, कितनी सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ गए हैं हमारे देश में, चारों तरफ देखिए कितने सारे मॉल्स खुल गए हैं और जो हमारे छोटे जो हमारे मतलब देसी चीज़ें थी उनका बाजार छिन गया है। जो हमारे किसान थे वो बैठ करके कितना मतलब अपना घर चलाते थे और छोटी छोटी दुकानों को खोल करके उनके रोजी रोटी चला करती थी। आज उसकी उसका स्थान जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने उनसे सब छीन लिया है, उनका रोजगार, उनका व्यवसाय। और आज क्या पैकेट बंद चीज़ें जो है मॉल से हम खरीद रहे हैं,
2: दीदी उनका पता भी नहीं होता कि वो
0: क्या है, कैसी हैं। तो वही चीज़ें हैं ना। अब चाय कॉफ़ी का बहुत हो गया। उस समय देखिए हमारे देश में दूध का चलन था, बच्चों को दूध पिलाया जाता था, सुबह उठते ही दूध, रात में सोते समय दूध, दूध ही का चलन था। लेकिन आज क्या है, बच्चे चाय कॉफ़ी और बड़े बड़े रेस्टा में मैंने देखा है।
1: आज के दूध में मिलावट भी बहुत होती है।
0: मिलावट बताए, मिलावट क्यों होती है, क्योंकि दूध कम पड़ जाता है, है ना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है।
3: कोई गाय वाय पालना चाहता,
0: गाय नहीं पालना चाहता है, क्योंकि भाई उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना, और उनको लगता है बड़ा झंझट का काम है, जबकि एक गाय तो हर घर में होनी ही चाहिए तो ताकि हमको स्वच्छ और शुद्ध दूध, ताजा दूध मिल सके।
3: हमारे घर पे
0: है। अरे वाह, वेरी गुड, तो होना ही चाहिए कि गाय तो पालना चाहिए। और मुझे तो गाय के बछड़े बहुत प्यारे लगते हैं, हाँ, तो उनके साथ खेलना, उनके साथ उछलना कूदना कितना अच्छा लगता है। तो आज उसकी जगह काफ़ी ने और चाय और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हम जाते हैं जब रेस्टा में देखते हैं तो बड़े बड़े वो झाग वाले वो ग्लासेस होते हैं और उसमें बैठ करके जो है बच्चे पी रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कितनी तबाही वाली चीज़ें हैं और क्या ही कहा जाए। तो वास्तव में हमें चुप नहीं रहना, जैसे क्या तुम चुप रहोगे, क्या तुम चुप रहोगे, नहीं, हमको चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से ही जो है हमारे सारे उद्योग धंधे जो हमारे देश के हमारे घरेलू उद्योग धंधे थे उन पे लगाम लग गई, उन पे ब्रेक लग गया है और हमारे देश में इसीलिए बहुत सारी बेरोजगारी देखने को मिलती है। हाँ, तो अब से जो है बच्चे ने कहा है तो हमको चुप नहीं रहना है, है ना, तो सबको बताना है और सबको जागरूक, आप जैसे बच्चे ही तो करेंगे, तो आज अब से काम होगा कि हम सबको जागरूक करेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालती हैं और इनका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए कितनी सारी बातें हो गई और अब चलते हैं हम देशराज की ओर, बलराज की ओर। और बलराज आज क्या सुनाएंगे
3: दीदी? आज मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता सुनाने जा रहा हूँ, एक बूंद।
0: एक बूंद,
3: जी दीदी,
0: चलिए सुनते हैं आपकी कविता एक बूंद।
3: जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद आगे बढ़ी, सोचने फिर यूं जी में लगी, हाय घर छोड़ कर मैं यूं क्यों बढ़ी, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चूं पड़ूंगी कमल के फूल में, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वो उसी में जागे मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, पर घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर।
0: सही बात है। तो भाई एक बार ताली हो जाए भाई, है ना। तो इतने बच्चों की कितनी प्यारी सी कविताएं होती हैं और कितने मर्म से भरी होती हैं, कितना उसमें रहस्य छिपा होता है। बिल्कुल भाई, बच्चे तो बच्चे ही हैं, साथ में हम भी तो बच्चे हैं। तो चलो चलते हैं हमारे छोटे से क्यूट से प्यारे से श्रेष्ठकर हैं, और श्रेष्ठकर की बहुत कम बोलते हैं ये, तो जब हम इनसे बात करते हैं ये तभी बोलते हैं, और कभी और बच्चे हैं तो हमारी हाँ में हाँ भी मिला देते, पर श्रेष्ठकर ना बहुत ही सिंसियर गंभीर बच्चा है।
2: ये अंदर से दीदी कुछ स्पेशल विचार
0: आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगा है,
2: तो बड़े हो गए
0: हाँ, थोड़ा बड़ा हो रहा है, पहले तो केवल छोटा सा था, तब ये केवल पोयम सुनाता था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो ये मुझे स्टोरी सुनाने लगा, और अब देखो आज क्या सुनाने वाला है। तो शशकर
4: जी
0: नमस्कार।
4: नमस्कार
0: आज क्या सुनाने वाले हो?
4: आज मैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में बताने वाला हूँ।
0: अच्छा, डोनेशन डे।
4: जी दीदी,
0: तो चलिए सुनते हैं।
4: हमारा शरीर एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल मशीन है। हमारे शरीर में हार्ट लगातार ब्लड पंप करता है, लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, और लीवर शरीर में कई केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति का कोई वीटल ऑर्गन इतने गंभीर रूप से खराब हो जाता है कि उसे बचाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है, और यहीं से शुरू होती है अंगदान की कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि अंगदान क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी ऑर्गन को ऐसे व्यक्ति के लिए दान करता है जिसे उसकी मेडिकल आवश्यकता हो, तो उसे अंगदान कहते हैं।
0: जी,
4: कुछ ऑर्गन्स लिविंग डोनर से भी डोनेट किए जा सकते हैं, जबकि कुछ ऑर्गन्स मृत्यु के बाद डोनेट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिविंग डोनेशन में परिस्थितियों के अनुसार एक किडनी या लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट किया जा सकता है। साइंस हमें यहाँ बताती है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे पॉसिबल होता है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन का दूसरा पहलू है ह्यूमैनिटी। एक डोनेटेड ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए केवल बायोलॉजिकल टिश्यू नहीं होता, वह उसके लिए ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। इसलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में सही जानकारी फैलाना भी जरूरी है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अंगदान का निर्णय व्यक्तिगत होता है, और इसे हमेशा अपने परिवार और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से उचित जानकारी लेकर ही समझना चाहिए।
0: बिल्कुल,
4: हमारे शरीर का कोई अंग किसी दूसरे इंसान के लिए जीवन बचाने वाला ट्रीटमेंट का हिस्सा बन सकता है।
0: जी, तो भाई देखिए, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हम मरने से पहले अपनी किसी को आँख, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दृष्टिहीन होते हैं, तो उनके लिए हमको हमारी आँखें बिल्कुल वरदान साबित होती हैं। हर आदमी है जिसने जन्म लिया है उसको ये दुनिया देखने का भी हक है।
4: जी जी।
0: लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुदरत हमसे कुछ चीज़ें जो है छीन लेती हैं। तो अब ये जो अंगदान वाली चीज़ें हैं अभी बताई हैं हमारे शशकर ने, ये बहुत ही अच्छी हैं। किसी की आँख नहीं है तो हमें अपने अंगों को दान करना चाहिए, तो हमने किसी को लिख दिया कि इस व्यक्ति के लिए हमारी, या किसी भी व्यक्ति के लिए ये हमारी आंखें हैं, हमारे मरणोपरांत जो हमारी आंखें दान कर दी हैं हमने। उसी तरीके से बहुत सारे आजकल हमारे अंग हैं, है ना, कहीं जो हृदय है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके अलावा किडनीज जो है उनके तो बहुत सारे पेशेंट हमको देखने को मिल रहे हैं इस समय। हर व्यक्ति तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति जो होता है वो किडनी की बीमारी से ग्रसित होता है, उसकी किडनी फेल हो गई तो समझे लाइफ ख़त्म। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, किडनी अगर है, हम बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमको मरने से पहले क्या हम दान करके जा रहे हैं दुनिया को, चलिए हम अपने शरीर का दान कर देते हैं ताकि ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किसी दूसरे के काम आ सके, और भी उसका काम चल सके, क्योंकि हम तो चले गए दुनिया से लेकिन हमारी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो दूसरे के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये भावना हर बच्चे में हर आज होनी ही चाहिए, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ समझिए कि हमको चारों ओर से ना जाने कितने प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। कोई किसी बीमारी से ग्रसित है तो कोई किसी बीमारी से, तो ऐसे में एक दूसरे की मदद हो सके, जो हमारे ऑर्गन से किसी दूसरे के काम आ सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम हमारे शशकर को बहुत सारी बधाई देते कि उन्होंने इतना अच्छा विषय हमारे साथ रखा है। तो भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कैसा रहेगा? है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि अभी तो गणेश जी को मनाने की प्रक्रिया पूरी हुई ही नहीं है। तो अभी गणेश जी के लिए भी बहुत सारी बातें करते हैं, और तब तक के लिए लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।
5: आज 22, 27, 11

0: तो एक बार फिर से हम ब्रेक के बाद हाजिर हैं और फिर हमारे साथ ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो बच्चों क्या सुनाने वाले हो आप? हमारे सत्यम जी हैं। अरे हम तो भूल ही गई है, आज तो बड़ी क्यूट सी टोपी लगा के बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो। क्यों भाई आज टोपी क्यों लगा रखी है?
1: बाहर धूप है दीदी।
0: धूप है? मुझे तो धूप नहीं मिली, लेकिन चलिए ठीक है, प्रोटेक्शन है, आपने यूज़ किया है और अच्छी लग रही है ये टोपी आपके ऊपर।
1: धन्यवाद दीदी।
0: तो क्या सुनाने वाले हो आज सत्यम?
1: दीदी कल 14 सितंबर है तो हिंदी दिवस।
0: ओ तो हिंदी दिवस 12? अच्छा 14 को होता है।
1: हाँ जी।
0: अच्छा ठीक है, कल हिंदी दिवस भी है। कल तो कितने सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, मैं तो यही सोच रही हूँ। कल हिंदी दिवस भी है, कल गणेश चतुर्थी भी है, कल कजरी तीज भी है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। हाँ बिल्कुल, अब मंडे तो है ही। तो चलो देखते हैं कि हिंदी दिवस पे हमारे सत्यम जी क्या बताने वाले हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हम टी ट्वेंटी विद गीता दीदी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जो करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ती है। जी हाँ, आज हमारा विषय है हिंदी और हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ।
0: जी,
1: हिंदी का विकास मुख्य रूप से संस्कृत से निकली प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। समय के साथ इन भाषाओं में बदलाव आता गया और हिंदी का रूप बनता गया। हिंदी के विकास में ब्रज, अवधी और खड़ी बोली जैसे भाषाओं का भी बड़ा योगदान रहा। आज हम जिस सामान्य हिंदी बोलते हैं और लिखते हैं उसका आधार मुख्य रूप से खड़ी बोली है। अब बात करेंगे 14 सितंबर की। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में हिंदी को देवनागरी लिपि में
0: राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया,
1: राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। इसी दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे लिए केवल बोलने की भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति, साहित्य और भावनाओं को व्यक्त करने का एक बड़ा माध्यम है। हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हिंदी का महत्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के कई देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग भी रहते हैं।
0: जी हमने तो ये सुना है कि मतलब जिसको हिंदी आती है और वहाँ पर भी वो कुछ कम्युनिटी होती है जो हिंदी सीखना चाहती है, हाँ, तो उनको जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है।
1: जी, हिंदी फिल्मों, गीतों, साहित्य और इंटरनेट के कारण भी हिंदी बहुत तेजी से लगातार बढ़ रही है। हिंदी साहित्य ने हमें कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि और लेखक दिए। इनकी रचनाओं ने समाज को सोचने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दोस्तों, भाषा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमें दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए। हिंदी हमें अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हिंदी का सम्मान करेंगे, इसे सही तरीके से बोलेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी के महत्व के बारे में बताएंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: याद रखिए भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होता, भाषा हमारी पहचान, हमारी भावनाओं की आवाज़ होती है। इसी संदेश के साथ आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।
0: चलिए बहुत अच्छी बात बताइए, कहते नहीं कि निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल, क्यों समर जी? है ना,
2: जदपि अंग्रेजी जान के सब गुण होत प्रवीण, पर बिन निज भाषा ज्ञान के राहत हीन कहीं।
0: हाँ, तो अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, अपनी भाषा को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी देश हैं हम तो ये देखते हैं कि वैसे जो इंग्लिश है वो एक तरीके से नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जब कभी हम चाइनीज़ को देखते हैं तो वो अपनी ही भाषा में भाषण करते हैं, जापनीज़ को देखते हैं अपनी ही भाषा में भाषण करते हैं, है ना? तो जब हमारे यहाँ क्या है कि कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो साथ ही साथ इतने सारे शब्दों को उच्चारित करते हैं, यानी इंग्लिश अगर बीच में नहीं आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो हिंदी के साथ साथ हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ करते हैं, है ना समर? ऐसा ही होता है ना,
2: जैसे यूज।
0: तो ये हम, हाँ हम खुद ही मतलब बोलते हैं
3: बस। हिंदी भाषा ऐसी है कि सबको समझ में आती है, लेकिन हम सबकी एक आदत जो बन गई कि बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ इंग्लिश जरूर इस्तेमाल।
0: बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं हम।
1: दीदी आप कहानी सुना दीजिए।
3: आपसे रिक्वेस्ट है आज हमारी।
0: क्या?
3: एक अच्छी सी कहानी सुनाइए ना।
0: ओह, आज मैंने वैसे ही दो कहानियाँ सुनाई है और आप तीसरी कहानी के लिए।
3: बिल्कुल दीदी, आपकी कहानियाँ ना बहुत अच्छी प्रेरणा देती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानी आप सुनाती हैं।
0: तो हम मैं सोचती हूँ कि आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो भगवान गणेश जी किसे कहानी सुनाते कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ
4: जी।
0: हाँ, गणेश जी की सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ, जन्म से संबंधित।
4: बिल्कुल दीदी, तब तो जल्दी जल्दी
0: मजा आएगी ना बच्चों।
4: बिल्कुल दीदी, बहुत मजा आएगी।
0: तो चलो सुनते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ
4: जी।
0: तो होता क्या है कि बहुत सब पहले समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे, निवास करते थे
4: जी।
0: अच्छा, अब मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी बीच में, क्योंकि
4: दे दे।
0: मैं हिंदी के ही शब्दों का कोशिश करूंगी कि प्रयोग करूं। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, ठीक है ना
4: जी दीदी,
0: नहाने जा रही थी
4: जी।
0: उन्होंने सोचा कि द्वार पे कोई ऐसा तो होना चाहिए जो उनकी अनुमति के बिना किसी भी तरह अंदर ना आने पाए,
4: इसने कर सके।
0: तो फिर क्या हुआ, माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से एक बालक की आकृति बना दी।
4: अच्छा दीदी।
0: हाँ, और उसे द्वार पे रख दिया और उसमें उन्होंने अपने तप से, अपने योग से, अपनी तपस्या के बल से, मतलब तपस्वी तो थी ही ना
4: जी,
0: तो प्राण भी फूंक दिए, वो बच्चा जीवित हो गया। वो बालक बहुत सुंदर से उन्होंने रचना की थी, बहुत सुंदर और तेजस्वी बालक बन करके बैठ गया। तो माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र माना और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊं किसी को भी अंदर आने मत देना। बच्चा समझ गया। गणेश जी ने माता की आज्ञा मानकर और बैठ गए द्वार पे पहरा देने के लिए
4: जी।
0: थोड़ी देर के बाद जो भगवान शिव थे वहां पे पहुंचे और वो जैसे ही अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए, उन्होंने कहा, मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को अंदर नहीं जाने देना है। अब भगवान शिव जो बहुत परेशान हो गए, भगवान शिव ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं भाई, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहे
4: जी।
0: तो इस बात पे भगवान शिव और गणेश जी के बीच में काफी कहा सुनी हो गई, संघर्ष हो गया। अब तो शिव को गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकाल लिया।
4: अच्छा दीदी।
0: और फिर उस उनको पहले चेतावनी दी, जब वो नहीं माने तो उन्होंने उस त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया, अलग कर दिया धड़ से।
4: अच्छा।
0: अब जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी और क्रोधित भी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को जीवित करने का आग्रह किया कि जैसे आपने इसका सर धड़ से अलग किया है वैसे मुझे जीवित पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी जीव उन्हें सबसे पहले मिले उसका सर लेकर के तुरंत आए, नहीं तो माता का क्रोध शांत नहीं होगा। अब सारे जो गणित थे, उनके जो नौकर चाकर थे, वो सब निकल पड़े कि ऐसा कोई व्यक्ति उनको पहले मिल जाए ताकि वो उसका सर जा करके गणेश जी को लगा दें।
4: अच्छा।
0: तो गणों को सबसे पहले एक हाथी का सर मिल गया
4: जी, जी।
0: भगवान शिव ने यह सर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और उनको फिर से जीवित कर दिया, जीवन प्रदान किया।
4: अच्छा दीदी।
0: हाँ, माता पार्वती जी जैसे देखी कि वो सूंड वाला बालक तो बहुत खुश हुई। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी देते हुए कहा कि आज से संसार में किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले मेरे पुत्र अर्थात गणेश जी की पूजा होनी चाहिए और पूजा की जाएगी। इस कारण भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और मंगलकर्ता माना गया है। तो कैसा लगा? जहाँ बुद्धि, भक्ति और आज्ञाकारिता होती है, वहाँ सफलता अवश्य मिलती
4: दीदी,
0: है।
4: एक छोटी सी प्रार्थना और है आपसे।
0: अब क्या है?
4: अब ये हमने सुना है कि गणेश जी माता पिता के चक्कर लगा के उन्होंने साबित कर दिया था कि मैं ही आपका,
0: तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी,
4: यही कहानी आपसे सुननी है हमें।
0: हुआ क्या
4: जी
0: कि कहा गया कि पूरी जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वो सबसे प्रथम पूज्य माना जाएगा।
4: अच्छा।
0: अब चारों तरफ सब लोग अपना अपना वाहन लेके निकल गए। कार्तिक का वाहन मोर था, वो मोर पे सवार हुए, फुर से उड़ गए, और सारे लोग जो थे अपनी अपनी सवारी पे परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी जो थे बहुत ही समझदार थे, वो नहीं निकले। उनकी तो सवारी जानती हो क्या था, क्या होती है गणेश जी की सवारी? तो वो सोचे मूषक पे हम कैसे बैठेंगे और इसकी परिक्रमा करेंगे। सो उन्होंने अपने माता और पिताजी को बैठाला साथ साथ, और तब उन्होंने उनकी परिक्रमा 7 बार की। जितनी देर में वो एक पृथ्वी की परिक्रमा करके लोग नहीं लौटे थे, उतनी देर में उन्होंने 7 परिक्रमा करी और बस वहाँ पे उपस्थित हो गए। उसके बाद सारे लोग वहाँ पर वापस आए। अब सोच लो कि जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उसने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। इसलिए जो है निर्णय हुआ वो गणेश जी के पक्ष में हुआ। तब से गणेश जी का सबसे मतलब प्रथम पूज्य हो गए। और हम जब भी कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं।
4: तो इसीलिए गणेश जी की पूजा पहले होती है।
0: हाँ, तब से गणेश जी की पूजा पहले होने लगी। और साथ ही साथ माता पार्वती का वरदान भी था गणेश जी को कि अब सारे देवताओं में पहले उनके पुत्र की ही पूजा होगी। तो कैसी लगी कहानी बच्चों?
2: बहुत अच्छी दीदी।
0: तो ताली गड़ जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से कल गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे तो बहुत खुशी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग अपने गणेश उत्सव घर पे मनाते हैं कि नहीं?
4: बिल्कुल मनाते हैं दीदी, मूर्तियां रखी जाती हैं।
0: मैं घर से निकली हूँ तो आज मैंने तैयारी करी है। हमने गणेश जी को खूब सजा संवार दिया है, और जा करके घर उनके लिए स्थान बनाऊंगी सुंदर सा, और वहाँ उनको स्थापित करूंगी। और मालूम है रोज क्या होगा बच्चों? मालूम है
4: होगा, कीर्तन होगा।
0: कीर्तन नहीं, कीर्तन तो होगा ही होगा। नए नए व्यंजन बनेंगे गणेश जी के लिए।
4: सर्वप्रथम तो मोदक बनेगा ना दीदी?
0: हाँ, कई तरीके के मोदक बनते, और कल तो मोदक का दिन शुरू हो जाएगा। और मैं सुबह शाम उनके भोग के लिए नई नई चीजें बनाऊंगी।
4: हम भी आएंगे।
0: बिल्कुल, सभी का स्वागत है।
4: सब बच्चे चलेंगे क्यों?
2: जी दीदी।
0: आ रहे हो ना तुम लोग?
4: जी दीदी।
0: हाँ बिल्कुल, सबका स्वागत है, और सब मिल करके धमाल मचाएंगे और गणेश जी को मनाएंगे।
4: जी दीदी बिल्कुल।
0: तो चलिए, बाकी बातें अब होती हैं, है ना, क्योंकि और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। मेरी बक बक बक बक सुनते सुनते बच्चे भी बोर हो जाते हैं।
4: दीदी ज्ञान भी जरूरी था ना।
0: तो चलो चलते हैं, हमारे समर जी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि दीदी की ये बक बक खत्म हो तो मैं अपनी बात कहूँ। तो आज समर देखिए क्या बताने वाले हैं। सारा कुछ जो है बच्चे पूछते रहते हैं कि आज किस पे बात करोगे बेटा, आज किस पे, कहते बस बता दूंगा दीदी, आप थोड़ा सा शांत रहिए, मैं तभी बता। आज जैसे सत्यम जो है कभी अपना वो खोलता नहीं है, सीक्रेट नहीं बता, आज मैं क्या लाया हूँ क्या बताने, एकदम
4: कुछ स्पेशल रहता है ना इनका।
0: तो वैसे ही हमारे समर यानी ठंडी हवा का झोंका आने वाला है, और अपने साथ बहुत सारी वेव्स यानी कि पॉजिटिव वेव्स लाने वाला। क्या क्या है आज आपकी ठंडी हवा के झोंकों में, कौन सा झोंका आ जा रहा है?
2: अरे तो अभी जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि पढ़ नहीं रहे थे सुन रहे थे कि पार्वती जी ने एक वो गणेश जी को बनाया, और कैसे बनाया, उबटन से बनाया, और उसमें फिर जान दे दी। तो वो उबटन से बनाया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं तो ज्योमेट्री लगाई होगी ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिना ज्योमेट्री के तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
2: तो उसी
0: तो आज इनका विषय कुछ ज्योमेट्रिकल लेकर के आए हैं, वो जानकारी देना चाहते हैं। आप लोग खूब ध्यान से सुनिए बच्चों।
2: तो इसी पे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए भास्कराचार्य
0: जी,
2: तो वो जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और जैसे अभी आप बता रही थी कि मम्मी लोगों को अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, जैसे पार्वती जी को गणेश जी से था,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जो भास्कराचार्य सेकंड थे, द्वितीय भास्कराचार्य इनको हम कहते हैं, उनकी वाइफ नहीं थी, मतलब मर चुकी थी, और उनकी एक बेटी थी लीलावती। तो वो लीलावती बहुत ठीक से, मतलब उसको मम्मी का प्यार नहीं मिला था, तो भास्कराचार्य ही उसके लिए सब कुछ थे। तो कहते ऐसा है, भास्कराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा अपनी बेटी के नाम पे लीलावती, तो उसमें वो कहते हैं कि ऐसा है कि उनकी बेटी की शादी होनी थी, तो वो बहुत बड़े ज्योतिष थे बहुत, तो उन्होंने एक घड़ा लिया और उसमें एक छेद किया और पानी भरा और कहा कि जब इस घड़े का पानी खाली हो जाएगा तो लीलावती की शादी का सही समय आएगा, और उसमें घड़े में मोती गिर गया, तो वो पानी खाली नहीं हुआ और उसकी शादी का मुहूर्त निकल गया, तो लीलावती दुखी रहने लगी। तो
0: फिर क्या हुआ?
2: तब भास्कराचार्य ने कहा कि मैं तुमको वैसे साथी से मिलाऊंगा जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। तब लीलावती को भास्कराचार्य ने गणित पढ़ाया, और लीलावती को जितना गणित पढ़ाया वो लीलावती नाम के ग्रंथ में लिखा। और लगभग 900 साल पहले ये सब कहानी हुई। तो आज हम जितने भी अलजेब्रा पढ़ते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डायफेंटाइन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो भी पढ़ते हैं, वो सब लीलावती में पहले से विद्यमान है। लीलावती में ही जीरो का पहला यूज़ है। जीरो तो पहले हम इन्वेंट हो चुका था खम के रूप में, लेकिन लीलावती में ही पहला यूज़ है कि जीरो को यूज़ कैसे करें। जीरो मतलब कुछ नहीं, लेकिन उस कुछ नहीं को कैसे कुछ यूज़ करें, वैसे उसका लीलावती में कंसेप्ट है। और वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, तो उन्होंने प्लैनेट्स की पोजीशन, ग्रहण कैलकुलेशन की वो एग्जैक्ट बता देते थे कि कब कौन सा ग्रहण कैसे लेगा, और लीलावती में उन्होंने इस बात की चर्चा भी की है। उसके बाद जो कॉपरनिकस ने बहुत साल बाद बताया, वो भास्कराचार्य ने बहुत पहले ही बता दिया था कि धरती कितने देर में घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है और धरती पे कुछ ग्रेविटी जैसा है। उसके बाद ज्योमेट्री में इनका योगदान ये था कि ट्रायंगल में इन्होंने बहुत सारा काम किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा काम किया। और भास्कराचार्य की एक और रचना है सिद्धांत शिरोमणि, उसमें वो कहते हैं कि बहुविभ्र प्रलापे किम त्रैलोक्य न सचराचरे, मतलब उस गणित के बारे में बहुत क्या कहना जो गणित हर चीज में विद्यमान है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता।
2: तो उस गणित के बारे में बहुत क्या कहना।
0: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। और सबसे बड़ा कि देखिए, बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन गणित का ग्रंथ यानी लीलावती, आज आपको पता होगा कि लीलावती ग्रंथ पूरा गणित पर ग्रंथ है। तो चलो, चलते चलते एक प्यारा सा गीत हमारी जो प्यारी सी रीता दीदी हैं वो सुनाने वाली हैं
4: जी,
0: और सब लोग साथ देते हैं, है ना। चलिए चलिए चलिए भाई, जल्दी से सुना दीजिए भाई।
4: गाऊंगी बजा कर।

से आपको बहुत बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, साथ ही साथ कजरी तीज की भी शुभकामनाएं, और हमको भी अब इजाज़त दीजिए, जाने दीजिए, और मैं भी चलती हूँ पूजा की तैयारियां करने के लिए, जो उत्सव है उसका आनंद लेने के लिए। आप लोग भी तैयार हो जाइए, और हम मिलते हैं अगले संडे को इसी दिन इसी मंच पर अपने ढेर सारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ध्यान रखिए और सुनते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: हाँ जी, सो फिलहाल घड़ी में जो वक्त हो रहा है 1:16, और आज दिन है ऑफकोर्स रविवार का, यानी कि संडेज का दिन। और इसी संडेज में आपको बताया कि भैया ओपन माइक वाला प्रोग्राम आपका आता है जो आपके दिन को खास बना देता है। यस, और आपको बताया इस प्रोग्राम में हम अकेले नहीं होते, बल्कि हमारे साथ होते हैं आप सभी के अपने आरजे
1: मनु।
0: यस ऑफ कोर्स, तो आज फिर से हम दोनों एक साथ हैं, और साथ हैं तो जाहिर सी बात है धमाका तो होना बनता है। क्या क्या ख्याल है आपका?
1: जी बिल्कुल, धमाका हो चुका है।
0: ऑलराइट, सो फिलहाल धमाका और भी होने वाला है। क्यों? पता है कि आज हम स्पेशल ऑफर हम लोग सोच के आए हैं हमारे लोगों को देना है। क्यों?
1: जी बिल्कुल, मतलब गिफ्ट बनता है,
0: गिफ्ट बनता है ना। तो चलिए भाई, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप ही अनाउंस कर दिए कि आज का स्पेशल गिफ्ट क्या है हमारे श्रोताओं के लिए।
1: जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप सभी को कल हिंदी दिवस है, उसकी शुभकामनाएं।
0: प्री में?
1: हाँ, मतलब प्री में दे दिया जाए, कुछ चीजें पहले दे देनी चाहिए। और फिर भाई, चूंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है, हरियाली तीज है, रास्ते भी ज़रा प्रतिबंधित हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो स्टूडियो में आते हैं, लेकिन आज उन्होंने घर से ही सोच लिया होगा कि रास्ता बड़ा एकदम भीड़ भाड़ वाला होगा, तो क्यों ना बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया जाए अपने श्रोताओं को, और वो अपने घर बैठे। जी हाँ, जो काम आप वहाँ यहाँ आकर करते हैं वो काम अपने घर से कर लीजिए। जी हाँ, आपका दूरभाष क्रमांक वही है 6393-31-64-29। आप चाहें तो इस पर कॉल करके अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी दिवस हो, चाहे वो हरियाली तीज हो, या आप जो कुछ कहना चाहें, कविता, गजल, शायरी, या अपने कुछ कलाम,
0: या फिर अपने सॉन्ग्स।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना, जैसे अगर मैं भी जब घर पे होता था तो मुझे लगता था जैसे भाई बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कई बार सुर क्षेत्र वाला यहाँ पे ऑडिशन हुआ था और संगम कला ग्रुप का होता था, तो मुझे लगता था कुछ ऐसा ऑप्शन हो जो घर पे ही हो, क्योंकि घर पे इतना कंफर्टेबल हम रहते हैं।
1: जी,
0: तो घर पे अगर मुझे स्टेज मिल जाए तो क्या ही बात है। हमें लगता था ये तो नामुमकिन है, खैर ये हो भी नहीं सकता, जस्ट इमेजिनेशन, बट आज ये सच पे हम लोग कर रहे हैं।
1: कर रहे हैं, मतलब घर बैठे
0: घर तक लेके जा रहे हैं। राइट, तो वैसे भी आपके पास हजार जोक्स होते हैं अर्जमनु। फिलहाल कोई कॉलर हमारे कॉल करेंगे तो हम जरूर रिसीव करेंगे, नंबर वही है 6393-31-64-29, यानी कि सीधा आपको ऑफर है कि आज के ओपन माइक में आप घर बैठे कॉल कर सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं, कोई जोक क्रैक कर सकते हैं, कोई शेर व शायरी पढ़ सकते हैं, या अगर आप लिखते हैं कविताएं तो उसको भी रिसाइट कर सकते हैं, और या फिर कल हिंदी दिवस है उसको लेकर के प्री में आज हमसे बातचीत कर सकते हैं। हिंदी से जुड़ा मुझे ये एक ख्याल आया कि मैं आपसे पूछूंगा, आप अंग्रेजी के टीचर हैं?
1: नहीं नहीं, मैं तो विद्यार्थी हूँ, तालिबे इल्म हूँ, अभी अध्यापक होने में समय लगेगा।
0: ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, मतलब सीधी बात है।
1: सीधी बात यही है कि अध्यापक
0: ही आप जो है अंग्रेजी के टीचर हैं, ठीक है
1: जी,
0: और आप जो है हिंदी दिवस मनाते हैं
1: जी।
0: अच्छा, तो कोई आपको गोरा कह करके आपका विरोध तो नहीं करता कल के दिन?
1: नहीं, मतलब ऐसा विरोध क्यों करेगा, हम तो बोलते हैं भाई हिंदी जो है वो अमीरों की भाषा है।
0: अरे वाह, और वो कैसे?
1: अच्छा बताइए, एक शब्द है अंग्रेजी में सन, SUN,
0: सूरज,
1: सूरज। अंग्रेजी में कोई दूसरा वर्ड बताइए जो सन के लिए इस्तेमाल होता हो।
0: अंग्रेजी में कोई दूसरा शब्द जो सन के लिए नहीं है?
1: नहीं है। और हिंदी में सूरज के लिए 52 शब्द है।
0: ओ माय गॉड,
1: तो बताइए ज्यादा अमीर कौन हुआ?
0: भैया इनके पास बातें ही तो है।
1: नहीं, जैसे हमने कहा तुम, तो और आपसे हम बात करते हैं तो कहते हैं आप। इंग्लिश में दोनों के लिए यू ही है।
0: क्या बात है,
1: मतलब तुम कहना हो या आप कहना हो, जबकि दोनों में जमीन, अर्श और फर्श का अंतर होता है।
0: जमीन, अर्श और फर्श, वाह, पहली
1: मतलब जमीन

0: और आसमान या अल्स और फर्श जो कुछ भी आप समझे नहीं नहीं मतलब वास्तविकता है कि शब्दकोश जो है वो हमको लगता है कभी कभी कि हिंदी या उर्दू के पास ज्यादा है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ,
0: जैसे है। आपका चेहरा एकदम जो है वो मून के जैसा है, नजंदल के टचुट, तो मून के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है इंग्लिश में, लेकिन चंद्रमा के लिए हिंदी अंग्रेजी और उर्दू, अगर हिंदी और उर्दू को मिला दें तो 82 वर्ड्स है।
1: माय गॉड,
0: तो अब सोचिए मतलब कौन ज़्यादा अमीर है। और एक चीज़ आपको बताएं, हिंदी की बिंदी भी बोलती है।
1: हिंदी की बिंदी
0: भी बोलती है।
1: वाओ।
0: और अंग्रेजी का लेटर भी साइलेंट हो जाता है। तो मतलब तारीफ तो बनती है भाई, हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी और उर्दू की तारीफ तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोनों यहीं पर पली बढ़ी।
1: एंड एक्चुअल में हमें किसी भी लैंग्वेज से कंपैरिजन करना भी नहीं होता है, क्योंकि सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है और सभी की अपनी एक बेल्ट होती है जहाँ ज़्यादा बोली जाती है।
0: हाँ जी,
1: ग्लोबली कनेक्ट होना है तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी हमको जानना ही चाहिए, और अगर हम यहाँ पे हैं तो हमको प्राउड होना चाहिए कि हमारी अपनी खुद की मादरी ज़बान है।
0: जी।
1: और जब बात आती है लैंग्वेजेस की, तो जब सबसे अहम, सबसे बड़ा, सबसे ख़ास इश्क का इजहार करते हैं, मुझे लगता है हिंदी उर्दू।
0: हिंदी उर्दू शीरी ज़बान है।
1: शीरी ज़बान, राइट। तो ये तो चलता ही रहता है, ऑफ कोर्स।
0: नहीं मतलब फ्रांसीसी कहीं भी जाते हैं तो वो फ्रांसीसी ही बोलेंगे, मतलब वो कभी जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस मामले में तो भाई अजीता जी भी हमसे बहुत बेहतर जानती हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लिखती भी हैं और इस समय तो लखनऊ की निवासिनी हो चुकी हैं।
1: निवासिनी?
0: हाँ, मतलब इस समय
1: जो क्या है, बात है,
0: लखनऊ में ही रहती हैं तो लखनऊ की निवासिनी हो चुकी हैं, तो लिखती बहुत अच्छा है और हिंदी पर तो गजब की पकड़ है भाई।
1: तो ये आज लाइन जैसे लगा कि हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं दुखरणनाथ तक, ये भी तो नहीं लखनऊ से सीधे मतलब मैं पूछ लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए।
0: तो अजीता जी सीधे लखनऊ से आप यहाँ आ रही हैं? जी जी, उन्होंने फाफते हुए कहा है।
1: ओह, अभी जस्ट असल में आई
2: चल रहा था आज।
0: जी,
2: ऑटो नहीं चल रहा था सर आज।
0: ऑटो नहीं चल रहा था और जाकर हमने धक्का दिया है तब यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, हमने नंबर रखवा लिखा है कि अगर किसी का ऑटो बंद हो तो संपर्क करें 9616 11 45 41, हम आएंगे और धक्का देंगे।
1: संपर्क है?
0: हाँ,
1: गुड।
0: हाँ, तो मतलब ये एक साइड में जो है शुरू किया है, बढ़िया है कि नहीं?
1: अरे बहुत बढ़िया बिजनेस। हाँ,
0: मतलब हमने कहा कुछ जो है वो बाहों में जो शक्ति है उसका इस्तेमाल किया जाए।
1: ऑफ कोर्स। तो हमारी अजिता जी आप मौजूद है, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: क्या बात है, आप लखनऊ से आई हैं, आवाज़ आपकी और सुरीली लग रही है भाई।
2: ओह थैंक यू सो मच सर, इतने दिनों बाद सुन रहे हैं इसलिए लग रही है।
1: नवाबों का शहर की बात है या शर्मा जी की चाय पी के आई हैं आप?
2: सर चाय तो मैं पीती नहीं हूँ।
1: अच्छा।
2: और शहर की भी बात नहीं है, बात तो सब गोंडा की है।
1: हाय क्या बात है, गोंडा आ गई। गोंडा में आपका ऑफ कोर्स दिल लगता होगा, आपका घर है यहाँ पर, लेकिन लखनऊ से अभी हाल ही में आप आई हैं, तो क्या कुछ वहाँ का लेकर आई हैं अपने साथ, ये जरा बताइए।
2: सर वहाँ की भीड़।
1: वहाँ की भीड़ लेके आई हैं, ज्यादा पसंद थी क्या?
2: नहीं।
1: या अच्छा, चौराहे चौराहे पे मिल जाए करती थी?
2: हाँ, पसंद तो सर अपना गोंडा ही है।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, पसंद तो सच में अपना गोंडा है, बहुत इत्मीनान से। लेकिन आजकल आरजे मनु यहाँ गोंडा में भी समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा ट्रैफिक हो जाता है।
0: हाँ, बहुत ट्रैफिक हो जाता है, गोंडा की पॉपुलेशन बढ़ गई है।
1: पॉपुलेशन बढ़ गई, मुझे लगता है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे यानी ट्रैफिक रूल्स का, तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
0: हाँ एग्जैक्टली, छोटी छोटी बातें हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए।
1: और उतारी ना उतारी, लेकिन जब अपनी गाड़ी उतारी है गोंडा की सड़कों पर तो कुछ ट्रैफिक रूल्स का तो ज़रूर फॉलो करनी है।
2: जी बिल्कुल सही कहा सर आपने।
1: बिल्कुल। और अजिता जी मौजूद हैं, सबसे प्यारी बात ये है कि देखिए आप लिखती हैं और हिंदी भाषा में लिखती हैं, और कल हिंदी दिवस है, चूँकि कल हमारे पास मौका ओपन माइक वाला नहीं होगा कि हम उस पर बातचीत कर पाए, तो इसलिए आज हम प्री में ही बातचीत कर रहे हैं। अजिता जी, हिंदी दिवस है?
2: हाँ सर, कल 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की ऑलरेडी सबको बहुत ज़्यादा इन एडवांस बधाई।
1: अरे वाह,
2: पहले से ही।
1: क्या बात है, थैंक यू।
2: और अपनी भाषा को हमेशा रखना चाहिए।
1: कहाँ?
2: अपने दिल में, अपनी जुबान पे।
1: अरे वाह, यस यस यस यस
0: नहीं भाई,
1: और अपनी भाषा पे कमांड भी होना चाहिए,
2: कमांड भी होना चाहिए,
1: सबसे ज्यादा नंबर उसी में करता है। कहते ना हिंदी में फेल तो गए,
0: हाँ, ग्रेस मार्क नहीं मिलता।
1: सही बात है,
0: और ये होना भी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है, मादरी जबान तो आनी चाहिए, लोकल की भाषा आपकी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बड़ा अहम वक्त है कल हिंदी दिवस का, और अजिता जी ज़रूर आप आज कुछ ना कुछ लेकर आई होंगी, तो क्यों ना कल के हिंदी दिवस को डेडिकेट करते हुए आपसे कुछ लाइंस सुन लिया जाए।
2: जी बिल्कुल सर। सर एक लाइन है कबीर दास जी की,
1: जी
2: वो मैं आज सुनाना चाहूँगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्लीज,
2: उसी से शुरुआत करती हूँ कि मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार।
1: वाह।
2: माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन ले काले हमारी वार।
1: क्या बात है,
2: कि मतलब कलियों में भी कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कितनी समझ होती है। वो कहती है कि माली भी जब आता है तो वो लोग भी कहती हैं कि आज फूल को ले जाओ, कल हमारी बारी है, जब हम खिल जाएंगे
0: तो फिर हमें भी तोड़ लिया जाएगा। उस प्रेक्षा अलंकार का कितना बढ़िया उदाहरण दिया आपने।
2: कबीर दास जी की लाइन है, दोहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दम है।
0: अच्छा अलंकार आपको आता होगा?
2: एक ही अलंकार अभी मुझे याद है, यमक अलंकार।
0: यमक अलंकार। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपने क्या बताया, क्या कहा, कनक कनक। हाँ,
2: कनक कनक तेसो गुनी माद कता अधिकाए, वो खाए बौराए जगवा पाए बौराए।
0: अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ?
2: एक कनक जो है वो सोना है, और दूसरा कनक एक है या तो चावल है, मुझे याद नहीं कर पा रही हूँ मैं,
0: वो जो है वो धतूरा है।
2: धतूरा, धतूरा, यस।
0: धतूरे को
2: तो आप शंकर जी धतूरा खा के बौरा जाती है। कल कजरी तीज भी है, वो आज से ही चढ़ने लगा होगा या फिर पूरे सावन में चढ़ता ही रहता है। और एक कनक का मतलब सोना, जग पाके उसको बौरा जाता है।
0: अच्छा, ये बात है, मतलब शब्द अलग अलग हों, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो
2: अलग हो शब्द, शब्द एक हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं।
0: अच्छा, तो अजय नान
1: जी,
0: सर ये बताइए, सजना है मुझे सजना के लिए, ये कौन सा अलंकार
2: होगा? यमक अलंकार,
1: स्टूडियो अलंकार हो गया, सजना स्टूडियो है।
2: तो सजना है मुझे सजना के लिए।
1: मतलब वहाँ फोटो शूट कराना है।
0: सजना है मुझे सजना के लिए, ये
1: हाँ मतलब सजना है आपको अपना डेकोरेशन, अपना रेनोवेशन कराना है, सजना स्टूडियो के लिए, कहने का सेंस यहाँ पे ये कभी ये कहना चाहता
0: है, कभी ये कहना चाहता है। अच्छा अजिता जी, कोई ऐसा फिल्मी गीत और भी है जिसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ हो?
2: अभी सजना सजना है सवर?
0: ये तो हमने बता दिया,
2: और भी होंगे पर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ,
0: देखते हैं कौन याद कर पाता है। क्या
1: आज हमारे आर्ज मनु के पास इसका खजाना है भाई?
0: नहीं खजाना नहीं, हम तो खाली सोच रहे थे कि कोई ऐसा गीत होगा।
1: यू आर सॉन्ग्स लाइब्रेरी, यू नो।
0: अच्छा, नहीं
1: आप सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है भाई, पूरा ऐसे कई सारे प्रश्न आपके पास पहले ही रहते हैं।
0: नहीं प्रश्न नहीं रहते भाई, मैं तो फिल्में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि देखो ये शब्द दो बार आया, इसके अर्थ अलग अलग है।
2: जैसे कहते नहीं, गले का हार और एक हार जाना।
0: हाँ, तो वो लाइन बताइए ना,
2: वो मुझे याद नहीं आ रहा है।
0: अच्छा, आपने कच्चे धागे पिक्चर देखी?
2: हाँ देखी है।
0: उसमें एक गाना है, बुझ जाए दिल की ये आग, आग।
2: याद
0: अदनान सर को याद हो?
1: नहीं, इतने भी पुराने खैर हम नहीं है।
0: नहीं, बुझ जाए दिल की ये आग, आग में अब के बरस तो बरस जाए पानी। तो अब के बरस मतलब इस वर्ष, और बरस जाए मतलब बरस जाए, तो यह भी ये मकलंक।
2: पानी तो सर वैसे ही इतना बरस रहा इस बरस।
0: इस बरस रहा है। यही तो यह मकलंकार है। क्या बात है, तो क्या कुछ है आपके पास जरा सुनेंगे हम?
2: फिलहाल तो मेरे पास में ऐसी लाइनें हैं, हिंदी दिवस कल है उसके लिए से सॉरी, क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ ये है कि हिंदी दिवस के हार्दिक बधाई
0: जी।
2: और जो मैं लाई हूँ वो लाइनें हैं, हर बार की तरह
0: हमको लगा था चॉकलेट लेकर आई होंगी आप, लेकिन चलिए कोई
2: बात नहीं, ले आती हूँ सर आपके लिए चॉकलेट क्योंकि शिक्षक दिवस भी था।
0: शिक्षक दिवस भी था मतलब हाँ, आपको खिलाना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल।
0: तो अदनान सर कौन सी चॉकलेट पसंद है आपको?
2: सर बताइए, देर है दुरुस्त टाइम में लाऊंगी जरूर।
1: नहीं असल में आपने भी चिल्ड्रंस डे पे इनको ना कुछ तोहफा दिया ना चॉकलेट खिलाया, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि टीचर्स डे का फिर आपको याद दिलाना।
0: नहीं हमको, मैंने जो है
2: शर्त थोड़ी,
0: चिल्ड्रन डे पर हमने जो है दही जलेबी खिलाई थी अजिता जी को।
2: अच्छा, अरे सर आपकी दही जलेबी बहुत टेस्टी थी।
0: बहुत टेस्टी थी
2: और उससे भी टेस्टी मैं आपको, अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो टेस्टी लगेगा जरूर।
0: हाँ लगेगा जरूर। नहीं हमको तो पसंद है, अदनान सर को देखना है कि चॉकलेट कौन सा पसंद है।
2: डार्क चॉकलेट पसंद होगा आई थिंक अदनान सर को।
0: मतलब
1: यू आर राइट अंदाजा, यू हैव वेरी राइट अंदाजा। थोड़ा सा डार्क चॉकलेट अब पसंद आती है। अच्छा पहले बड़ा अजीब लगता था कि कड़वा कड़वा की कौन सी कड़वी चॉकलेट होती, अजीब सी लगती थी। उसके बाद ऐसा लगा नहीं यार मजा तो सच में
2: मजा तो कड़वे में ही है।
0: हाँ नहीं मतलब आपके
1: इसीलिए मैं आरजे मनु को झेलता हूँ इस सोच में।
0: नहीं और मैं अगर डार्क चॉकलेट खाकर ना हूँ तो आपको देख भी नहीं पाऊंगा।
1: आए हाय
0: सोचिए, मतलब मूड इनहेंस हो जाता है कि चलो अब ठीक है अब स्थिति है तो आने से पहले।
1: अच्छा, तो आपके स्विंग्स भी बहुत होते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं।
0: तो डार्क चॉकलेट पसंद है भाई अजिता जी, और मतलब महंगे चॉकलेट की डिमांड की है भाई साहब।
2: मैं समझ गई।
0: हाँ मतलब वो सस्ते में छोड़ते ही नहीं किसी को।
2: ख्वाहिश हमेशा, शौक हमेशा महंगा ही रखना चाहिए।
0: हाँ हमने एक बार पूछा था कि आपको टी शर्ट गिफ्ट दें तो किस कंपनी के, तो उन्होंने कहा तुरंत कहा लुई फिलिप। हमने कहा अच्छा ये तो बढ़िया है।
1: क्या तो, बात है। अच्छा आपको याद है?
0: हाँ
1: अच्छा
0: याद है आपको, आपको आपका बर्थडे, वो आपका टी शर्ट मांगना, मेरा टी शर्ट देना
1: है।
0: फिर आपने कहा ये कंपनी नहीं है, ब्रांडेड वाला चाहिए।
1: कितनी प्यारी बकवास कर लेते ना। चलिए फिलहाल हमारी अजिता जी सुनाने जा रही हैं एक लिखा हुआ कुछ अपने हाथ का कंटेंट, तो उनको भी सुन लेते हैं।
2: जी थैंक यू सर, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। और आज एक दो लाइनें लिखी हूँ उसी को मैं बता रही हूँ कि जिस गली में हर शाम तराने हुआ करते थे, कि जिस गली में हर शाम तराने हुआ करते थे, मुझ जैसे न जाने कितने दीवाने हुआ करते थे, कि मुझ जैसे न जाने कितने दीवाने हुआ करते थे, कि जहाँ गीत गजलों से, कि जहाँ गीत गजलों से नजराने हुआ करते
0: नजराने थे, हुआ करते।
2: वो वक्त भी कितना हसीन था, वो वक्त भी कितना हसीन था, तो मौसम भी बहुत सुहाने हुआ करते थे।
0: क्या बात है।
2: फिर उसके बाद में फिर मैंने लिखा उसी गली पे, फिर
0: उसी गली
2: आफ्टर सम टाइम या आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि जिस गली में हर शाम गुजरती थी, कि जिस गली में हर शाम गुजरती थी, उस गली में भी अब रोज रोज जाना भी कहाँ होता है,
0: कहाँ होता है
2: भाई। अगर हमने उस स्कूल छोड़ दिया, कितने सारे बच्चे होते हैं, वो बेंच बोर्डर शायद आज भी वैसे ही लगे होते हैं, पर अब हम उस स्कूल में नहीं जाते।
0: सही है,
2: नहीं जाते हैं। जिस कोचिंग में, जिस बैच में हमने बंक मारा या हमने बहुत इंजॉय किया, अब वहाँ भी जाना नहीं होता है।
0: नहीं।
2: तो उसी पे मैंने लिखा कि जिस गली में हर शाम गुजरती थी, जिस गली में हर शाम गुजरती थी, उस गली में अब रोज रोज जाना भी कहाँ होता है। हवाएं तो आज भी चलती हैं।
0: क्या बात।
2: हवाएं तो आज भी चलती हैं, पर चिड़ियों की तरह पतंगी दिल अब दीवाना कहाँ होता है।
0: कहाँ होता है, क्या बात है।
2: और अभी अभी मेरे दिमाग में एक लाइन और आ रही है
0: जी,
2: कि महफिल कैसी भी हो, कि महफिल कैसी भी हो, पर नूर तो तेरे आने के बाद ही होती, कि
0: क्या
2: नूर तो तेरे आने से ही होती है,
0: होता है,
2: कि नूर तो तेरे आने से ही होती है। और ये गीत, ये गज़ल तो सिर्फ एक बहाना है,
0: बहाना है।
2: ये गीत, ये गज़ल तो सिर्फ एक बहाना है। मेरे गजलों की शुरुआत तो तेरे गुनगुनाने से ही होती है।
0: क्या बात है जी। हाँ, आज तो भाई संडे था तो गाएगा गुंडा भी था जी, अदनान भी आया होगा।
2: थैंक यू सर।
0: क्या बात
2: और
0: है।
2: फिर एक लाइन और है
0: जी
2: कि ये सजना सवरना
0: जी,
1: ये सजना सवरना,
2: सवरना तो सिर्फ एक बहाना है।
1: क्या बात है।
2: एक गीत गजल भी एक बहाना है और एक सजना सवरना ये भी एक बहाना है।
0: क्या बात।
2: सजना सवरना तो सिर्फ एक बहाना ही है। चूड़ियों में खनक आज भी, चूड़ियों में खनक आज भी तेरे मुस्कुराने से होती है।
1: क्या बात।
0: मतलब वास्तव में जो इंसान का माजी होता है अदनान सर, वास्तव में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
2: मुझे लगता है कहीं भी जाइए, ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही लिखती हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल में आप ले लीजिए सर, आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड रहा होगा कभी।
0: अभी भी है अदनान सर।
1: नहीं नहीं, वो तो जो सामने बैठा होता उधर आप बोल देते हैं।
2: सर मुझे बोल नहीं सकते क्योंकि मैं तो स्टूडेंट थी।
1: नहीं नहीं, आपसे चॉकलेट खाना इसलिए।
2: अरे वो तो चॉकलेट तो मैं वैसे ही भी खिलाऊंगी।
0: नहीं, उनको डार्क वाली खानी।
2: इसमें क्या होता है सर, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है वो आपके साथ है कहीं भी आप रहिए, चाहे बहुत बड़े कैफ़े में रहिए, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए इंजॉय करने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक तालाब है, तालाब के पास में एक सिंपल सी चद्दर बिछा के एक चिप्स भी खाएंगे उसके साथ में, को बड़ा सुकून मिलेगा।
0: सही बात।
2: लेकिन अगर वो बेस्ट फ्रेंड आपका नहीं है या आपका कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, अगर वो नहीं है, आप अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, आपको वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा।
0: सुकून तो रिश्तों में है। बिल्कुल सही कहा।
2: रिश्तों में है।
0: तनवीर गाजी एक बहुत अच्छे शायर हैं।
2: जी,
0: उनकी एक पंक्ति है, उनकी एक गजल है कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है।
2: जी।
0: मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है।
2: आज भी है।
0: नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। उसने मेरी शर्ट में कल एक बटन टांका था, उसने मेरी शर्ट में कल एक बटन टांका था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक
2: आज
0: भी है। और जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, गांव के मोड़ पर वो कच्ची सड़क
2: आज भी है।
0: आज भी है। रिश्ते।
1: क्या बात है। वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पर जो शक होना है वो बनता है अर्जुमन, हरकत ही आपकी ऐसी है। एंड दूसरी बात, हमारी अजिता जी ने भी बोला था कि कोई तालाब किनारे चिप्स खाइए। देखिए मुझे लाइन तो बहुत अच्छी लगी कि आप फ्रेंडशिप को डेडिकेट करते हुए बोल रहे हो। लेकिन आरजे मनु, मैं सोच रहा था चाहे अपने यहाँ का सगरा तालाब हो, पांडे तालाब हो, कोई ऐसी क्या जगह है जहाँ चादर बिछा के बैठ सकते हैं?
2: मतलब उतना प्रॉपर स्पेस में एक तालाब था।
1: अरे किधर है? था
2: लेकिन अब नहीं है।
1: ये लो, अब क्या खोद के जाएंगे नीचे?
2: हाँ सर,
0: अब तो राजू भुजा वाला अच्छा होता है। हमने हाँ, मतलब गोंडा के जितने अच्छे लोग मैंने देखा है कि वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, भुजा खाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। आपने खाया है कभी राजू भुजा वाले का भुजा?
2: सॉरी सर, मुझे भुजा नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती।
1: आपको क्या भुजाली पसंद है?
2: नहीं, कोई नहीं, मैं ये सारी चीजें खाती नहीं, कभी जल्दी नहीं।
1: ये खाने वाली चीज ही नहीं होती, दरअसल ये फील करने वाली चीज है, इतनी ऊंची होती है।
2: हाँ, तो अगर आप फील भी कराने की कोशिश करेंगे तो मुझे गंदी फीलिंग आएगी क्योंकि मैं खाती नहीं।
1: बात चेंज कर देते हैं क्योंकि वो हम लोगों को पसंद है। उससे ज्यादा बेइज्जती अब हम कहाँ देखें, मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें देखना चाहिए।
0: नहीं, तली भुनी चीजों से बहुत दूर राजू भुजा वाला है।
1: तो भुनी चीज तो है ना आज मनु, तली तो हटा दी, भुनी तो है।
2: भुनी है ना उसे,
0: मतलब खाली भुना हुआ है वो।
2: हाँ,
0: तो तला हुआ नहीं है तो बहुत अच्छा लगता है।
1: तो भुनी भुनी चीज बोलिए।
0: हाँ, भुनी भुनी चीज।
2: भुने चने भी लोग बहुत पसंद करते हैं।
0: हाँ, वही
1: तो। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे सवाल है अर्जुमनु, जैसे आज तक मेरे साथ कंफ्यूजन है जब कभी भुजा वाले के यहाँ जाते हैं, शायद मेरा है कि लोगों का, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा प्रश्न कि इसमें डलाना क्या क्या है।
0: हाँ,
1: इस बार मटर हटवाना है, चावल डलवाना है या चूरा डलवाना है, मूंगफली तो खैर रहती रहती है, चना रखवाना है या भीगा वाला या सूखा वाला।
0: हाँ, ये होता है, असली में होता ये है कि उसने तत्काल भुना और आपको तत्काल खाना है तब तो चल जाएगा वो भीगा वाला।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आपको कुछ देर के बाद खाना है तो वो कच्चा वाला ही ठीक होता है, नहीं तो फिर उसका टेस्ट हल्का सा बिगड़ता है।
1: बिगड़ जाता है, कई बार मैंने देखा भीगे वाले में हल्का कुछ वो बालू रह जाता है, कुछ चिपक लेता है,
0: चिपक लेता है, तो एकदम कंफर्म हो गया कि वो सूखा वाला ही ठीक है।
1: कंफर्म है ना
0: जी?
1: डन, पक्का
0: पक्का पक्का।
1: ऑलराइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लिया जाए छोटा सा।
0: संदेह।
1: तो चलिए भाई, एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। ऑफ कोर्स आपके ओपन माइक वाले प्रोग्राम में आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। जी हाँ, तो हमने अजिता जी के साथ बहुत ही प्यारी सी बात की और प्यारी सी बात करने के पश्चात हिंदी दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रेषित की। अदनान सर भी हमारे साथ बने रहे और अब चलिए इस गुफ्तगू को, इस बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल। तो भाई वैसे हम बता दें कि देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी भाषा है इसको देश की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए तो पहली बात तो लोगों को लगता है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट नेशनल नहीं है, राजभाषा,
2: राजभाषा
1: नॉट राष्ट्रीय भाषा
0: नहीं
1: है ना। तो ये अक्सर लोगों में होता है, कई बार इवन मुझे लगा कि कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो यस, और उसमें लोगों को लगता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है, जबकि
0: राजभाषा
1: है। चलिए फिलहाल इसी भाषा भाषाओं के खेल के बीच में एक अपनी भाषा में कोई बात करने आ गया लिसनर चुनते देख कौन है भाई। हाँ जी हेलो, कौन है आप और अपने बारे में?
3: पूर्णिमा बोल रहे हैं सर।
1: पूर्णिमा, ये दिन में कैसे आज?
3: अरे सर, मतलब मौका निकाल के कॉल किया, संडे
1: है। मौका निकाल के कॉल किया
3: जी सर, क्योंकि मैंने सोचा कि आज कॉलिंग प्रोग्राम है, पिछली बार था तो किसी वजह से मेरी कॉल नहीं रिसीव हो पाई, लेकिन मैंने सोचा इस बार हम कॉल करते हैं।
1: वाओ क्या बात है,
3: तो कॉल लग भी गई
0: जी। पूर्णिमा जी नमस्कार।
3: जी सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल जैसा आप लोग रख ले भाई।
3: अब सर हम कैसे रख सकते हैं, मतलब आप तो स्टूडियो में
0: है ना। मतलब जैसा आप लोग दुआओं में रख लें,
1: चॉकलेट तक तो ठीक था, मतलब पालने वाला क्या है।
2: प्यार दिला
3: नहीं, सर आप खुश हैं, स्वस्थ रहें, यही दुआ करते हैं।
0: बस बस यही हमने कहा कि मतलब जैसा आप चाहेंगे वैसे हम लोग रहेंगे,
3: क्योंकि
0: श्रोताओं का ही योगदान हम लोगों के पीछे है
3: जी। और मैंने सुना कि आज कॉलिंग प्रोग्राम है, मुझे जहाँ तक सर याद है ये तीसरी बार मेरी ओपन माइक में बात हो रही है।
0: क्या बात है, पहली बार आप कभी भी अपनी एक जो है वो साक्षात उपस्थिति भी दर्ज कराइए।
3: जी सर हम समझ नहीं पाए,
0: मतलब
1: ओपन माइक में सीधे सीधे आप स्टूडियो तक आइए। हाँ।
3: सर पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी, तो इसका वादा नहीं कर सकते।
0: नहीं, कोशिश कीजिएगा, वादा करने को कौन कह रहा है, कोशिश कामयाब हो जाएगी।
1: इसके लिए मुझे लगता है आपको फ्लाइट टिकट देना पड़ेगा इनको।
3: चलिए सर हम कोशिश करेंगे, हमारी बिटिया रानी मिलना चाहती थी अदनान सर से।
0: हाँ तो बिल्कुल अदनान सर मिलेंगे।
3: वो कॉम्पिटिशन जो जीती है ना।
1: हाँ हाँ बताया था आपने मॉर्निंग में आज।
3: जी उसके फ्रेंड्स सारे आ गए हैं।
1: अरे वाह क्या बात है।
3: सर आपको पता है कल तीज है और एक दूसरे के हाथ में, मतलब मैं दिखा नहीं पाऊंगी इस समय आपको, वरना मैं दिखाती, जो हाथ में सर मेहंदी लग रही है एक दूसरे के।
1: वाओ,
3: मतलब मैं क्या ही बताऊं।
1: मतलब काफी खुशनुमा सा माहौल है घर में आपके।
3: खुशनुमा सा माहौल है, मैं टाइम निकाल के मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ सर, मैंने कॉल किया, मुझे लगा कि आप दोनों सर हैं तो बात करना चाहिए, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था और मैंने सोचा लाइव है, कॉलिंग का मौका है तो एक बार फिर से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़ी, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ शेयर किया
3: जी। तो सर हम कुछ सुनाना चाहते हैं आज।
1: प्लीज प्लीज प्लीज सुनाइए।
3: सर मैंने कुछ लिखा था, हालांकि वो अभी इनकम्प्लीट है, तो वो मैं फिर कभी सुनाऊंगी, थोड़ा उसमें उर्दू का शब्द है, लेकिन आज जो मैंने लिखा है तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ।
1: प्लीज प्लीज सुनाइए
3: जी। खुशी से ना गुजरे तो जमाने बोझ लगते हैं, खुशी से ना गुजरे तो जमाने बोझ लगते हैं, हो अपनी ही रुसवाई तो अफसाने बोझ लगते हैं। खैर बुरे नहीं थे हम, खैर बुरे नहीं थे हम सब साबित नहीं कर पाए, खैर बुरे नहीं थे हम सब बस साबित नहीं कर पाए, जब नए मिल जाए तो पुराने बोझ लगते हैं। आगे गौर कीजिएगा कि जिन्हें कभी अपनी दुआओं में मांगा करते थे, कि जिन्हें कभी अपनी दुआओं में मांगा करते थे, वही लोग एक दिन बेगाने बोझ लगते हैं। वक्त बदलता है तो रिश्ते के मायने भी बदलते हैं, कि जब वक्त बदलता है तो रिश्तों के मायने भी बदलते हैं, कल जो सहारे थे आज बहाने बोझ लगते हैं।
1: क्या बात है,
3: कि कल जो सहारे थे आज वो बहाने बोझ लगते थे। हमने तो दिल से निभाया था हर एक रिश्ता, मगर दिल टूट जाए तो सारे तराने बोझ लगते हैं।
1: क्या बात है
3: कि अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कि अजीब दस्तूर है इस दुनिया का भी साहिब, मतलब निकल जाए तो याराने भी बोझ लगते हम खामोश क्या हुए सबने फैसला कर लिया कि अब हमारी सफाइयां भी फसाने बोझ लगते हैं।
1: वाह क्या बात है।
3: हम खामोश क्या हुए सबने फैसला कर लिया कि अब हमारी सफाइयां भी और फसाने बोझ लगते हैं।
1: थैंक यू, बहुत सही
0: में
3: सर। आखिरी लाइन, कसूर इतना था कि हम बदलना सीख ना पाए, कि कसूर बस इतना था कि हम बदलना सीख ना पाए, वरना आजकल तो सच्चे लोग भी जमाने को घोष लगते हैं।
1: क्या बात
3: थैंक यू।
1: बहुत ज्यादा जख्म है, जल्दी भर जाए उम्मीद करते हैं।
3: अरे नहीं सर, एक बहुत ही प्यारा लिखा था लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फुर्सत मिलती है इस समय ना, किताबों का ज्यादा रुख कर लिया है थोड़ा सा।
1: बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमसे शेयर भी किया।
3: जी थैंक यू सर, बाय
1: बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स ये हमारे साथ में पूर्णिमा जुड़ गई थी और इन्होंने हमसे बातचीत किया। कहीं ना कहीं लगातार भाई आपके कॉल्स आते जा रहे हैं और लगातार आप भी सोच रहे हैं कि लाओ कल है हिंदी दिवस तो आज क्यों ना हम सब लोग भी प्री में मना ले। आजकल प्री का बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ, प्री वेडिंग है, प्री विशेस है। हालांकि हम तो अभी भी उसमें आते हैं कि भूल जाते हैं और बाद में करते हैं, बिलेटेड लगा के हम सब करते हैं, मतलब विशेस तो ये तो होता है। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ना है, देखते हैं कौन है वो। हाँ जी हेलो हेलो
4: हेलो सर, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
4: सर मैं पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर रायबरेली से।
1: जी पिंकी रिंकी, दीवानों के शहर रायबरेली से आपका स्वागत करते हैं। गोंडा
4: जी सर, कौन से शहर?
1: बहुत बढ़िया। और हम लोग हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे, कुछ आप भी सुनाना चाहेंगी?
4: जी सर, गाना सुना सकते हैं क्योंकि मुझे गाने गाने का बहुत शौक है।
1: क्लिष्ट हिंदी में होना चाहिए जिसमें किंतु परंतु परिस्थितियां अनुसूचित जाति और जाति मतलब जो भी होगा इस तरह के शब्द आने चाहिए।
4: सर आपने तो फंसा दिया हमें।
1: ऑफ कोर्स, ये एक गाना आप गा सकती हैं। चतुर नार बड़ा होशियार,

0: वाह क्या बात है, आपने हिंदी दिवस को दो शब्दों में गा करके इतना बेहतरीन विश किया है कि मैं कल आपसे वापस से बात करना चाहूंगा कॉल इन प्रोग्राम में, जब हम हिंदी दिवस एक बार फिर से कल के ही दिन सेलिब्रेट कर रहे होंगे।
1: जी जी सर, बिल्कुल सर। और सर, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है सर, हमें तो हिंदी बोलना और लिखना दोनों बहुत पसंद है सर।
0: अच्छा, तो हिंदी जैसे हम भी लिख लेते हैं बहुत अच्छा, हाँ पर छोटी की मात्रा आधना, दा पर बड़ी की मात्रा, हिंदी हो जाता है।
1: जी सर, बिल्कुल सर।
0: और आपका नाम भी हिंदी में, सबसे अच्छी बात तो ये, रिंकी और पिंकी, एक नहीं दो दो नाम है, वो भी दोनों हिंदी में। अरे ऐसे बड़ा ऑफर क्या होता
1: है। सर मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम पिंकी है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर का नाम रिंकी है, और हम जिस भी स्टेशन पे जुड़ते हैं वहाँ पर दो नाम एक साथ ही जाते हैं।
0: अच्छा, आपका वो रेलवे स्टेशन पे तो अनाउंसमेंट नहीं होता है, रिंकी एंड पिंकी दोनों बहनें आ रही हैं। हम रेलवे स्टेशन की बात कर, रिंकी और पिंकी दोनों बहनें प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ रही हैं।
1: वैसे सर बताना चाहेंगे, अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना तो दोनों लोग साथ में ही जाते हैं।
0: ये बढ़िया है, याराना तो बहुत देखा है, बहनापा क्या बोलेंगे, बहनाना।
1: अच्छा जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है सर।
0: क्या बात,
1: और सबकी बहनें ऐसी नहीं होती जैसी मेरी बहन है।
0: नहीं नहीं, ये तो हर कोई कहता है, क्योंकि हर किसी को डर रहता है, जाते ही मुंह पे थप्पड़ पड़ जाएगा, मुझे भी डर रहता है, तो इसलिए मेरी बहन बहुत अच्छी।
1: मैं अपनी बहन को इतना परेशान करती हूँ ना, इतना उसको हंसाती हूँ कि सर वो मुझसे परेशान हो जाती, लेकिन कभी मारती नहीं है सर, और डांटती नहीं है।
0: हमारे घर से बम्मी बना रही होंगी सीधे।
1: ऐसा तो सर है ही
0: कई
1: नहीं,
0: सालों की दुश्मनी एक बार बम लगा के हो जाएगा काम।
1: नहीं नहीं सर, कभी भी आप मेरे घर आइए और आप आके देख लीजिए सर, क्योंकि सर हम जैसे कोई हमसे पूछता हमारी बहन के बारे में, हम अपनी बहन के बारे में बताते ना, तो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता सर, कोई मानता ही नहीं है।
0: कोई बात नहीं, जो नहीं मानते उनको जाने दीजिए, हम मान गए।
1: जैसे सब लोग पूछते हैं आप लोग जुड़वा हो, तो हम बोलते नहीं है, तो बोलते हैं कि आप दोनों तो लगती हैं, फिर बोलते आप दोनों में झगड़ा होता होगा, तो हम बोलते नहीं होता है, हम लोग अच्छे मतलब बहन भाई हैं या बहने हैं, तो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों की लड़ाई ना होती हो, तो सर हम लोग समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, तो सर क्यों लड़ाई झगड़ा करें, प्यार से रहें ना, संगत से रहें सर।
0: खुशी हो रही, पहली बार किसी समझदार बहनों वाली जोड़ी से मेरी बात हो रही है, थैंक यू सो मच।
1: जी सर, वैसे आज तक हमें लगता किसी से पाला नहीं पड़ा था आपका।
0: हाँ नहीं, आज पड़ा है, समझदार है आप, मतलब मैं समझ रहा हूँ।
2: असलियत में जो पाला होता है वो जाड़े में पड़ता है, तो इसलिए गर्मी में पाला पड़ना थोड़ा सा, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो है वो आज।
1: जी वैसे सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप थोड़ा सा तेज।
0: वो नाइट का शो करते हैं ना, तो उसी
2: हम नाइट वाला शो करते हैं।
0: आज डे में चले आते हैं तो
1: अच्छा लगा सर आपसे आज बात करके, आप मतलब आज आपके कार्यक्रम से जुड़ के हमें ना थोड़ा सा अलग हटके कुछ सुनने को मिला, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अरे बिल्कुल, ये जानवरों से भी अच्छा लगता है, क्योंकि जानवरों के बीच में भी बाती आते हैं, तो वो भी कहते हैं अच्छा लगा।
1: बिल्कुल सर, जानवरों से भी प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी हक है जैसे हम इंसानों को है।
0: बिल्कुल
2: जी, बिल्कुल सही बात है, और हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपकी बहन चाली कामयाब हो,
1: और आपका कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
0: थैंक यू सो मच। नमस्ते। सो भाई ये फिलहाल लास्ट कॉलर थी, क्योंकि अब वक्त हो गया है विदा लेने का, पूरा एकदम पीक पर आ गए हैं, तो जाते जाते अजिता जी क्या कहेंगे आप?
3: सर क्या कहूँ, हिंदी दिवस की फिर से शुभकामनाएं, और अभी अभी सर ने फिर से मुझे यमक अलंकार की याद दिला दी, पाला गिरता है, पाला पड़ता है और पाला जाता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है जाते जाते एक कॉल लास्ट रिसीव्ड हो गई है, और उनसे बस विशेष ले लेते हैं। जी अविनाशी, कैसे हैं आप?
4: जी बहुत बढ़िया है, और हिंदी दिवस की जो कल आने वाला है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है, तो इसकी अगर हम थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डाल दूं, तो क्या है कि देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, और जो 14 सितंबर है वो हमारे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, तो इसके कारण ये है कि 1949 में हमारे राष्ट्र में यानी भारतवर्ष में इसे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति दिया गया था, इसी वजह से इस दिन को चुनाव किया गया है कि, और ये 1953 से मनाया जा रहा है। और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका कारण यह है कि 1975 में जितने भी विश्व में हिंदी जो हमारे लोग हैं एक समावेश वहाँ पर बैठ रहा था, इसलिए इस वजह से उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 2006 से विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा जानकारी था जो मैंने सोचा चलिए आज के दिन साझा कर लेते हैं, कल तो आना ही है तो फिर कुछ ना कुछ सुना देंगे।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी
4: जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, क्यों अर्जुन?
2: जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे हिम्मत लेने का वक्त आ चुका है, तो बस यही कहना है कि खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में ठीक 1 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है
0: गोंडा शहर की धड़कन।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून, हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर्चुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और घड़ी में वक्त हो चला है 2:06 बाय स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम। यह गोंडा शहर की धड़कन, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आर्चुनती मौजूद हैं और लेकर आ चुकी हैं आपकी अपनी, यानी कि कहें तो मेरी वाली प्लेलिस्ट और संडे स्पेशल इन द टॉप 20, जिसमें होते हैं 20 गाने बॉलीवुड की, बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी न्यूज, और हम एंजॉय करते हैं मिल करके एकदम सुपर हिट जबरदस्त बवाल वाले गाने, जो आज मैं आपके लिए स्पेशली पेश करने जा रही हूँ इन द टॉप 20 के। वो 20 गाने को सुनने के बाद आप झूमेंगे, जरूर झूमेंगे, झूम कर बताइएगा जरूर। फिलहाल आइए चलते हैं, हम ट्यून कर लेते हैं अपने पहले गाने को, लेकिन उससे पहले लगाइए हाजिरी अपने अपने चैट बॉक्स में कि आप मौजूद हैं एंजॉय करने अगले 2 घंटे मेरे साथ नॉन स्टॉप बॉलीवुड हिट। जी हाँ, और अपना फेवरेट गाना जरूर से कमेंट कीजिएगा कि ये वाला गाना हमें सबसे ज्यादा पसंद आया है या फिर ये वाला गाना हमें सबसे ज्यादा पसंद है। बताइएगा जरूर किस गाने में सबसे ज्यादा आपको मजा आने वाला है। फिलहाल प्लेलिस्ट मेरी है, तो आइए एंजॉय करते हैं, चलते हैं सॉन्ग नंबर 20 की तरफ। और क्योंकि 80s का ट्रेंड इस वक्त हवाओं में बहुत तेजी से घुल रहा है, तो क्यों ना शुरुआत किसी 80 के दशक के गाने की सही कर ले, लेकिन थोड़ा सा रीमेक वर्जन, थोड़ा सा बढ़िया गाना, थोड़ा सा डीजे वाला वाइब आपको देने जा रहे हैं हम। क्योंकि एक वक्त था जब ये डीजे बवाल मचा रहा था हर जगह पर, हर स्टेज पर, हर प्लेटफॉर्म पर, और उस डीजे का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, ये हमारी लड़कियों का एक ग्रुप था जिसने पुराने गानों को उठा उठा के इतना रिमिक्स किया है, और उसके बाद इन गानों को पेश किया गया है, और ये गाने इतने ज़्यादा पसंद किए गए हैं कि भैया इतना तो ओरिजिनल वाले को भी मोहब्बत नहीं मिली थी। तो वो कौन सा है सुनाते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन आप इंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 20 टॉप 20 में, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग नंबर 19 ओ जाने जाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए हमने पेश कर दिया था, और उससे पहले आपने एंजॉय किया था सॉन्ग नंबर 20 मेरे नसीब में। एंड आइए चलते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में देखने के लिए कि भैया किन किन के मैसेजेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैसेज जो हमारे पास है वो है सविता दुबे जी का, जिन्होंने बहुत सारे इमोजीज सेंड किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद है महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं नमस्कार उन्नति मैम जी, नमस्कार आपको भी। एंड इसके बाद लिखा है आपने, आज तो आपने समय से पहले ही हाजिरी लगा दी, सोचा था 3 बजे मुलाकात होगी लेकिन मैम जी तो 2 बजे ही सरप्राइज देने आ गई। महेंद्र दीपन गांव रूड़ जिला नागौर और राजस्थान से मेरी हाजिरी भी लगा लीजिए मैम जी, आज की क्लास में सबसे पहले पहुंच गया हूं। हाँ जी, और क्योंकि आज है संडे और संडे को हमारी हाजिरी 2 बजे से लग जाती है, तो भैया याद रखिए, वैसे तो मैं आपको मिलती हूँ 3 बजे पूरे हफ्ते, लेकिन संडे स्पेशल होता है हमारा 2 बजे से। इसके बाद सविता दुबे जी के बहुत सारे इमोजेस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इंटर टॉप 20 में। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए, बिकॉज अगला सॉन्ग कर रहा है आपका इंतजार, सॉन्ग नंबर 18। एनी गेस कौन सा हो सकता है? 18 और 80s बहुत मिलता जुलता है, तो क्यों ना आपके लिए पेश कर दिया जाए सॉन्ग कलियों का चमन जब बनता है। आइए एंजॉय करते हैं, मिलकर एंजॉय करते हैं, मिलते हैं अगले गाने पर।

0: हाँ जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे कलियों का चमन। जब बनता है थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती लगते हैं, सोना चांदी लगता है। एंड हमारी सविता दुबे जी ने बहुत सारे इमोजीज हमें सेंड कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं हम किशोरदा की आवाज़ में, याराना फिल्म से वन ऑफ द ओरिजिनल गाना सारा जमाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद राजनीति, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली।
1: Radio Ganasthali 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 17.

0: और ये थी आवाज हमारे अपने पसंदीदा किशोर दा की। याराना फिल्म से आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना। बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी और बेहद ही खूबसूरत गाना लगता है मुझे। एंड हमारे महेंद्र जी लिख रहे हैं ये गाना टॉप। ओके, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने को लेकर के। अनु मलिक साहब का म्यूजिक आपके लिए पेश करने जा रही हूँ। एंड हम आपको बता दें ये गाना है जुड़वा 2 से, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। और इस गाने को तो भैया इंस्टाग्राम में काफ़ी ट्रेंड में रखा गया है, बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है। एंड पहले फिल्माया गया था सलमान खान के ऊपर आपको जहां तक याद होगा, और दूसरी बार फिल्माया गया था वरुण धवन के ऊपर, लेकिन फिल्म का टाइटल सेम टू सेम था, फिल्म की कहानी सेम टू सेम थी और फिल्म के गाने भी सेम टू सेम थे। और कमाल की बात यह है कि दोनों में ही अनु मलिक साहब का म्यूजिक है, उन्हीं की आवाज़ है और बेहद ही खूबसूरत गाना लगता है। आप चाहे किसी भी वर्जन का एंजॉय करें, अगर आप 90s के फैन हैं तो हो सकता है आपको 90 के दशक का गाना काफ़ी अच्छा लगता हो, लेकिन ये गाना ट्रेंड में है तो क्यों ना हम आइए एंजॉय करते हैं। वैसे भी आजकल हम थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वो भी म्यूजिक वाला ट्रेंड। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद आरजी रति और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली।
1: रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: हाँ जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे नेहा कक्कर अनु मलिक की आवाज में ऊंची है बिल्डिंग। एंड इसी के साथ बॉलीवुड की तरफ थोड़ा सा रुख कर लेते हैं, क्योंकि यह है आपका बॉलीवुड वाला शो इन द टॉप 20। और फिलहाल आपके लिए एक बढ़िया सी खबर ये है कि सुनने में आ रहा है सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी एक साथ नजर आने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के अंदर जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, सुनने में आ रहा है भैया कि ये लोग आ रहे हैं मीना कुमारी की बायोपिक लेकर के। अब आपको भी पता है कि मीना कुमारी बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाती हैं, उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए, इवन उनके कई सारे गाने ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर लगता है कि उनकी जिंदगी के ऊपर लिखे गए हैं। राइटर ने कैरेक्टर को डिज़ाइन में रख के नहीं, उनको डिज़ाइन में रख के, उनको सोच कर, उनको इंस्पायर करते हुए, उनके आइडिया को ले करके उन गानों को लिखा था। और उनकी जो लास्ट फिल्म थी वो कभी वो देख भी नहीं पाई, अफसोस की बात है। फिलहाल के लिए तो वो नज़र आने वाले हैं, यानी कि सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी एक साथ अगर नज़र आते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे कमाल और मीना के फिल्म में, जिसमें आपको तृप्ति डिमरी एज अ मीना कुमारी नज़र आएगी। अब आप सोचिए जरा, तृप्ति डिमरी जिनकी परफॉर्मिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, पर चाहे आप उनकी फिल्म कला देख लें या फिर उनकी दूसरी फिल्में देख लें, उनकी एक्टिंग टॉप नॉच होती है। और ये बात तो उनके फैंस को काफ़ी अच्छे से पता है। तो भैया जो उनके फैंस हैं वो तो इसी इंतज़ार में है कि कब वो नज़र आने वाली हैं एज अ मीना कुमारी, वो एरा वापस से कब लेकर आएंगी, कब हमें फील होगा कि मीना कुमारी जी हमारे साथ हैं। तो भैया मीना कुमारी जी के फैंस और तृप्ति डिमरी के फैंस दोनों एक्साइटेड हैं, और अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। सॉन्ग नंबर 15 आपका इंतजार कर रहा है, सॉन्ग नंबर 15 जो कि मेरी वाली प्लेलिस्ट का बहुत ही खूबसूरत गाना है, केके की आवाज़ में है, आई मिस केके। आई होप आप भी उन्हें याद करते होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है ना कि जब भी सुनते हैं तो लगता है कि वो हमेशा हमारे दिल में है, हमेशा हमारे साथ है। और ये बात सच भी है, वो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इमरान हाशमी पर फिल्माया गया केके की आवाज, ब्लॉकबस्टर जोड़ी, और आपका अपने बॉलीवुड का ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: जी और आप एंजॉय कर रहे हैं तू ही मेरी शब है, तू ही मेरी सुबह। और हम आपको बता दें भैया, आवाज है इसमें हमारे के की, प्रीतम का म्यूजिक है और सैयद कादरी साहब ने लिखे हैं इस गाने के बोल। बहुत ही प्यारा सॉन्ग गैंगस्टर फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे और वक्त है अगले गाने को ट्यून करने का। अगला गाना आपके लिए थोड़ा सा नचैतिक होने वाला है क्योंकि भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं दलेर साहब और उनकी आवाज़ तो आप ऑफकोर्स जानते हैं, जहाँ भी उनकी आवाज़ आती है अपने आप सबकी एनर्जी हाई हो जाती है। फिर चाहे वो शादी हो, बारात हो, पार्टी हो, घर हो, मूड हो, स्टूडियो हो या फिर हो आपका क्लब, जहां भी उनकी आवाज आती है बस एक अलग वाइब, एक अलग एनर्जी आपको मिलती है। तो आइए एंजॉय कर लेते हैं, कर ले बेबी डांस फैंस। जी हाँ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे दलेर मेहंदी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गाने की तरफ, जो कि होने वाला है कौन सा वो हम आपको बताएंगे लेकिन इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

0: और भैया ये थे हमारे दलेर साहब जो जब भी आते हैं माहौल बना देते हैं, पूरा मूड बना देते हैं। और आपको भी पता है कि भैया कितना भी इंसान उदास बैठा हो, लेकिन जिस तरह से दलेर साहब की एंट्री होती है मूड एकदम सुपर फास्ट हो जाता है, एनर्जी आ जाती है और लगता है कि आलस वालस खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी वाला मूड बन चुका है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गई है नाजिया अंसारी जी, आपका स्वागत करते हैं। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड पप्पू जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून टू यू। महेंद्र जी ने लिखा है कि उन्नति मैम जी आज दलेर मेहंदी साहब के ही पुराने गाने सुना दीजिए, माहौल बन जाएगा बेशक। वैसे आपके कहने से पहले ही हमने उनके कुछ गानों को पहले ही सेट कर रखा है क्योंकि ये मेरी वाली प्लेलिस्ट है। एंड इसके बाद लिखा है आज ज्योति जी आप हंसना मना शो चालू करो, बहुत लोग बोल रहे हैं। ऑल राइट, मैं इस पर दोबारा सोचती हूँ। वैसे तो ये शो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट है तो एक बार बात जरूर की जाएगी। नाइस सॉन्ग लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत करते हैं टॉप 20 में। एंड आइए ट्यून कर लेते हैं अपना अगला गाना। एज यूजुअल हमने कहा ही था कि अगला सॉन्ग भी दलेर की आवाज में ही होने वाला है। तो भैया दलेर जी एक वो सिंगर है ना जिनके ऊपर लोगों ने बहुत ट्रॉलिंग की है, जिनको कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे गाने तो सिर्फ लड़कियों की वजह से पॉपुलर होते हैं, तुम्हारे गानों में तो कोई बात ही नहीं होती है। तो भैया उन्होंने ये गाना खुद अपने लिए गाया था और उसमें सिर्फ खुद ही नजर आए थे, और वो गाना भी इंडिया से बाहर हिट हो गया। हर दूसरा इंसान जो इंडिया से बाहर रह रहा था वो इंजॉय कर रहा, जिन्हें हिंदी नहीं भी आती है वो दलेर साहब के गानों को झूम रहे थे सुनकर, इंजॉय कर रहे थे। और तब जाकर उन्होंने अपने हेटर्स को जवाब दिया इस बात पर दिया कि भैया देखो बोलकर कुछ नहीं होता है, अगर आपके एक्शंस में दम है ना तो सबको मानना पड़ता है कि आप क्या हैं, चाय है पानी है या चाय कम पानी है। बट अगर आपने कहीं ना कहीं उनको बोल के जवाब दे दिया, खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया अपने हेटर्स के सामने या आपने उन लोगों के सामने जो आपको पसंद नहीं करते, जो सिर्फ आपका मजाक बनाते हैं, तो ये आपकी कमजोरी हो जाती है। भैया दलेर साहब सिखाते हैं कि अगर आपको कोई नफरत कर रहा है, आपको कोई ट्रॉल कर रहा है, आपको कोई नापसंद कर रहा है, तो जवाब उसके मुंह पर बोल के नहीं देना है। दे रहा कैसे है जवाब, अपने काम से, अपनी कामयाबी से। और यही तो उन्होंने भी किया था। तो आइए एंजॉय करते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गाना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूं उनके गानों को प्ले करने के लिए। बैक टू बैक दो सॉन्ग उन्हीं की आवाज में, लेकिन पहला गाना हम एंजॉय करेंगे जो होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि हो जाएगी बल्ले बल्ले। और जी हां, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गाना सरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: झूमते छामते हम वापस से आ चुके हैं। आप एंजॉय कर रहे थे दलेर साहब की आवाज में हो जाएगी बल्ले बल्ले, और आई थिंक आपने बल्ले बल्ले कर भी लिया होगा इनकी आवाज में। भैया आप रुक ही नहीं सकते हो। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप बहुत नॉनचैलेंट इंसान हैं, आप कुछ नहीं करने वाले, आप डांस नहीं करते, आप वाइब नहीं करते, आप झूमते नहीं है, ऐसे कैसे नहीं करते हैं। दलेर साहब के गाने हम लगाएंगे और आप देखते हैं उसके बाद कैसे आपके हाथ पैर नहीं चलते हैं। अगर उसके बाद भी आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी स्माइल पे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप अपने हाथ पैरों के मूवमेंट पे कंट्रोल कर सकते हो, तो सल्यूट हो आपको, क्योंकि हमसे तो नहीं होता। जब भी दलेर साहब के गाने आते हैं या फिर कोई पंजाबी बीट आता है तो यह बस कहीं ना कहीं झूमने का मन कर जाता है। और यह भी नहीं आता कि हमें डांस बहुत अच्छे से आता है इसलिए हम झूम रहे हैं, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारे हाथ पैर खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं, हमको खुद भी समझ में नहीं आता कि हमारा दिमाग इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से ऑफकोर्स आपके लिए पेश करने जा रहे हैं हम दलेर साहब की आवाज में ही एक बहुत ही बेहतरीन सा नगमा। एंड इसके बाद हम चलेंगे आपके अगले पंजाबी सिंगर जिन्होंने रोते धोते हार्ट ब्रोकिंग गाने को भी ऐसा बनाया है कि आजकल आप पार्टियों में एंजॉय कर दे। आई थिंक आपने गेस कर लिया, अगर नहीं किया है तो इंतजार रखिए क्योंकि बस कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट के अंदर आपको वो गाना भी सुनाते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे मेरी वाली प्लेलिस्ट ऑन इंडिया टॉप 20 आपके अपने रेडियो ज्ञान स्लीपर।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 12.

0: हां जी, और अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे, जिंदगी के सारे मजे आप कैश में लोगे। हालांकि कैश नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे जबरदस्त हिट गाने, और आप एंजॉय कर रहे थे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से दलेर मेहंदी जी की आवाज में ना ना ना ना नारे और नारे नारे करते हुए हम चैट बॉक्स में चल लेते हैं और आपके मैसेजेस को देख लेते हैं। तो भैया अरविंद जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करते हैं हम। और आपने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? डांस करते हैं, बेशक डांस कीजिए, क्योंकि डांसिंग वाली प्लेलिस्ट ही चल रही है ऑलमोस्ट। एंड नाजिया जी एंड महेंद्र दीपन जी लगातार अपने फुल फॉर्म में डिस्को डांस कर रहे हैं, हो जाएगी बल्ले बल्ले, पूरा पंजाबी जोश है जी। हाँ, थैंक यू सो मच। और इसके बाद लिखा, एक घंटा कब खत्म हो गया पता नहीं चला। अजी ऐसा ही होता है, जब भी हम इंडिया टॉप 20 में कुछ गाने मजेदार लेकर आते हैं हमको वक्त हमेशा धोखा देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सही सुधरने वाले, हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही गाने लेकर आने वाले हैं। एंड अरविंद जी लिख रहे हैं, कुछ तो हुआ है सिंगर को तभी नारे नारे नारे नारे नारे नारे नारे नारे, इतना सारा नाम बोल चुका है वो। फिलहाल ये तो सिंगर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है, सिंगर से पहले राइटर से पूछना पड़ेगा कि उसको क्या हुआ था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और इंजॉय करते हैं सुखवीर की आवाज में। ये वाला गाना हिंदी मीडियम से आपके लिए पेश करते हैं, एक हार्ड रॉकिंग सॉन्ग बट पार्टी वाइब में, यानी कि करेले को चाशनी में लपेट के हम आपको भेज रहे हैं। तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के एक और जबरदस्त सॉन्ग, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 11।

0: था भैया करेले को हमने चाशनी में लपेट के आपको भेज दिया था। आई होप आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आया होगा। सुखबीर की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे हिंदी मीडियम से, एंड इसी के साथ आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए, बिकॉज अगला गाना और भी ज्यादा जबरदस्त है। हालांकि है एकदम नया नवेला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जवानी सॉन्ग। और धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं जी शुभ दोपहर या शुभ आफ्टरनून, शुभ आफ्टरनून आपको भी, मुझे भी एक गाना सुना दीजिए। भैया इंतजार कीजिए क्योंकि आज मेरी वाली प्लेलिस्ट चल रही है, यानी कि कॉलर ट्यून तो नहीं है बट क्या पता आपका अलग अच्छा निकल जाए और ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हो। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आज की पर्ची धीरे धीरे खुलती है और मुझे भी नहीं पता हमारी अगली पर्ची में कौन सा गाना होने वाला है। एंड महेंद्र जी लिख रहे हैं, क्या आपको पता है इस गाने की वजह से उस टाइम मैंने ये पूरी फिल्म देखने गया था। सल्यूट है, और ऐसा होता भी है, इवन कई गाने की एक स्पेसिफिक लाइन होती है जिसकी वजह से हम पूरा गाना सुनते हैं। तो जब मैं ये कर सकती हूँ तो फिल्म देखना तो बहुत छोटी सी बात है ना आपके लिए। एंड सविता जी लिख रही है, उन्नति मैम मैं गेहूं चुन रही हूँ, चुना छोड़कर नाच रही हूँ। ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। और जो काम को छुड़वा दे वो हमारी प्लेलिस्ट है, सुनते रहिए एंजॉय करते रहिए। एंड इसके बाद लिखा है नाजिया जी ने कि जब उन्नति मैम होंगी तब कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस तारीफ के लिए, इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं सॉन्ग नंबर 10 को ट्यून करने के लिए। आप एंजॉय करने जा रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से द जवानी सॉन्ग। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि हाई बीट सॉन्ग आपके लिए पेश है अपनी आर्यमती की तरफ से।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

0: आप एंजॉय कर रहे थे द जवानी सॉन्ग, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 9 आपके लिए पेश करते हैं हम, थोड़ा सा 90s वाला वर्जन, बिकॉज ट्रेंड में वापस आते हैं। एनर्जेटिक बीट को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं और अगला गाना आपके लिए है मुस मुस हासी देव मलाई लाए मुस मुस हासी देव। हाँ जी, और यही कहना चाहूंगी कि जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी। अब ये जो भी खुशी है जरा मुस्कुराइए, और अगर आपको खुशी हो तो आप भी मुस्कुराइए, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना 99.6 FM रेडियो ज्ञान असली विद राज चुनती।
1: रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 9

और आप इंजॉय कर रहे थे मुसुमुस हासी देव मलाई लाया। और भैया ये गाना बताए नेपाली गाने से इंस्पायर्ड है शांतनु की आवाज़ में, यानी कि आपके अपने शान की आवाज़ में थी, इतनी शांत उनकी आवाज़ है, उनके नाम से बिल्कुल मैच भी कर जाती है। नाइस सॉन्ग लिखा है हमारे महेंद्र दीपन जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजिया जी लिख रही हैं कि हम मुस्कुराते नहीं हैं, दहाड़े मार कर हंसते, ऐसे ही हंसना भी चाहिए। धीरे धीरे मुस्कुराना क्या होता है, मुस्कुराते तो वहाँ हैं जहाँ पर हंसना मना होता है, जैसे कि हमारा शो का नाम था। फिलहाल आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी बनाकर रखिएगा क्योंकि अगला सॉन्ग आपके लिए पेश कर रहे हैं धड़क फिल्म से जिंगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

0: हां जी, और आप एंजॉय कर रहे थे बहुत ही प्यारा सा नगमा, जाने जा ढूंढता फिर रहा मैं तुम्हें रात दिन यहां से वहां। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चल रहे नमस्कार। उन्नति मैम जी नमस्कार, आपको भी आपका स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। एंड पंडित भोलानाथ मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी देशवासियों को कजरी तीज पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया सभी देशवासियों की तरफ से आपको भी कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आइए बढ़ते हैं एक अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ तुम फिल्म से, कवाली, और कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत गाना, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्पेशली जो बीच की लाइन्स है वो मेरी बहुत ही पसंदीदा है। आई होप आपको भी पसंद आएगा, इस गाने को सुनने के बाद आपको भी मज़ा आएगा, और क्योंकि अभी हमने एंजॉय किए थे बहुत हाई बीट, अब हम एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने थोड़े से पुराने गाने, और इसके बाद हम वापस से लेकर चलेंगे आपको अगले गानों की तरफ जो कि होने वाले हैं थोड़े से एनर्जेटिक, थोड़े से आपके पसंदीदा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पास, अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 5.

0: बेहद ही खूबसूरत और नॉस्टैल्जिक सॉन्ग आप एंजॉय कर रहे थे। एक मुलाकात जरूरी है सनम, और अरविंद जी कह भी रहे हैं फिर कर लो ना मुलाकात, बेशक करेंगे, तो बताइए कब आ रहे हैं आप स्टूडियो। एंड आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एंड महेंद्र जी ने लिखा था कि ये पसंदीदा गाना बन गया था 2013 में, मेमोरी। भैया मेरा तो आज भी पसंदीदा है। एंड इसके बाद पंडित जी लिख रहे हैं कि उन्नति बिटिया आज स्टूडियो से गीत बजाकर आपने क्षमा बांधे रखा है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए ट्यून कर लेती है अपने अगले गाने को। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी तक आप सूथिंग गाना एंजॉय कर रहे थे, तो थोड़ी सी एनर्जी वापस से आपके अंदर भरते हैं और आप एंजॉय करने जा रहे हैं दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 90s का बेहद ही उम्दा सॉन्ग है और आई होप आपको सुनकर बहुत मजा आने वाला है।
1: India Top 24 Song number 4

0: एंड अब वक्त हो चला है आपके अगले गाने को ट्यून करने का। सॉन्ग नंबर 3 आपको पेश करते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में, वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग एंड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जिससे आपकी एनर्जी आएगी वापस और आप करेंगे एंजॉय। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झलक दिखला जाए। इसके बाद हम मिलते हैं लेकर के आपके अगले दो गानों को जो कि हमारे बैक टू बैक होने वाले हैं। तो बने रहिए, सुनते रहिए द टॉप 20। आज का शो आपको कैसा लगा, आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 3.

0: सॉन्ग नंबर टू।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

और ये था आपका सॉन्ग नंबर टू जिसको आप एंजॉय कर रहे थे, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। और ऑफ कोर्स जाने से पहले आपके आखिरी के मैसेजेस ले लेते हैं, जो कि हमारे अरविंद कुमार जी का है फ्रॉम मनकापुर। आज का शो एकदम झकास, फैंटास्टिक, लवली, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग एंड चार्मिंग। उन्होंने मैम बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए। एंड ओके ओहो, इस सॉन्ग ने तो चार चांद लगा दिया आज के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू जी लिख रहे हैं गुड शो, थैंक यू सो मच। महेंद्र जी की तरफ से मैसेज आ चुका है, शो एकदम झकास लगा मैम, क्योंकि मैंने एक एक गाने को सुना था नॉन स्टॉप। क्या बात है, मतलब पिछले दो घंटे से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैप्पी कचरी तीज लिखा है हमारे पप्पू जी ने, आपको भी। और इसी के साथ आके यानी कि हमारा आखिरी गाना आपको ट्यून कर देते हैं इसी गाने के साथ। अब चाहूंगी आपसे इजाजत, मुलाकात होगी अपने अगले वाले शो में, तो बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। अगला सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में, इसी के साथ बाय बाय, टाटा।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को, और सबका स्वागत भी करते हैं और सबको ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। कजरी तीज की महादेव का त्यौहार है, सभी लोग जल वगैरह चढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अच्छा रखें, और जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं, हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें कॉल करके हमारे शो में हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रश्नों के समाधान हमसे प्राप्त करिए।
1: हाँ जी, और वैसे तो काफ़ी भीड़ थी आज और रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है।
0: जी, किसी तरह से उन सभी अवरोधों को पार करते हुए हम अपने शो में पहुंचे हैं ताकि हमारे लिसनर्स जो हमारा इंतज़ार करते हैं उनके लिए और उनके प्रश्नों के लिए हम आ गए हैं अपने निर्धारित समय पर।
1: वैसे आपको याद होगा कि हमने पिछली बार एक बहुत ही जाते जाते एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा छेड़ दी थी और मैंने कहा था कि इस पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है।
0: अक्सर करके ऐसा हो जाता है कि हम एक टॉपिक ख़त्म करते करते दूसरे टॉपिक की चर्चा छेड़ देते हैं, और जबकि उस पर जानकारी देने के लिए इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे बिंदु हैं जिनको हम एक बार में कवर भी नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल, और क्योंकि वो वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन भी आकर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर आजकल अर्ली प्यूबर्टी बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है।
0: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अर्ली प्यूबर्टी देखने को मिल रही है, बच्चे जल्दी एडल्ट भी हो रहे हैं, जल्दी यंग भी हो रहे हैं। मतलब एक तो एज वाला एडल्टनेस होती है कि भाई जिसको आप 18 साल पे मानेंगे तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन उनके बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं और इसके भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं, जो कि खैर अभी भी देखने को मिलते हैं, बट भविष्य में इसके बहुत ही भारी और घातक नुकसान होने वाले हैं, जिन पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी और विस्तृत चर्चा की जा सकती है।
1: जी, और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि भैया आजकल के बच्चे बच्चे तो रहे ही नहीं है। हम लोग कहाँ कहते थे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे ये होते हैं, बच्चे वो होते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं।
0: जी,
1: इवन आज आप इंस्टाग्राम खोल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि जितनी अदाएं आपको नहीं आती है इतनी तो एक बच्चे को आ रही है।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे इस बात से, हमारे इस चर्चा से सभी लोग सहमत ना भी हों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग इसके विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों, लेकिन जो आपने बात कही कि बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो बहुत सारी यंग जैसी और एडल्ट्री वाली हरकतें और गतिविधियाँ करते हुए मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनके माता पिता इन चीज़ों को देखकर इग्नोर करते हैं, या कई बार तो ऐसे भी कुछ वीडियोज़ आते हैं जिनमें उनके माता पिता वहाँ उपस्थित होते हैं, उनके साथ होते हैं, उनका साथ देते भी हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें उनके उचित समय पर ही हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, जो प्रकृति का नियम है, और बाकी इसी पे हम चर्चा आज करने वाले हैं।
1: बिल्कुल, एक तो हमारा खान पान है जो बदलता जा रहा है, हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं, हमारी हैबिट्स हैं, और उसके बीच में आ रहा है कि बच्चे अब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, गेम्स खेलने नहीं जा रहे, वो घर के अंदर हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, खुद को गेमर भी बता देते हैं, इवन कहते हैं कि हम पीसी पर गेम खेलते हैं। तो हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। इवन स्पोर्ट्स जो हमारे लिए होता भी है, एक क्लास होती है, एक पीरियड होता है स्कूल में, जो हमें स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं कि हमारा ये गेम्स पीरियड है, वो भी हमसे ले लिया जाता है कई बार, ये सोच करके कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में ही सब कुछ है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती जा रही है। खान पान में ऐसा है कि हम पैकेट फूड ज़्यादातर खाते जा रहे हैं, हमें लगता है कि बाहर से 30 मिनट में आने वाला खाना ही सबसे अच्छा है, घर में क्या रोज़ रोज़ वही खाना रिपीट हो रहा है। हालांकि आप अगर महीने में खाते तो वो सही भी है, लेकिन अगर रोज़ आपका बच्चा वही कर रहा है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें फ़ोन दे दिया जाता है, बच्चे खाना खाने से मना करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर्स करके दे दिया जाता है, और इन सब का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो उनकी हेल्थ पर पड़ता है, वो जो देखते हैं उसका इम्पैक्ट उनके हार्मोनल हेल्थ पर पड़ता है।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो आपने एक फ़ोन वाली बात इंक्लूड की है, इस पे तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा बार मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ, विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स में मैं इस बात को इंक्लूड करके बोलता हूँ। देखिए, जो ये फ़ोन बच्चे यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट मेरे भी घर में है, मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तमाम घरों में कि बच्चे खाना खाते वक्त जो है वो फ़ोन को देखते रहते हैं और फ़ोन देख देख करके खाना खाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो सकता है, थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, फ़ोन के चक्कर में वो धीरे धीरे खाना खा जाते हैं, तो घर वाले इसको दे भी देते हैं, उनको थोड़ी सी आसानी होती है बच्चों को फीड करने में। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हैबिट है, जो अच्छा देखिए, एक दिन अभी जैसा कि उन्नति मैम ने किसी विषय पर बोला था कि अगर एक दिन महीने में करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट यदि आप उसको अपने डेली रूटीन और डेली हैबिट में ले आते हैं तो वो चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आपको इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करती है।

0: और बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम ला करके देती है। तो ये जो बच्चे फ़ोन देख देख करके खाना खाते हैं, इसके भी बहुत बड़े नुकसान हैं, उनके शारीरिक मानसिक विकास पर क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत इस पे बात करेंगे।
1: बिल्कुल, और इसी के बीच में हम ये भी आज बात करने वाले हैं कि हमारे जनरेशन गैप में पेरेंटिंग को लेकर बहुत सारा गैप आता है। पहले के माँ बाप जहाँ अपने बच्चे को थप्पड़ लगा देते थे, वहीं आज सॉफ्ट पेरेंटिंग को लेकर बात की जाती है कि बच्चों के साथ सॉफ्टनेस के साथ पेश आई है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन यही सॉफ्टनेस जब आप बच्चे को हर एक चीज के लिए हाँ करना शुरू कर देते हैं, हर एक बात पर उनको कह देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है, उनकी गलत आदतें, उनकी सही डिमांड, हर एक बात जब उनकी हाँ में कन्वर्ट हो जाती है, तो बच्चे इस चीज को नहीं समझते, फिर उन्हें लगता है कि हर एक चीज माँ बाप पूरी कर ही देंगे। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो हाथ पैर चलाते हैं, कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत तुतलाते हुए बोलते तो अच्छा लगता है।
0: हाँ, वो उस समय थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्यूटनेस भी लगती है उन चीजों में,
1: बट यही चीज आगे जाकर बहुत एग्रेसिव पैटर्न में बदल जाती है।
0: बिल्कुल, और इसके क्या मतलब रिजल्ट आता है, इसका क्या आउटकम आता है, कई बार तो मतलब मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है बड़े हुए, जिनको मैंने देखा वो छोटे थे, जो वो ज़िद करते थे, फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए, उनके पेरेंट इग्नोर करते थे, और बड़े होकर के मतलब उन्होंने कितनी घातक समस्या क्रिएट की, कितनी घातक परेशानी उसको परेशानी में बदला, ये मैंने अपनी आँखों से भी देखा है। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो ज़िद, और चूँकि भाई जाहिर सी बात है उस समय बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। आप देखिए कभी भी एक जो हाई स्कूल इंटर का जो बच्चा होगा, एवरेज घरों में आप पाएंगे कि वो बच्चा इस समय में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ही ज़्यादा बात बात पे लड़ने वाला, हर बात पे अपोज करने वाला, हर बात पे अगेंस्ट बोलने वाला, मतलब वो हमेशा आप एक कॉन्ट्रोवर्सी पाएंगे, एक विरोधाभास पाएंगे उन बच्चों में। फिर धीरे धीरे ये भी देखने को मिलता है जब वो बच्चे ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन के एक दो वर्ष, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी ले चुके होते हैं, उनका शारीरिक मानसिक स्पेशली मानसिक विकास जो है ये मायने रखता है यहाँ पे, तो उनके उनका मानसिक विकास भी एक काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है, और तब उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये चीज़ें बहुत माइनर और बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जिसकी कोई दवा नहीं है कि जिस दवा को मैं आपको बता दूं, वो अपने बच्चे को आप खिला दीजिए तो वो ठीक हो जाए। कई बार एक हमारी इनफैक्ट लिसनर भी है, मैं नाम तो अभी नहीं शेयर करना चाहूँगा, भाई किसी की प्राइवेसी का मैटर है, हमारी एक लिसनर है छोटी सी बच्ची और उसकी माँ है, वो कभी कभी कॉल भी करते हैं। इस समय वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है, सर्वाइव कर रही है। अब चूँकि मुझे याद इसलिए है कि वो हमारी लिसनर है और हमको कई बार कॉल कर चुकी है, उसकी माँ मुझसे कई बार मिली भी, उन्होंने मुझसे बात भी किया, और वो बच्ची क्या है कि कुछ ऐसे अपने लाइफ के ऐसे दौरान चल रही है कि वो घर में झगड़ा करना, गाली गलौज बकना, उल्टी सीधी बातें करना, और मुझे लगता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने पीने की भी हैबिट है उस बच्चे की। अभी ये पिछले कुछ महीनों में, साल छः महीनों में जो है ये परिवर्तन उसके अंदर आया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर बात करनी होती है, जिन पर सुधार करना होता है, और आज हम प्रयास कर रहे हैं उनमें से ही जो भी अधिकतर हम कवर कर।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये चीज मैंने विटनेस की है, एक 7 से 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी पर हाथ उठा चुका है। हाँ। और ये चीज देखने में बहुत खराब लगती है। अभी इसमें आप कह देंगे कि इसमें तो पेरेंटिंग की गलती है, नहीं, इसे पेरेंटिंग की गलती नहीं है, इसमें हर एक जिद को पूरा करने की गलती है।
0: देखिए वही, अब हम क्या है कि बच्चों में तो अब हम इतनी भारी गंभीर बातें उनको उस एज में नहीं समझा सकते, लेकिन हम उनके पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि जो बच्चों को आप मतलब छोटे उम्र पर, देखिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे अब अभी उन्नति मैम ने कहा कि पहले के जो जी जनरेशन है उसके पहले की जो जनरेशन है उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि वो पिट के स्कूल में भी पिटते थे, वहाँ भी मार खाते थे, घर में भी मार खाते थे बच्चे।
1: हालांकि ये भी ठीक नहीं है,
0: ये भी देखिए ठीक नहीं है, बट अगर आप लेंगे तो आप पाएंगे कि जो वो जनरेशन थी वो अब चुकी, भाई वो तो एज उसकी ज्यादा हो चुकी है, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं एज का जो है डिफरेंस है, ये भी उस एज में पहुंचेंगे तो वैसे हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, वो उस एज में भी वो काफी ज्यादा संतुलित थे, मर्यादित थे, उनके अंदर सहनशीलता थी और कहीं ना कहीं एक सम्मान भी था।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल अभी मैं देना चाहूंगा, एक बंगाल में शायद एक कोई पोस्टेड डॉक्टर है, बहुत ज्यादा एज है उनकी, मोर देन 70 70-75 ईयर्स, और उनको उनके किसी असिस्टेंट ने जो है हिट कर दिया, मार दिया, हाथ उठा दिया उनके ऊपर। देखिए अभी आप समझिए, और वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव वाले डॉक्टर थे, और काफ़ी उनकी उम्र भी हो गई है, सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट किया है ये मामला।
1: आई थिंक वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है।
0: हाँ हाँ वही
1: ओके, उनको मैं जानती हूँ, इवन उनकी कहानी भी मैंने कवर
0: जी जी, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब प्रचलित और पॉपुलर डॉक्टर हैं, उनको भारत में कोने कोने में लोग जानते हैं। तो अभी देखिए, जैसे देखिए समझिए कि अंतर क्या है, कि वो कहीं ना कहीं एक वो पहले की जनरेशन थी जिसके अंदर वो वैल्यूज़ और वो सारी चीज़ें थी, अब की जनरेशन में वो लैक कर रही है, उसकी कमी देखने को मिल रही है जी जनरेशन में। और ये इस जनरेशन की गलती नहीं है, ये इस जनरेशन को पालने वाली जो जनरेशन है, जो उनके माता पिता की जनरेशन है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रख दी, बहुत बहुत ही ज़्यादा रख दी। अभी मैं अपने घर से भी जुड़ा हुआ एक इंसिडेंस इसी पर बताने वाला हूँ, मैं अभी ही शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे घर में कंप्लेन आया कि हमारे घर का एक बच्चा था, उसको जो टीचर हैं वो डांटते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, और एक दो बार उन्होंने मारा है, कभी किसी दूसरे बच्चे की कॉपी लिखने को दिया, तो मुझसे कहा गया कि थोड़ा आप एक बार जा करके बात करिए स्कूल में। मैं गया और मैंने वहाँ पर थोड़ी बहुत बात भी की, लेकिन मैंने उनसे बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बात किया कि ऐसे ऐसे कंप्लेन आ रही है सर, लेकिन मुझे पता है हमारे घर के बच्चों का कि ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, ये घर पे इतनी शैतानियाँ करते हैं तो स्कूल में कितनी करते होंगे, जाहिर सी बात है। और जब वहाँ पर ये कि कोई कसर नहीं छोड़ते, तोड़ फोड़ भाग दौड़ सारी चीज़ें मचाते हैं, तो ये यहाँ भी छूट पाते होंगे तो करते होंगे। घर के लोग उसको अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, स्कूल में थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिली होगी। तो देखिए समझने की ज़रूरत ये है कि कई बार कई घटनाएं आती हैं, कुछ मानसिक विकृत लोग भी हैं जो बच्चों को इतना ज़्यादा मार देते हैं कि बच्चे मर ही जाते हैं। तो उन अगर एग्जांपल्स को छोड़ दिया जाए, तो मैंने उनको ये बताया कि भाई देखिए बच्चे शैतान होते हैं, बदमाशियां करते हैं, घर पे भी करते हैं, विद्यालय में भी करते होंगे, ठीक है उनको थोड़ा टाइट रखा जाए, लेकिन अगर हमने ये बात आपसे कही तो थोड़ा अच्छी बात है, ये हमारे आपके बीच में कन्वर्सेशन हो गई, पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन आप इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाना कि नहीं बच्चों को डांटा ना जाए, बच्चों को थोड़ा सा टाइटली ना रखा जाए, पनिश ना किया जाए, इससे कहीं ना कहीं क्या है देखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी गंदगियाँ, जब वो बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, साइकिल से जा रहे होते हैं, तो तब उनके बीच की आपस की लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही मतलब दयनीय लगती हैं और चिंता का विषय है कि ये बच्चे जो जनरेशन के जी जनरेशन के बाद की जो अल्फा बीटा है जो भी जनरेशन होगी, वो जनरेशन आगे चल के मतलब उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत की बात है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप जो उन्हें पनिशमेंट देते हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्हें तर्क करने की हैबिट आती है, उन्हें पता होता है कि ये चीजें गलत हैं
0: जी।
1: और मुझे लगता है क्योंकि मेरा बचपन काफी स्ट्रिक्ट था, बिकॉज मेरी नानी प्रिंसिपल थी, और आप समझ सकते हैं एक प्रिंसिपल के घर का माहौल भी एकदम हॉस्टल की तरह होता है
0: जी।
1: मुझे याद है कि मेरी काम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होती थी, उनका कहना था काम तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो बर्डन किसी और पर क्यों।
0: बिल्कुल,
1: तो भाई मेरी तो आदत पड़ चुकी है अपना काम खुद से करने की, बट यही चीज़ मैंने बाकियों में देखा है, और इवन आजकल तो मैं देख रही हूँ कि जो 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से कई गुना ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है।
0: हाँ, चूंकि जो हमारा विषय है कि ये बच्चे एडल्ट्री कैसे इतना तेज हो रही है, क्यों हो रही
1: एक
0: है।
1: एक वक्त था जब हम कॉलेज में थे और हम स्कूल में थे, इवन तब उस वक्त हम कुछ लोग अगर आज के बेसिस पे देखें तो सोचेंगे कि अभी तो आप 5th या 6th में ही हो, उस वक्त हमारा 11th चल रहा था, और आजकल 10th के बच्चों को देख के आपको लगेगा कि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, शुरुआत हो जाती है हमारे सोशल मीडिया से ही, और सोशल मीडिया पे जो आप आजकल ये बच्चों को इतना ज़्यादा मेकअप करके बच्चों को अलग अलग तरह से एक्टिंग करवाते हैं, उन्हें रिलेशनशिप की गाइडिंग देते हैं कि चलो हम एक रोमांटिक स्क्रिप्ट दे रहे हैं आपको फॉलो करना है, उसमें छोटे छोटे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूम रहे हैं
0: जी।
1: एंड सोचिए ज़रा ये इम्पैक्ट जो आप करवा रहे हैं, जो स्क्रिप्टिंग करवा रहे हैं, भले ही वो देखने में कितना ही क्यूट क्यों ना हो, उनके मेंटल स्टेट पर, मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है
0: जी।
1: और इसी पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से निकलकर हम हमेशा दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं कि हमारे आगे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, उनके वहाँ आगे क्या कर रहे हैं।
0: मैं उस पे भी बताऊँगा,
1: बट कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि बच्चों को फेम जल्दी मिल जाता है, बट इसी चक्कर में हम उन्हें फोमो में डाल देते हैं
0: जी।
1: तो चलिए आपसे ही बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ऑनलाइन वीडियोस बन रही हैं छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों को इतना हैवी मेकअप करा के उन्हें लाइक एक एडल्ट की तरह 18+ 21+ एक एक्ट्रेस की तरह उन्हें सिखाया जाता है कि आप ऐसे एक्सप्रेशन तो आंखें चलाओ, ऐसे हाथ चलाओ, ये उनके मेंटल स्टेट पर क्या असर डाल रहा है?
0: बिल्कुल। अब देखिए, अपने पॉइंट का वास्तव में शुरुआत तो हम यहाँ से करते हैं जो जिस विषय वस्तु पर हम आज बात करने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुने और समझें। देखिए, जो आज का विषय है वो ये है कि बच्चों में एडल्ट्री, वयस्कता, ठीक है, जवानी जिसको अगर आप कह लें साधारण भाषा में, इतनी जल्दी क्यों आ रही है? बच्चे की उम्र बहुत कम है, पढ़ रहा है ले दे के वो 7-8, 9 में 10 में, और वो लग रहा है एकदम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा। लड़कियों में भी इनफैक्ट जो लग रहा है, मतलब वो बच्ची पढ़ती है कक्षा 8 में, लेकिन वो उसकी जो शारीरिक अवस्था है, शारीरिक संरचना है, वो देख करके लग रहा है कि बच्ची जो है वो ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुकी है।
1: इवन उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं।
0: मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब जैसे जिस समय में हम लोग बच्चे थे, मतलब टीनेजर के भी नीचे थे, उस समय में जब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी हासिल हुई, तो थोड़ा कुछ पढ़ा भी अपने विज्ञान के विषयों में, कुछ समाज से जानकारियाँ जब प्राप्त हुई, तब ये पता चला कि जो प्यूबर्टी है महिलाओं में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है, ये लगभग 17-18 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है। ये और लगभग ऐसा ही था भी, 1-2% की अगर आप बात छोड़ दें तो लगभग ऐसा 16-17-18 वर्ष की आयु में ये मासिक धर्म स्टार्ट होता था, ठीक है। अच्छा, तब तक उस आयु की जो बच्ची भी थी उसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल भी पता नहीं चलती थी कि ये एक महिला है। यदि उसके बालों को और इन चीजों को हटा दिया जाए तो ये पता नहीं चलता था कि लड़का है कि लड़की है।
1: बिल्कुल।
0: अब के समय में मैं देख रहा हूं कि मात्र कक्षा 7 में 8 में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कुछ अपवाद भी हैं, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो जो नहीं भी अपवाद हैं, जो आप लार्ज अमाउंट नंबर होता है इसमें आप देखेंगे तो लगभग हाई स्कूल में पढ़ने वाली लगभग 50% से ज़्यादा की बच्चियां जो हैं वो शारीरिक रूप से पूर्णतया वयस्क लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब देखिए, इसके पीछे कारण बहुत से हैं, ठीक है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया को, वीडियोस को और ये जो सामाजिक अभद्रता है, मैं सिर्फ इसको दोष नहीं दूंगा, परंतु सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि इसके जो अलावा जो कारण हैं वो उन पर क्या है कि हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है। हम उनको चाह भी लें, यदि कल से बदलना तो हम नहीं बदल सकते हैं, पर जो इसका सबसे मुख्यतः सबसे बड़ा कारण है, इसको यदि हमारा समाज प्रयास करेगा तो वो बदल सकता है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे जो खाने का हाइब्रिडाइजेशन है, खाना पीना हम लोग खाते हैं, और उसका जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, जो समाज, जो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे पॉल्यूशन का बढ़ना है, पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो लाइफ कटेगी। अब जैसे इसमें लोगों को प्रश्न होता है कि पॉल्यूशन से इसका क्या लेना देना है, पॉल्यूशन से कोई जवान थोड़ी हो जाता है। देखिए, पॉल्यूशन से लेना देना है, आप समझिए, जैसे जब डायनासोर्स के टाइम का पीरियड था, तब जो धरती पर रहने वाले जो भी जीव थे वो शरीर में आकार में बहुत भारी विशालकाय हुआ करते थे, उनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन भी काफी लंबा हुआ करता था, 400-500 साल, 600 साल, 300 साल, इतना जीते थे वो। इसके अलावा फिर जब धीरे धीरे अभी टाइम ओवरलैप हुआ और दूसरा पीरियड आया, इंसानों का ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, तो भी आप देखिए कि जो स्टार्टिंग एज था उसमें इंसानों की आयु जो है वो 100 वर्ष 120 वर्ष ऐसे एक एवरेज जाती थी। अभी के समय में आप देखिए 60-70 वर्ष की आयु पे हम एवरेज आकर के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक कारण ये है कि हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन का लेवल था वो धीरे धीरे निरंतर घट रहा है। तो जब ये घट रहा है तो हमारा लाइफ स्पैन घट रहा है। लाइफ स्पैन अगर घट रहा है तो लाइफ की साइकिल भी शॉर्ट हो रही है। लाइफ की साइकिल शॉर्ट हो रही है तो इसमें थोड़ा सा बचपन, थोड़ी सी जवानी, थोड़ा सा बुढ़ापा ले दे के सब 20-20 साल में ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है, बट ये मेजर फैक्टर नहीं है।
1: ओके।
0: इसके पीछे का जो मेजर फैक्टर है, जो शारीरिक बनावटों में जो चेंज आ रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ शारीरिक बनावट ही नहीं, हमारी मानसिक संरचना भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसको आप समझने का प्रयास करिए। जब तक एक बच्चा यौन संबंध के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, तब तक उसके बॉडी में जो ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं और जो शरीर में जो गतिविधियां होती हैं वो उसको नहीं होती है। जब वो यौन अवस्था को प्राप्त करता है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेता है, उस चीज़ों के बारे में उसको जान, कुछ ऐसी चीज़ें भी देखता है जो समाज में, अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ उपलब्ध है, आप जो भी देखना चाहें, तो उसके फिर शरीर में ऐसी जो है फीलिंग्स, ऐसी प्रकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वो चीज़ें करने का, वो जानने का, उसमें प्रवेश करने का इच्छा उनके अंदर ये उत्पन्न होती है। अब आप समझिए, जैसे आप पिछले लगभग 10 वर्षों में देखेंगे, 10 से 15 वर्षों में, तो जो सोशल मीडिया और जो म्यूचुअल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बढ़ने के कारण, और जो हमारे समाज में वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन अभी आपने कहा कि विदेशों से कंपेयर करते हैं लोग, देखिए आप विदेशों में अगर पाएंगे तो जिन चीज़ों पे आज हम बात कर रहे हैं कि आज के 15-20 साल पहले बच्चियां का पीरियड्स इतने में स्टार्ट होता था, उनके शरीर की जो बनावट होती थी वो धीरे धीरे डेवलप होती थी, बट आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर में, वहाँ पर बहुत पुरानी फिल्मों में भी आप देखेंगे कि कुछ वीडियोस में भी देखेंगे कि वो बच्ची है एकदम एडल्ट लग रही है, लेकिन आप पूछेंगे कि किस क्लास में पढ़ती हो तो वो जवाब देती है कि मैं मैट्रिक्स में हूँ या मैं प्लस टू में हूँ, इंटरमीडिएट में हूँ। तो वहाँ पर भी देखिए ये चीज़ें पहले आ चुकी थी, यहाँ पर थोड़ी बाद में आई, 10-15 साल लेट में आई। तो आप देखिए जैसे जो हम आसपास अपने ये चीज़ें देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अच्छा इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा बॉलीवुड है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि साउथ की जो फिल्में हैं, दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं, उसमें अब भी बॉलीवुड के जितनी अश्लीलता, नग्नता नहीं है। ठीक है, आप यदि दक्षिण भारत की जो कन्नड़ फिल्में हैं, मलयालम या तेलुगु फिल्में हैं, अब उसमें थोड़ा बहुत उसमें भी देखने को मिलता है, बट यदि अगर आप 5-7 साल 10 साल पहले जाएंगे तो उसमें उतनी नग्नता और अश्लीलता नहीं थी। परंतु जो बॉलीवुड था, जो हिंदी सिनेमा था, हिंदी सिनेमा में क्या है कि न्यूडिटी को, वेस्टर्नाइजेशन को और इन सारी चीज़ों को और भी तेज़ मतलब डेवलप किया गया और भी जल्दी दिखाया गया, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, पाश्चात्य शैली की चीज़ें यूज़ की गई, छोटे छोटे कपड़े, ऐसे ऐसे डांस मूव्स। अच्छा, एक डांस मूव्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे जो कुछ मतलब ऐसे अभद्र डांस मूव्स जो पता नहीं कहाँ किस वेस्टर्न कल्चर से आए हैं, जैसे जिसको एक मूव होता है जिसको ट्वर्किंग बोलते हैं।
1: ओके,
0: अब देखिए चूंकि मुझे इतनी गहन जानकारी मेडिकल के अलावा दूसरे मतलब जो लॉजिक सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, एस्ट्रो फिजिक्स है, ये सारी चीज़ों में आप पूछेंगे तो मुझको थोड़ी जानकारी है, पर इन चीज़ों में उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर ये कहीं ना कहीं एक विभिन्न प्रकार की सामाजिक और मेडिकल कंडीशन पैदा करती है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी है। ये इसमें कमर को, कमर के निचले हिस्से को इतनी अश्लील तरीके से और गंदे तरीके से हिलाते हैं, तो चलिए जो अडल्ट हैं वो तो ठीक है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के 4 साल के और वो जो शोज़ आते हैं सोनी टीवी पर, इंडियाज गॉट टैलेंट और पता नहीं क्या क्या नाम से, उसमें मैं देखता हूँ कि बॉलीवुड के गानों पर ऐसे गंदे गंदे अश्लील डांस बच्चों से कराए जाते हैं और जो वहाँ बैठे जजेस होते हैं। अगर ये बात मेरी और ऊंचे मंच तक जाए और इस मेरी बात पर कोई नोटिस आ जाए तो मुझे इससे कोई डर नहीं है इस बात का, इसलिए मैं इतने खुले रूप से बोल रहा हूँ। उस पे वहाँ बैठे जो जजेस हैं वो पता नहीं कौन सी रीता माता, गीता माता और वो शिल्पा शेट्टी वगैरह, ये लोग जज बन के बैठते हैं और ये लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। 3 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची ऐसे गंदे गंदे जो है घटिया मूव्स कर रही है उसको सिखा करके, और मंच पर उसका वीडियो बनाया जा रहा है और उसको मतलब प्रेज भी किया जा रहा है कि वाह वाह बेटा आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। एक महिला है वर्तिका झा, अब आज मैं कुछ चिट्ठे खोल ही देता हूँ, अगर मेरी नोटिस आ ही जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की है जिसका नाम है वर्तिका झा, वो ऐसे ऐसे मतलब अश्लील और घटिया मूव्स करती है कि वो देख करके अगर कोई बच्चा है, अगर मुझे लग रहा है 16-17 साल का बच्चा है, तो उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो अपने दिमाग में इमेजिन करने लगेगा और उसके दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगेंगी। तो जो ये सोशल मीडिया है जिनको बच्चे देखते हैं, जैसे देखिए कोई भी बच्चा है, आप देखिए सोशल मीडिया पे सिर्फ गंदी ही चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं। आपने ऐसे भी बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी बड़ी चीज़ में बड़ी बहुत कुशलता है,
1: बिल्कुल
0: तीरंदाजी कर रहे हैं वो बच्चे, तीर में उनकी कुशलता है
1: जी।
0: और बच्चे कुछ बना रहे हैं और भी मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये देखिए एक दिन में नहीं आता है, जाहिर सी बात है ये उन बच्चों को ऐसा माहौल दिया गया। छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं, छोटी छोटी मोटरसाइकिल्स होती है और वो मोटरसाइकिल लेकर के गन्ना गन्ना नचाते हैं इधर से उधर लेकर के। छोटी छोटी कारें होती हैं वो कार की रेसिंग कर रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे घोड़ा दौड़ा रहे हैं। अब एक बच्चा जो उसको कभी जिसने गधे पर पैर ना रखा हो उसको घोड़े पर बैठा दीजिए तो वो घुड़सवारी थोड़ी करने लगेगा। इसका अर्थ ये होता है कि वो जो बच्चे घुड़सवारी कर रहे हैं, जो तैराकी कर रहे हैं, सोचिए एक साल का बच्चा, 8 महीने का बच्चा उसको तैरना सिखा दिया।
1: ऐसा हो रहा है, ऐसा भी, ऐसा वेस्टर्न में ज्यादा हो रहा है।
0: हाँ ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक हाई स्कूल में या उससे भी कम में एक बच्ची है, उसको विदेशों में काफी ऊंचे तक गई है। उसने एक ऐसा कोयले का जो प्रेस होता है वो देख करके उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वो सोलर पावर्ड जो है वो प्रेस बनाएगी, उसको बहुत ऊपर तक जो है जाने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को ऐसा माहौल दिया जा रहा है, उनको वो सिखाया जा रहा है कि एक साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा छोटी सी बाइक लेके चला रहा है, रेसिंग भी कर रहा है, छोटी सी कार चला रहा है, तैरना सीख रहा है, घुड़सवारी कर रहा है। तो जैसे देखिए जिस माहौल में आप बच्चों को डालेंगे बच्चे वो चीज़ें सीखेंगे, आप जो करेंगे वो आपको कॉपी करके सीखेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा एक चीज़ और है, ये जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन है इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब बहुत से ऐसे भी एग्जांपल आए कि एक बच्चा है जो डांस वांस करके ऐसे ऐसे लटके झटके दिखा करके उसने चैनल को मोनेटाइज कर लिया और हजारों लाखों रुपए आ गए। तो कहीं ना कहीं फिर ये भी एक लोगों के माइंड में एक वो क्रिएट करता है कि हमारे भी बच्चे हैं और ये टैलेंट है, ये टैलेंट दिखा करके अगर बच्चा पैसे कमा ले तो क्या बुराई है। तो कहीं ना कहीं यदि बच्चा ऐसी अश्लीलता, आप जिधर देखिए, फेसबुक खोलिए तो, इंस्टाग्राम खोलिए तो, यूट्यूब खोलिए तो, तरह तरह के डांस, तरह तरह के कपड़े, कपड़ों में भी नग्नता बहुत है, छोटा सा कपड़ा ऊपर है, छोटा सा कपड़ा नीचे है, जितने कपड़े में मतलब पहले के ज़माने में बाबा लोगों के कच्छे बनते थे उतने में, उतने कपड़े में पूरा बॉडी का ही कपड़ा बना दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जब बच्चा सुबह से लेकर शाम तक यही चीज़ें देख रहा है, समाज में भी यही चीज़ें देख रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमेशा पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां और बाइक पे घूम रहे हैं, ऐसे जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। गलती से अगर कहीं आप दिल्ली जैसे शहरों में चले गए, मेट्रो वगैरह में घुस गए, तो वहाँ पे तो हमें लग रहा है पूरा ओयो ही बना रखा है लोगों ने। मतलब वहीं पे पूरा आधी जो भी यौन प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी यौन संबंध इंसान एक बंद कमरे में बनाता है, वो सारा जो है मेट्रो में ही सीन चल रहा है। देखिए आसपास बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं और वो उसका एक गलत इम्पैक्ट जाता है। अब एक 4 साल 5 साल का लड़का है या लड़की है तो वो ये समझने लगता है कि बड़े होके एडल्ट होते हैं, फिर दो लोगों में शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं। अच्छा अब तो मैं कुछ, अब मैंने एक दो वीडियोस भी देखी हैं ऐसी कि वो महज 10 से 12 साल 13 साल की आयु रही होगी उन बच्चों की, इससे ऊपर तो वो नहीं थे। और बाकायदा एक स्क्रिप्टेड वीडियो जो इस एंगल से फिर इस एंगल से फिर उस एंगल से शूट किया जा रहा है, उसमें वो बच्चे कह रहे हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम चले गए, वो लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है, फिर गुस्सा जाते हैं, फिर उसका अच्छा फिर लोग उसको वो भी कह रहे हैं कि यार सबकी बंदी है, मेरी ही नहीं है, इन बच्चों की बंदी है, निब्बे निब्बियों की, मेरी बंदी नहीं है। लोग इसको सर्कुलेट भी कर रहे हैं तरह तरह की उस पर कमेंटबाजी करके। देखिए आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि आप जो भी गतिविधियां कर रहे हैं आपके आगे वाली जनरेशन उसको देख रही है, उसको फॉलो कर रही है और उसको सीख रही है। आप 4 हाथ करेंगे तो वो 14 हाथ करेंगे क्योंकि वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। आज के बच्चे देखिए मोबाइल चलाने में, कंप्यूटर चलाने में, टैब चलाने में, ये सारी चीज़ों में वो पहले से ही एक्सपर्ट हैं। ये जनरेशनल चीज़ें होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। जैसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इसको लोग, अब देखिए मैं इस पे भी एक छोटी सी बात करता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग भर भर के गालियाँ भी देते हैं और उसको अश्लील भी बताते हैं
1: जी,
0: उसको कहते हैं कि गंदा है, ये लोग घटिया गाना गाते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक मेरा एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि भोजपुरी तो ले दे करके एक बिहार और बिहार से जुड़े हुए कुछ 4-6-10 जिले उन्हीं जगहों पे जो है ज़्यादा चलती है। अब बिहार और बिहार के बॉर्डर के इर्द गिर्द के जो भी 10-20-50 जिले होंगे, इतनी ही दूर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन आप व्यूज़ देखिए, वो 100 मिलियन 200 मिलियन और पता नहीं कितने कितने व्यूज जा रहे हैं। और भोजपुरी गाने सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं सुने जाते हैं
1: जी,
0: भोजपुरी गाना आपका मतलब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और उधर पश्चिम बंगाल से लेकर इधर सूरत और गुजरात तक जो है ये सुना जाता है गाना,
1: बिल्कुल, इवन बाहर भी सुना जाता है,
0: बाहर दूसरे देशों में भी तमाम वायरल वीडियो में दिखाई पड़ते हैं। समस्या ये है, वो बना रहे हैं, उनकी समस्या नहीं है, हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यही सुनना चाह रहे हैं, तो वो बना रहे हैं। तो ये जो हमारा समाज है, इसकी जो ये नग्नता है, जो अश्लीलता है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। जैसे जो पहले लिव इन रिलेशनशिप था, जो लड़का लड़की के बीच में आपसी संबंध था, ऐसा करने के लिए जो इंटर के, यूजुअली ये हाई स्कूल इंटर के बाद के बच्चों में दिखता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर, और वो भी बड़ा डर के सहम के, घर वाले जान जाएंगे, पता ना चल जाए किसी को, मोबाइल फ़ोन नहीं था बात करने का, अब तो पता चल रहा है कि मम्मी का ही फ़ोन लिए कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची जो है 9 वाले बच्चे से सेट है। आई एम सो सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो रही हो तो, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे बच्चों के सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं इतना ओपन इस पर बात कर रहा हूँ
1: जी।
0: तो बच्चे जो है ऐसा कर रहे हैं, कई बार बच्चों के मोबाइल में, उनके फीड में, उनके सर्च बॉक्स में और इन सब चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही हैं। और मैं कहता हूं कि मिलना छोड़िए, जब पूरे इंस्टाग्राम पर यही चीज़ें वायरल हो रखी हैं, पूरे यही गंदगी मच रखी है, और जो बची खुची गंदगी थी अभी तक जो LGBT वाली, मतलब जिसको LGBTQ++ और पता नहीं क्या प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा थीटा सारा घुसा रखा है इन लोगों ने इसमें, ये सारी चीज़ें जो बची खुची गंदगी थी ये भी अब आ गई है, कि मतलब लीजिए आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ठीक है, और वो भी सड़क पे करता हूँ, मतलब हद है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने की आवश्यकता है और इस पे विचार करने की आवश्यकता है।
1: ऑलराइट सर, और काफ़ी डीप बातें आपने की हैं। फिलहाल अब बात करते हैं थोड़ी सी हेल्थ की, और मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं जिनको 8-9 साल पे, जिन बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, उनके पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा ही अवेयर होते हैं, इस चीज़ से परेशान भी रहते हैं कि ये तो कोई एज नहीं है, हमारी एज में तो 12-13 साल था, 14-15, क्या ये ठीक है या इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा?
0: डॉक्टर से देखिए, आपको कभी ना कभी तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये प्यूबर्टी पहले आ रही है तो पहले जाएगी भी, ठीक है। दो चीज़ें समझिए, जैसे ये हमारे लाइफ का एक, हमें हमारे लिसनर हमें फ़ोन भी कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे विषय वस्तु से संबंधित इनका प्रश्न हो, इनको लाइन पर लेते हैं। हेलो,
2: गुड इवनिंग, नमस्कार सर।
0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका नाम बताएंगे प्लीज़?
2: श्री देवी प्रसाद।
0: श्री देवी प्रसाद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा शो में, और बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
2: जो आप जानकारी बता रहे थे ये सही कह रहे हैं, जो गंदगी मची हुई है
0: जी,
2: ये सही कह रहे हैं,
0: चलिए
2: इस बात पे हम 100% सहमत हैं सर।
0: चलिए, हमारे साथ जो है मतलब धीरे धीरे बहुमत भी जुटने लगा है, हमारे लिसनर्स वो फोन करके बता भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और जो लिसनर्स हैं
2: हमारे, हम ये चाहते हैं भारत सरकार से
0: जी,
2: फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर बंद कर दिया जाए
0: जी,
2: तो ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप
2: और जैसे एक टिप्पणी हुई थी
0: जी,
2: मैंने सिर्फ ज्ञान स्थली पे सुना था कि रेडियो आवाज पे सुना था
0: जी,
2: अब ध्यान नहीं पूरी तरीका से
0: कि
2: 6 बजे तक सुबह 12-6 के बीच में बंद करने वाला
0: जी
2: किसी ने कहा था,
0: तो
2: वो भी बात से हम भी सहमत है, अगर बैन कर दिया जाए जैसे पबजी वगैरह हो गया, फालतू गेम या कोई जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम, इसमें सब सिर्फ बदतमीजी ही वाला रहता है सर, और इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, भले हम छोटी मोबाइल चला रहे हैं
0: जी,
2: लेकिन ये कोई चीज के जैसे एक नॉर्मल बात हम कहते हैं सर
0: जी,
2: हम ये समझते हैं रेडियो के माध्यम से इतना जागरूक हुए हैं
0: जी,
2: आपका ज्ञान स्थली पहले नहीं था, उससे पहले हम रेडियो बचपन से सुनते आए हैं
0: जी,
2: इसलिए सर कि जैसे कहने का मतलब है अब धीरे धीरे बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है और इस पे काबू पाने के लिए तकनीक से हर एक चीज से बदतमीजी ज्यादा होती है, तो खैर जागरूक तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने
2: जान। भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो चीज जरूरी हो उतना ही करे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, लेकिन टैक्स के चक्कर में भारत सरकार थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। देखते हैं हम कि जाओ 60-70 रुपया लीटर दूध नहीं पी सकते हैं और दारू के ठेका पर जाते हैं लोग और वहां पर लाइन लगाकर लेते हैं, ना उनका एक कागज खर्च होता है ना पन्नी, और कोई सब्जी लाने जाओ सरकार प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाती है, उसके बाद में कहते हैं पन्नी दो। तो थोड़ा जनता का थोड़ा भूमिका है और थोड़ा सरकार का भूमिका है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही
2: हमारा देश हिंदुस्तान सुधरेगा।
0: बहुत ही आपने अच्छी और गंभीर बात कही है और आपकी एक बात से बिल्कुल आपकी एक बात से हम और एक बात जरूर बताना चाहेंगे लोगों को। और इसके अलावा और कोई सुझाव देना चाहते हैं आप?
2: सुझाव बस यही सब चीज का बारे में है सर, लेकिन जैसे कोई अगर गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आज आज के शो में
2: आप आनियर बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने कॉल कर दिया कि आप बता ही दे डॉक्टर सर जी को।
0: ये बहुमत ऐसे ही बहुमत की आवश्यकता है हमें। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद रेडियो ज्ञानस्थली में कॉल करने के लिए।
2: ओके बाय सर जी।
0: जी बाय। और बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही और भारत सरकार से कुछ इनकी जो है संदेश भी है भारत सरकार को। और इनका कहना ये था कि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह बंद कर दिया जाए। खैर मुझे नहीं लगता कि ये बंद करेगी भारत सरकार और ये बंद हो सकता है, लेकिन फिर भी देखिए जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उन्नति मैम ने एक प्रश्न भी पूछा था, जरा आप उसको दोहराएंगी प्लीज।
1: मैं बस इतना पूछ रही थी कि जिन बच्चियों को आजकल जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं इस बात को लेकर माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए
1: नॉर्मल है या फिर इस पर हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा
0: बिल्कुल काफ़ी काफ़ी आपने बहुत ही अच्छी फैक्ट और पॉइंट वाली बात कही है। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, जैसे पहले जब प्यूबर्टी लेट में आती थी, पीरियड्स लेट में स्टार्ट होते थे, तो वो लेट में जाते भी थे। मतलब जो मेनोपॉज होता है ये भी लेट में होता था, 45 में 50 में। अब के समय में देख रहे हैं जो भी औरतें इस समय 35 वर्ष या 40 वर्ष की आयु पे हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम तरह की पीरियोडिक समस्याएं और जो यूट्रस की समस्याएँ हैं इनसे वो पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। और ये भी देखने को मिल रहा है कि उनकी जो प्यूबर्ट जो उनका मेनोपॉज है, जब पीरियड्स आना बंद होते हैं, ये पहले हो जा रहा है। जो इनकी जो एक ऑप्टिमम एज होती है उस आयु के पहले ही मेनोपॉज स्टार्ट हो, मतलब बंद हो जा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्यूबर्टी का जल्दी आना, पीरियड्स का जल्दी स्टार्ट होना, शादी का लेट होना, जैसे पहले के समय में पीरियड्स जो है वो 17-18 वर्ष की आयु पे, 19 वर्ष की आयु पे होते थे, विवाह जो है वो भी लगभग 18-20 वर्ष की आयु पे लोग कर देते थे। अब के समय में देख रहे हैं कि 30 वर्ष तक तो शादी का लोग लोड ही नहीं लेते हैं। तो प्यूबर्टी का जल्दी स्टार्ट होना, शादी का लेट होना और जल्दी मेनोपॉज हो जाना, यही कहीं ना कहीं कारण है कि आज के समय में देखिए इनफर्टिलिटी के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज आप अपने छोटे से शहर में, आप अपने हमारे जो सामुदायिक रेडियो है, इस सामुदायिक रेडियो की जो जितनी रेंज है, हम इतने रेंज की ही बात करते हैं, आप देखिए कि आज के 10 वर्ष पहले इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स की क्या कंडीशन थी। और आज आप देखिए कि गोंडा जैसे शहर में ही लगभग आप 8 से 10 IVF सेंटर्स पाएंगे जहां पर IVF होता है
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही साधारण बात तो नहीं है, इस पे चर्चा करने का विषय है, इस पे बात करने का विषय है, इस पे लोगों को, हमारे समाज को अवेयर करने का विषय है। और कहीं ना कहीं ऐसे विषय हमें बीच बीच में हमारे सामुदायिक रेडियो पर उठाने ही चाहिए ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें।
1: फिलहाल आज का टॉपिक बहुत बड़ा है देखा जाए तो, मेरे सवालों की लिस्ट भी बहुत लंबी थी, लेकिन घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है विदा लेने का।
0: जी बिल्कुल, और मैं कुछ बेसिक फैक्ट आपको जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि देखिए अपने बच्चों को सामाजिक न्यूडिटी से बचाइए, नग्नता से बचाइए, बच्चों के मानसिक विकास पर और जो बच्चों का हार्मोनल सिस्टम होता है इस पर बहुत ही गंभीर प्रभाव डालता है। इससे बच्चों का जो दिमाग होता है, आंतरिक संरचना, फिर वो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो 14 वर्ष की आयु में जो होना चाहिए था वो 12 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में होता है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल हायर एज पे होना चाहिए था, 18 वर्ष की एज पे होना चाहिए था, 20 वर्ष की एज पे होना चाहिए था, वो जो है वो 10 वर्ष की एज पे, 12 वर्ष की एज पे हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चे देखते हैं समाज में, जो समझते हैं, उससे उनके मानसिक विकास पे और मानसिक के आधार पर जो इंटरनल बॉडी के जो डेवलपमेंट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इससे अपने बच्चों को आप बचाएं।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ बच्चों के खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारे पास 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: 10 मिनट के अंदर हमारे यहाँ सब कुछ डिलीवर हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बच्चों को आप एक्टिविटीज़ में जो है लगाइए। बच्चे जब देखिए, जो बच्चे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखते हैं वो एक्सप्लोर करना कम कर देते हैं, मतलब वो एक नॉर्मल बच्चा जिसने कभी मोबाइल फ़ोन ना देखा हो और एक बच्चा जिसने मोबाइल फ़ोन में ही अपना सारा टाइम बिताया हो, जब आप उनको किसी एक ऐसे कमरे में जहाँ पर ढेर सारे इक्विपमेंट्स और उपकरण और ऐसी चीज़ें रखे होंगे वहाँ पर अगर आप छोड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि जिस बच्चे ने मोबाइल फ़ोन चलाया है वो कम एक्टिव दिखेगा आपको, क्योंकि उसके आसपास की चीज़ें में उसको इंटरेस्ट नहीं दिखेगा।
1: बिल्कुल, और इससे उनका डोपामिन लूप भी आता है।
0: बिल्कुल, और जो दूसरा बच्चा होगा उसका चूंकि क्या होगा, उसने इतनी सारी चीज़ें कभी देखी नहीं होंगी, तो वो उसका माइंड क्यूरियस होगा और उसको एलेबोरेट करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा। तो बच्चे अपनी एक्सप्लोर करने की एबिलिटी खो रहे हैं धीरे धीरे, और इसलिए आपको बच्चों को मोबाइल फोन से थोड़ा सा उनको दूरी बनाए रखना चाहिए और उनको एक्टिविटीज में जो है शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और उनके साथ गेम खेलिए। जब आप पास में बैठे हो अपने बच्चों के, तो आप भी फोन ना चलाएं, क्योंकि आपका देखा ही होता है।
0: बिल्कुल
1: जो भी
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है।
1: डिनर टेबल पर एक टाइम फिक्स कीजिए कि जब आप साथ में खाना खाएंगे तो किसी के हाथ में फोन नहीं होगा, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना चल रहा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एंड हमारा डिनर टेबल ही मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पूरा परिवार साथ में बैठता है, जहाँ पे हम एटिकेट सीखते हैं कि खाना खाते टाइम कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, कौन ज़्यादा चूजी हो रहा है, कौन खाना नहीं खा रहा है, हर एक चीज़ को वहीं पे डिसाइड किया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालिए, बाहर खेलने जाइए, पिकनिक पे जाइए, और फ़ोन से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि उनका डोपामिन इस वक्त बहुत अगर फोन से आ रहा है तो आगे जाकर ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा
0: जी।
1: एंड हमारे साथ सविता दुबे जी जुड़ी थी चैट बॉक्स में, जिन्होंने लिखा था, उन्नति मैम, राहुल सर नमस्ते, नमस्ते आपको भी। अरविंद जी, आप किसी आपकी बात से सहमत हैं, एंड एक और लिसनर हमारे साथ जो लिख रहे हैं, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, हालांकि बातें बहुत सारी करने को थी बट हम कर एक ही पहलू पर पाए।
0: बिल्कुल, और कोई बात नहीं, हम फिर बाकी पहलुओं को भी हम कवर करेंगे, हम फिर आएंगे आप सभी के बीच, और ऐसे जो टॉपिक जो एक समाज में जिन पे लोग बात करने से डरते हैं, हम उन पर बात करने से नहीं डरते हैं, और हम निडर होकर के ये बात करेंगे और समाज में रखेंगे, ये हमारा काम है और हम अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे।
1: और ये एक ऐसी चीज है जो मेडिसिन से ठीक नहीं की जा सकती।
0: बिल्कुल, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए।
1: फिलहाल के लिए सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका सामुदायिक रेडियो रेडियो कैनस 89.6 FM। चाहूंगी अब आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपनों का भी, अपना भी। बाय बाय, टेक केयर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
6: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
5: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
6: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
5: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोदली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: अरे दादा, रे दादा, ये लाइक धई दी नहीं चटपटाऊ, मुंह पिराए लाख हमार चबात चबात, का करत ही है घरा मैया, का करती हूँ?
4: देखो चिल्लाए ना, हमरे कनवा में दर्द होत है, ये जान लियो।
3: ई का है कनवा पिरात है, पाकवा की गा है?
4: अतना बोलत यो ना, हमार कनवा एकदम जरे लागत है कि हम का बताई, वार कड़ाकुल हुई गई हो तू।
3: अब जब ना बोली तब कहा तू काहे दुलारी चुप हो, बोलते नहीं हो, और जब बोली तब कहा तुम्हार कनवा पाकी गा है।
4: अतनी जोर जोर से चिल्लावा जात है,
3: लाओ तोहरे कनवा मैया भैंसिया के अपने मुँह ती दर्द में ठिकाए जाए कनवा। हाँ वो ये दवाई है एक ठो। हंसती है लो, कुछ कहा तो हंस, ये सही हो के सब और डांट दो कनवा टिकाई जात है।
4: तो रह जाइयो अनपढ़ के अनपढ़, हम तुका चाहे जितना पढ़ाए लेकिन तू ना सीखियो।
3: देख लो एक बात हम बताई दे, आज हमें 6 महीना से
4: अगर डॉक्टर सुने ना तो तुमका इतना दौड़ाई इतना मारी कि कहीं क्या भाई, हम पढ़ाए दे तुका अच्छे से।
3: 6 महीना से हमका एको अच्छर पढ़ाई नहीं है अंग्रेजी के,
4: नहीं पढ़ाए हैं।
3: कहाँ पढ़ाए, वो देखो या बिटिनी आएगी, वहाँ देखो पत्थर का वहाँ बैठी चुप पाई।
5: राम राम चाची,
3: राम राम बहनी, राम राम, और या नहु आई ही,
5: राम राम चाची,
3: का नाम है इनके, निधि,
5: निधि, राम चाची,
3: निधि, चलो वो आए हैं।
6: बहुत दिन बाद आए ना चाची, हमारा बढ़िया स्वागत करियो,
5: गाना लगाई।
3: ये भाई नहीं आई, हम मूंगफली चबाई थी, तू चबा लो, बरते हो
4: बरते करे नहीं है
6: चाची, लेकिन तब भूख आप।
4: हाय बोरी माई, बर्तन आई हो?
3: बर्तन नहीं
6: चाची, बर्तन नहीं रह पाए थे, भूख लग जाते।
4: या मोरी माई, भैया देखो यहाँ तो होत है कि 9 दिन का महारानी का व्रत आवत है और लोग चढ़ते रहते हैं।
3: हाय होते सही
6: चाची, कब्बो कब्बो आप लोग कहा थे कि तहार सब कोई खाए पिए कुमार है, बस हम खाए पिए माजी।
3: देखो जब बर्ते होते थे बहुत खाते, हमारे चटपटी चाची देख लो, जब से हम आए तब से इनके मुँह है चले थे बकर बकर।
4: हम देखो मूंगफली अपना चबा दी बैठी, तब से हम भूने हैं और तब से मखाना मूंगफली दरे डाल रही है।
3: तो बहनी ये बताओ, एक डब्बा लायक धई दी नहीं हमारे अगवाए, तो हम का करी ना दरी, तो
6: मुहाती चाची
3: बहुत मुहाती है।
4: लाओ चाची बांध ली थोड़ा।
3: ए बहनी यहाँ देखो तनी,
4: अब अतना देखो हमरे घर में ना है कि तू बांध के ले जाओ।
3: तू जो है हमारे वाला कमवा करे लगियो का
5: चाची, मुंह दे तो बांध नहीं जाई
4: वालो, अब सब बांध ले जाइयो तो चाची का खइया।
3: ऐसा है चाची, अस करो एक बोरिया मंगा लो मखाना, हाँ, और एक बोरिया मंगलिया।
4: बहुत नीक बतायो, हमारे घर जो है बिलाए जाए बिकाए जाए,
3: भूज के और कुल सबका बटवाई दो।
4: हाँ बटवा, हाँ लंगर खोल दिया है, सब खाए आके।
3: तो पढ़ाई में कुछ बुलाई हुई सवेरे से बैठाए हो?
4: हम ये लिए बुलाए हैं कि कीर्तन वीर्तन का कुछ सोचे हो कि बस खाली ऐसे बकर बकर लगाए हो?
3: कीर्तन का तो खैर सोच भाई कर भाई, लेकिन एक बतिया और नहीं जानू
4: का,
3: हमारे घर में यहाँ हमारे एक जनी नंद रहा थी,
4: हाँ
3: रहत रही पहलवा, अब तो उनके ब्याह हुआ होगा, तो उनका कोई रिश्तेदार है जे हुआ रहा था, जहाँ गयू रहा तू डखनवा उड़ गई
4: अमेरिका मा।
3: हाँ
4: अच्छा,
3: वो अवैया है।
4: कब?
3: 3-4 दिन में आ जाइये।
4: अच्छा यह है नवरता भर में आ जाइये।
3: आ जाइये।
4: अच्छा
3: तो अब उनके समनवा हम कुछ तो बोलक जानी बहनी,
4: तब अच्छा तो तू अंग्रेजी बात कर रही हो।
3: हाँ वो है पढ़ाओ हमें।
6: अरे चाची आप अगर समय दिया होते तो उनके भरे तो हम सबका आवत है का बहनी।
4: पहले देखो हम तो हुई ना अमरीका ना तो अमरीका वाली अंग्रेजी हमका आवत है।
3: हाँ
4: हम सिखाई थे इनका।
3: हाँ
4: लेकिन एक दफा सिखाए दूसरी दफा ये
5: विसार
4: देती।
3: अरे तो कुछ तो जैसे मान लो हमें बताई है कि का बताई रहा थंकू बताऊ तो थंकू नहीं सीखे।
4: हाँ थंकू तो सीखे हो।
6: बड़का वाला चाची का सीखे रहा।
3: बड़का वाला का नहीं याद हमरे चेताओ।
4: अभी अभी देखो विवाह हम इनका
6: बधाई दे वाला बताए ना जो
4: कांगरो चूले सन।
3: कांगरे चूले सन देखो हमरे याद है बहनी।
4: कांगरो चूले सन बताए रहन
3: तब
4: तो वह तो सिखाई थे हम का तो तुरे नंद आए रही है वापस आए रही है तो यह सब सीख लो। और तू का रिक्वेस्ट सिखाए रहन की नहीं सिखा।
3: हाँ भाई रिक्वेस्टवा
4: ले अब देखो फिर रिक्वेस्ट कहा थी।
5: रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्ट
3: आई
5: रिक्वेस्ट
4: सुनाओ सुनाओ देखो।
3: वहाँ गोल काहे कह ले थी
4: सबक हो जाता है
3: हो जाता है।
4: हाँ वही देखो आई है काजल बहनी आज यहो सिखाई है अंग्रेजी हमहु सिखाई अंग्रेजी।
3: तो ये मैडम ही कहूँ के पर्स वर्स टांगे ही।
4: हाँ मैडम
3: चश्मो लगा ही जूड़ा बनाई ही।
7: राम राम चाची जी
4: राम राम ना किया करो राम राम कह रहे उसका जवाब दो ढंग से।
3: राम राम बहनी राम राम मैडम हूँ
7: जी। हाँ आप जो समझ लीजिए।
3: कहाँ पढ़ाओ तू बहनी?
7: बस एक ऐसे ही कॉलेज मिल गया जय हिंद स्कूल वहाँ पे हमने पढ़ाई शुरू की
3: पढ़ाना शुरू किया। अच्छा देखो बोलन अंग्रेजी की बोलन।
4: हाँ तो ये अंग्रेजी हो भाई ऐसे अंग्रेजी बोली जात है।
3: हाँ? अब देखो कहूँ की हम बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे तो ये मैडम जी बतावा जाए
7: जी
3: कि जो है हमें कुछ कुछ हमें अंग्रेजी बताए दी जाए।
7: जी बिल्कुल आप क्या सीखना चाहते हैं?
3: अब हम सीखा चाहे थे का सीखा।
4: अरे बहनी कुछ ना तो सुन लो हमसे इनका का सिखा दियो इनका छोट मोट।
7: अच्छा बेसिक चीजें।
4: हाँ वो है सिखा भी बड़ा बड़का वाला ना ही बोल पाई है।
7: अच्छा।
4: जैसे हम सिखावा रहे कांगरू टू लेसन।
7: अच्छा।
4: तो का थी मग मुँह गोल करे पड़ा थी हम ना ही बोल पाई।
3: बहनी जो सोच सोच हुए तो बतायो हम।
7: अच्छा
3: हम पढ़े हैं दुई क्लास पढ़े है
7: ठीक है सीधा सीधा।
3: हाँ दुई क्लास हम पढ़े ने और ये पढ़ी नहीं देखो हमें तकता ही बिला रही।
7: अच्छा
4: तो अब कुछ बोले हो ना क्या आगे
5: चाची कहाँ तक पढ़े ही
4: अब देखो। हाँ वही तू सिखाओ ऐसा बात कही करी है
3: अब इनके बतिया कह दे फिर इसे आई जाइए।
5: अरे बताए थे चाची कितना
6: चाची हमें पता है लेकिन चाची बोलिए तब भाई
3: सुना नहीं ना ही इसे आई जाइए। अरे
4: भाई तू अपन सीखो ना हमारे पढ़ाई पीछे काहे पड़ी हो।
3: हाँ
4: रह दो
3: ये पढ़े ही बहनी ये पढ़े ही हम कम पढ़े हैं हम दुई पढ़े हैं
4: तो हाँ पेटवा खौलत है ना।
3: हाँ हाँ
4: जाओ सिवाने जाओ
3: ना लगे तब वो चली जाये
4: तब के चुप पे रहो।
3: हाँ चुप पे है मैडम जी,
7: जी।
3: बताओ जाए हमें कुछ पढ़ाई दिन जाए।
7: अच्छा जब आप दोनों मिलती है एक दूसरे को तो आप सबसे पहले कहेगा मॉर्निंग टाइम में तो गुड मॉर्निंग।
4: अभी जान ना ही पाए
7: गुड मॉर्निंग
4: आप कहो मॉर्निंग टाइम अभी पता नहीं का अर्थ निकाल अर्थ का अनर्थ कर दे।
6: समझो चाची
3: हम कुछ समझे नहीं का इनका मॉर्निंग मॉर्निंग कर रही वह
4: अब
7: मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग
3: मुहा देखो कस्ते गोल कह रही थी।
6: हम इनको हिंदी बता दे आप इंग्लिश बता दीजिए
7: ठीक है
6: चाची।
3: हाँ
6: जब सुबेरवा मिला थू चाची से
3: हाँ
6: तब उनका का बोली हो वो मैम बतावा थी सुनो।
3: हम जब इनसे सुबेरवा मिल रही तो इनसे का कही
7: गुड मॉर्निंग
4: कहो गुड मॉर्निंग
7: कही
4: गुड
3: जब सवेरे
4: बोलो पहले गुड गुड बोलो
3: गुड।
4: हाँ मॉर्निंग
3: मॉर्निंग
4: गुड मॉर्निंग
3: सवेरे सवेरे तुम्हें मारे लगी।
4: अरे
3: यहाँ
4: देखो इतना हम
7: मॉर्निंग मतलब सुबह गुड मतलब अच्छा
4: तो कब मरी हम अब्बा तो है मारे लागब।
3: देखो देखो देखो रिसियाई शुरू कर दी है मैडम जी
4: हम कही थे गुड मॉर्निंग बोलो
3: गुड
4: मॉर्निंग
3: मॉर्निंग
4: गुड मॉर्निंग
3: गुड मॉर्निंग
4: गुड मॉर्निंग
3: गुड मॉर्निंग
4: मार दिया
3: दिया खलो
6: चाची रहे तो मार झगड़ा ना दिया खलो भाग जाए
3: दिया खलो मैडम जी बैठी है उन्हें समन्वय हमें ये मार
7: आप दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रही हैं?
4: अरे बहनी हमार इनकी चला कर थी।
7: अच्छा
4: बहनी
7: फ्रेंडशिप है।
4: हाँ फ्रेंडशिप तो है।
3: हाँ हाँ हाँ
4: वह है कहो फ्रेंडशिप
3: फ्रेंड पिप
4: देखो
5: फ्रेंडशिप
4: फ्रेंडशिप बोलो सिप
3: सिप सिप
4: हाँ फ्रेंडशिप
3: हाँ फ्रेंडशिप
4: हाँ
6: आ गया
4: बोले हुए
3: ऐसे हमें बहनी कुछ सिखाए दो ऐसे हमारे हमारे घरे कुछ अंग्रेजी वाले आवत हैं इनका है। तो नहीं जाबे बहुत अंग्रेजी जानती हैं दिल्ली वही के आई है नहीं
4: दिल्ली गए रहन अमेरिका तो गए
3: हाँ।
4: हमारे भाई रहा थे हुआ अमेरिका में
7: अच्छा
4: जानू बहन जी अब वो बहुत बढ़िया अंग्रेजी सिखावत हमार भैया जब हम जाए थे तो कहा थे बहनी हमारी इज्जत रखे हो
7: अच्छा।
4: हाँ हिया अंग्रेजी बोले हो तो जो हम अंग्रेजी बोली थे ना तो हुआ के अंग्रेज सीख नहीं पावत है हमसे
7: अच्छा।
4: हमसे डरात है वही सब अतरी बढ़िया अंग्रेजी हुआ बोली थे
3: अब भैया बोले लगे तो कोई समझिन ना पाई का कहती है गबड़म गबड़म
4: तो यहाँ ऐसे बोली जाते बहुत गड़बड़ गड़बड़
3: तो
4: बोला
3: मैडम जी हमें एक बात समझा दें जाए हाँ। कि हम कुछ बोल दी ऐसे अरबी तरबी कुछ बोल दी वह अंग्रेजी हो
4: नहीं हो
3: हाँ
4: हर एक बोल दे हो
7: इंग्लिश होता है
3: इंग्लिश होता
7: हाँ,
3: है
7: इंग्लिश मीनिंग होता है
3: ए भाई रचना ये काव कहा थी काव कहा थी
6: चाची जैसे कोनो जी आप कोनो कहावतिया कहा थी
3: हाँ।
6: तमने समझ ना आवत है
3: हाँ।
6: तो आप ओके अर्थ बतावत थी
3: हाँ।
6: वही चीजें जब हम सबे कोनो हिंदी बोला जाते है
3: हाँ।
6: तो ओका जब इंग्लिश हम बोला था तो ओका कहा जाता है इंग्लिश मीनिंग
4: अरे
3: इंग्लिश मीनिंग
4: ऐसा देखो हम लोग अवधि बोली थे सबसे नीक भाषा है
6: सबसे आसान है
4: हाँ, चाहे हाँ, जैसे बोल दो
3: हाँ हाँ
4: सबका समझ में आ जाते है
3: सबके समझ में अरे बहन तोरा लोग नहीं समझाते हमारे बतिया
6: बिल्कुल चाची हमारे सबका तो मात्र भाषा है
3: आई मैडम जी आप समझ लेते हो
7: जी जी बिल्कुल समझ लेते हैं
3: हमें सबके आज बोल लेते हो
7: हाँ।
3: कौन है गाँव को गंगा धाम के रहो
7: जी
3: अच्छा बड़ा नीक गाँव का नाम है इनके गंगा धाम
4: तो बढ़िया तो है
3: तो मैडम मैडम जी सुना जाए
7: जी।
3: ओ, ओ, अरे आपके नवा का है
7: काजल यादव
3: काजल जादव
4: हाँ
3: तो ये बतावा जाए कि जादव मैडम ये बतावा जाए कि वो बताओ तो नहीं हमें ये रचना कि ये मैडम जी बहुत नीक गाँव नहीं कर रही थी
4: हाँ, अच्छा। तो हम यह अब या, अब तो अब आई हो ये बात समझ मत हो रहे हम तब से यहाँ बतावा चाहते है कि हम इनका बुलावा है नवरात्रि है बहुत नीक गाँव थी बहनी
3: अब चाची हमारे रिस लाग
4: बात हमारे तू फेल कर दियो
3: तो अब हमारे रिस लाग अब हम जाये थे छोड़ छाड़ चली जा पूछो का है
4: चली जाइबो
3: ये पहले पूछो
4: हमें छोड़ के चली जाइबो
3: नहीं जाबे लेकिन ये बताओ ढोलिया मगाऊ निकनी की वह धरी है मोटकी भैंसिया
4: अब देखो लोटन चाचा मानत नहीं हमार कही वो कहते फालतू बत कही ना करो हमसे जौन है तौन बजाओ और ना बजाओ तो फाड़ी दो अब तो फाड़ी दो चाहे राख लो
3: आज हम फाड़ी दे
4: फाड़ी दो हम तो कही थे फाड़ी दो तो ना पता तो चले उनका कि दुलारी का तने जोरदार
8: चाची चाचा से रिक्वेस्ट करा जाए तुम लाए दे हैं
3: देखो कहा थी रिक्वच
4: रिक्वच नाई कहीं है
6: हाँ। चाची हमें लागत है आज हम सब पढ़बे पढ़ाईबे खाली यही करबे गौ नहीं उन्हीं ना होई
3: करबे गौ नैया करबे आज इनके आज ही कीर्तनवा करियो है
4: कीर्तनवा के लिए इनका हम बुलाए हैं कि ये गौनई सिखाए दे हमका
3: तो आज कही लो ना कीर्तनवा
4: अरे भाई अब तो हमरे ना कुछ सामान अटत है ना कुछ अटत है हम कैसे कर ले कीर्तन
3: कीर्तन में का लगी हो
4: कीर्तन में केला आई और हुआ से सेब आई सामान आई सब गोड़ा जाइए कोई तबे तो लाई
3: हाँ।
4: गौ का मिला था अपन
3: पूरे कहू पूरे कहू तो है बहनी रचना आज कुछ गाय देबो
4: आज सीख लो
3: ये मैडम से
7: हाँ,
3: टांगे घूमा थी
4: अतवार का करब बढ़िया की
3: पांच टांगे घूमा थी गंगा धाम से आई कुछ गवाए लो इनसे
4: चाची हाँ, तो है और का
6: मैडम जी जहाँ पढ़ावा थी
3: हाँ
6: वही म्यूजिक पढ़ावा थी
3: अच्छा म्यूजिक ये पढ़ावा थी
6: तो ये गई है तो अलग बात रही हम सभी तो रोज गाई
4: अब
6: तो,
4: देखो ये म्यूजिक की टीचर हो म्यूजिक
3: म्यूजिक का
6: म्यूजिक चाची
4: म्यूजिक तो कही था
7: एम एम है
3: म्यूजिक म्यूजिक
4: म्यूजिक तो बोली थे
3: म्यूजिक ये तो हम होता है
4: अंग्रेजी मालूम है म्यूजिक कहा जाता है
3: ये पढ़े ही हम अंग्रेजी जाना थी म्यूजिक
4: म्यूजिक
3: तो बहनी हम ढोलिया बजा दे भाई
7: अच्छा
3: हाँ मैडम
4: जी चाची
3: और परसवा धर दो तो कन्हवे टांगे
7: हाँ, बिल्कुल
3: परसवा कोई कुछ चुराई उराई ना मैडम जी
7: जी बिल्कुल
3: हाँ
4: तो अरे चाची चुरावे के ना कहो ये सब तो देखो गांव में कैसे ले ली हाउ मचत है जानत रहे हो
3: जानत हूँ कहाँ भा
4: हाँ
3: जे बगलिया में यहाँ राहत नहीं थी तेरा राइन
4: हाँ हाँ
3: बगलिया में जा रहा थी
4: हाँ रातों का हुई गाँव
3: उनका जाग रहा सेवानिक रातिया के यहाँ एक बजे
4: अच्छा।
3: उनका कुछ पेट वेट बगदा रहा जैसे उनके काजल के बगद जात रहा
4: अच्छा।
3: तो जय आवत रही काजल लग जाएंगे इनके सबके साथ। ये आपका नाई कही थे मैडम जी, दूसरे कही थे तो उनका सिवाने जाए करा कोनो हुलिया दिस चुअर आवा वो गई ना बैठबे की ना उठका ही भागी हमने लगी किन हे दुलारी जानू का भा हम कन का भा कन चुअर आवा है भागो हम हूं बहनी भागेन और पता लाग हल्ला उड़ा रहा कोनो चोर
6: मिला तो नहीं रहा रास्ते में
3: कोनो नहीं बहनी कोनो चोर नहीं मिला हल्लवे उड़ाई रहे कुल रतिया भर जागो बनी हमारे घर में तो लठिया ले बैठ रहा थे वो बजिंदरवा लठिया यहाँ बैठ रहा कैसे आलमार गिरा दे बन का
4: हमारा अम्मा तो

0: लेके फाट पर वो तो पता लगी की महतारी तोहर कहे की पतर का खमरे मारिन डाले।
1: अरे चाची देखें पातर ही लेकिन ही
2: देखो पातर मनई होत है ना,
0: चाचा लड़ाई हुई
2: सुना पातर मनई की ज्यादा जांगर होत है।
0: हाँ
2: और मोट तो ऐसे ठट रहा है
0: लोटन चाचा से हम अब लड़ी लिया चलो बहनी गाओ। हे मैडम जी
1: जी
0: गावा जाए गौनैया कीन जाए हम सब बनी पुरवाई ले भाई।
1: जी जी बिल्कुल।
0: हाँ
1: थोड़ा सोच ले कि कौन सा गाना गाए, भक्ति तो गाए ना।
2: अरे माता महारानी के गाए दो। हाँ माता महारानी गाओ।
1: ठीक है थोड़ा सा ही गाएंगे।
0: देखो भंडरे भंडरे तो हाँ ढोलिया बहुत है नीक नहीं ढोलिया ठीक कराओ
1: चाची।
0: हाँ
1: आप लोग भी साथ में गाइएगा।
0: हाँ हाँ हम ले पुरवाई ले भाई।
1: हाँ। पुरवाई ले।

0: बस चाची।
1: बहू ने गायो बनी तो थोड़े का है गायो।
0: हाँ इतना ही बहुत है।
2: अरे हम इका सुने हैं बहुत नेक गाना होता है, चलो हम पुरवाई थे बहनी तो बहुत साथ।
0: अच्छा ठीक है।

0: दिलों में नाचो सारे अंगना, जयकारे माँ के बोलते चलो, जयकारे माँ के बोलते चलो।
1: ऐसे तो है भाई।

0: बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो महामाई के जयकारे बोलते चलो।
1: बोलो सभी मिलके बोलो जय माता की।
2: बहुत सुंदर
1: मैडम जी,
3: जी
1: जैसे आप नीक हो वैसे गौनैया बड़ा नीक करा गा है।
2: बहुत बढ़िया
3: सब आप लोग का आशीर्वाद है।
1: बहुत नीक गायो मैडम जी, बहुत नीक। मैं तो जीव खुश कई
2: दी। हाँ सही बात है,
1: जीव खुश हो गा।
3: अच्छा
1: बहुत नीक लागा। बैठो अपनो सोच ले
2: अवधि वाले गाय दो और का। ये मैडम जी सुन ले के अवधि गाना का सोच है।
1: हम यही से दूसरे लड़ी थे
2: का।
1: जब हमारे तो अपन ठंडवा का बंद कर दे तू
2: ठंडवा।
1: अब वो नाइटिया चली गए
2: तो यहाँ तो होत है। हम झूठ नहीं कहते।

0: जैसे हम
1: आई बनी कहीं थी बनी अरे निधि जैसे हम आई तैसे इनके बत्ती चली जाई इनके ठंड बन गई
0: तो ये हम का करी तो यार जो लाइट वाले हैं वही दज्जाल बंद कहीं देते हम करी का
2: चाची बिलो तो बढ़त हुई आपके
0: अरे बिल की चिंता ना आई है बहन
1: चाचा दे दे हाँ। चाचा के बहुत पैसा है इनके कम है अपने टिकियाए
2: चाची पैसा है चाची कंजूसी का लागत है
0: अच्छा नहीं बताई था
1: कंजूस ना नहीं है हवा में पिया में लेन देन में ये बहुत उस्ताद ही बहनी
2: जो मखनवा बांधे सोचे हो ना चाची गुस्सा जे बंधवा ना करी है
1: भाई बोला मखनवा जब का सही कहा थी
2: ना चाची बांधे हैं ऐसी बात नहीं
3: और हम चाची के खिलाफ बोला लेकिन पहले बांध ली तब
0: तू हो जाई हो चाची खिलाफ
2: ये पीठ पीछे वार कर
0: चलो अच्छा गौनई कह लो सीख लो
4: तारीफ कह दो खाली अपन तारीफ नहीं
0: इक्का कहा थी बुदबुदा थी बहनी बहनी जोर से कहो बुदबुदा
4: तो पहली बार तो आई ही मैंने दूसरी बार
1: आई ही एक दाई आई नहीं भी
4: तो ये बताए थे कि चाची आपके नेचर कौन मैंने कितनी नीक हुआ
2: चाची हम दोनों के आपस के बात रहा
0: तो अच्छा बहनी बुराई ना बतवायो
2: ना चाची
4: पूरी नहीं

0: सभी फिर से मिलके बोलो का
1: जय।
0: तो देखो ये हमार बहन जी, ये अवधि होए, ये अवधि गाना होए
2: जी।
0: हाँ तो सुन ली जाए का,
3: अब तो नाश्ता पानी सब कह दो, एक तो ब्रेक मार दो बच्चे,
4: ब्रेक वाला फिर से अनाउंसमेंट करिए, अभी तब बोले बीच में बोले वो काट देंगे, ब्रेक के लिए
3: आप बोली थे हम बहनी कि अब जब चलो नाश्ता पानी कर लो, खाए पी लो, सब ले थे एक छोटे ब्रेक।
4: ठीक चाची।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: हे चाची ये जो है मूंगफलिया के लिए ये कसके बनाओ थूटी पाग बनाए के का कसके नीचे
1: थी। अरे भाई यह तो खाए खाए पानी पीत है
0: तो कसके बनाए उतनी बताओ तो।
1: अच्छा अच्छा देखो बहनी ध्यान से सुनो हम बारंबार ना बताइबे एक बार चाची बताओ थी अब बत कही ना पड़ो।
0: हाँ
1: जस बताई थे वो सुन लो बनायो जाए घर में और महतारी खवायो सबका खवायो है
0: बहुत नीक बतावा जाए थी बहुत नीक बतावा
2: बतावा जाए चाची।
1: देखो जैसे मखाना ले लियो है मखाना का ऐसे बिना घी डारे
0: हाँ
1: और भून डालो तनिक
0: मतलब ना डालो।
1: हाँ घी
0: कढ़ाइया
1: देखो ज्यादा चिकनी अच्छी बात ना
0: पूरे
1: तो कैसे कहर डालो तनिक
0: हाँ,
1: है
0: हाँ,
1: और ऐसे जब तनिक ऐसे
0: फूटे लगे
1: फूट जाइए ऐसे हाँ, ऐसे पाउडर बन जाए
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: तब उसका निकाल लो
0: हाँ,
1: अब दुई कटोरी मान लियो जैसे मखाना है पाव भर है तुहार मखाना
0: हाँ, हाँ,
1: तो दुई कटोरी चीनी ले लियो और उसमें आधी कटोरी पानी डाल दियो ठीक है ज्यादा नहीं
0: कटोरी चीनी में आधी कटोरी
1: आधी कटोरी पानी तो वो तुरंत हो जाइए वो ज्यादा पानी डाल दियो तो ज्यादा देर पकावे पड़ी।
0: अच्छा
1: अब जब जैसे ऐसे दो तार
0: निकलने
1: लगे हाँ चाशनी बन जाए दो तीन तार बने लगे ऐसे
0: हाँ।
1: बस उमा नाई दे मखाना
0: हाँ।
1: चाशनी आमा
0: हाँ हाँ।
1: अब ऐसे ऐसे तुरंत चलियो
0: सुखाए
1: जाये
0: हाँ।
1: ऐसे गरीबो पाग लियो ऐसे काजू और बदमुओ पाग लियो।
0: अच्छा
1: तो जानो ये पानी वानी पिए के लिए पियावे के लिए बढ़िया हुई जात है ना
0: बड़ा बनी बहुत
1: काफी पेस्टी नहीं कहा जात है
0: हाँ।
1: अब देखो बहनी सुन ले है तो अब कहिए कैसे बतुआत ही दोनों जनी पेस्टी नहीं बहनी
0: हाँ।
1: टेस्टी कहो टेस्टी
0: टेस्टी
1: हाँ
0: बहुत टेस्टी रहा
1: टेस्टी रहा है हाँ।
0: अच्छा अच्छा बहुत नीक
1: का सीख रहे हो टेस्टी जब आवे तोरी नंदिया
0: हाँ।
1: तब उनके सामने कहो कि बहनी बहुत टेस्टी बना है।
0: अच्छा
1: तो जान जाई है कि हाँ।
0: जैसे बहनी है तो कहते तुम्हारा मुआ बहुत टेस्टी है
1: अरे मुहा के लिए ना कहे जौन सामान बनाइयो ना
3: कोई चीज चखने के लिए टेस्टी होता है कुछ खाना पानी का है
1: बना है वैसे तो हम बहुत टेस्टी बना हुआ है ऐसे कहवा।
0: अच्छा मुहक टेस्टी ना कहबे
1: मुहक नहीं टेस्टी मुहक तो सुंदर कहा जाता है बूटी फूल कह दियो बूटी फूल
3: ऐसे कह
0: फूल
3: आप कह दीजिएगा क्यूट बहुत क्यूट है आप
0: बहनी कूट
1: ना ब्यूटीफुल कह दियो बूटी
0: ब्यूटीफुल
1: ब्यूटीफुल
0: कहते बहुत ब्यूटीफुल हो
3: ब्यूटीफुल
1: ब्यूटीफुल
0: वह बूटी अब ये कहने की कह दियो कि कूट
1: कोट तो है कोट डरी है ना जान पाई है वही हाँ।
0: ये कौन मैं अंग्रेजी पढ़ाओ तू मैडम जी मारी जाबे हम
2: कोट अपन जवनिया घुमाए सीख लो बस सब सही
1: हाँ मुहा ना घुमाए पावती तब का करी
0: हम नहीं कह पाई थे कहीं कोट तब इनके बोल हुई
1: हमार मुहा देखो कैसे हम बोली थे
0: हाँ
1: क्यूट
0: यही मैं हम ना कह पाई बिलरियास
2: रुको निधि कह के बताओ
0: निधि कैसे कहे
4: हम क्या कहे बिलरिया
1: कूट डारा पुकार पे क्यूट प्यूट हो जाइए
0: हमारे घर एक जो बिलरिया आवे थी बड़ी सुंदर ही वही के हमें मुहा बनावा थी तो हम का करी बताओ
5: इतना इतना प्यार से आपका सिखावत थी
0: ना
2: आप
0: सुंदर
2: भी देखी
0: मुहा बना थे तो हाँ
5: क्यूट
0: यहाँ देखो यो भी बिलरिया मुँह बनाई देख लो इनके मुँह देख लो
4: जाए इनके लिए
3: क्यूट क्यूट
0: ये देखो ये नहीं मुंह बनाई ये मुंह बनाई दीदी और यही बनाई हमारे चाची
2: अरे चाची तो मैं बड़ा साल से बोला चली आई हूँ उनके प्रैक्टिस होएगा
0: प्रैक्टिस की नहीं प्रैक्टिस हम नहीं के पाई थे
5: तो कोशिश करा जाए
0: कोशिश तो कर बे हाँ कोशिश या तो कर सकी थे मैडम जी,
3: जी?
0: जैसे वो आई है जब तो उनका कहा था कि आपके मुंह बहुत टेस्टी है
1: अरे मुहा नहीं टेस्टी होते अरे जाओ दुलारी मुँह टेस्टी कहियो हम कहा कही बार बार भी ब्यूटीफुल बोलो
0: ब्यूटीफुल
1: हाँ
0: कहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल
1: ब्यूटीफुल हाँ और का मुहा का ब्यूटीफुल कहा जाता है क्या भाई नहीं
3: जी
1: हाँ
0: अच्छा मैडम जी ब्यूटीफुल बोल दे
3: हाँ क्यूट ब्यूटीफुल बहुत हैंडसम है
1: अरे ना ही बहनी ना कहो ना कह पाई
0: हैंड पंप
2: चाची हैंडसम किसी लेडी को बोल देंगे और ब्यूटीफुल किसी जेंट्स को बोल देंगे इनका इधर उधर चलता रहता है
1: कई तरह हैंड पंप ही बोली है
0: हाँ हैंड पंप वो हम बोल ले भाई
5: पंप नहीं चाची हैंडसम
1: बोलो बोलो
0: हैंड पंप देखो
5: हैंडसम
0: हैंड
1: सम
3: अरे स्मार्ट बोल दीन जाए स्मार्ट
1: आप बोल दीन
3: स्मार्ट
1: ये अंशिकवा क्या बतावा थी हम मैं
6: स्मार्ट
1: सबाट
6: स्मार्ट
1: स्मार्ट
6: स्मार्ट
5: चाची एक काम करिए
1: रहा है दादा रहा है तो मार खपड़िया दागी जाई
5: चाची
1: हाँ
5: आप ये सब बात छोड़िए आप कह दिया बहुत प्यारी हैं आप बहुत सुंदर हैं
1: आप बहुत प्यारी हैं और बहुत सुंदर हैं
6: हाँ
1: यहाँ
6: यहाँ बोले हो
1: तो वही जान जाए कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं
3: चाची
1: हाँ
3: नवरात्रि चल रही तो आप लोग भी व्रत हैं
1: हाँ बड़ी
6: सब है 9 दिन भूखी हुई
3: आप लोग ने कलसा रखा है
6: हाँ हमारे घर रखा कलसा उलसा सब सजा के रखा
1: अच्छा पिछले सलिया धरे ना असो नाई धरे ना
3: अच्छा
1: हाँ
6: भाई हम तो धरे भाई
1: ना हम बिसर गए नो
6: काहे बिसर गए
1: बिसर गए हम धरबे नहीं गए बिसर गए
6: ए का है के एक साल धरो एक साल धरबे ना करो
1: तो हमरे नाई चेत रहेगा तब का करी अब भाई अब का दुत्या नहीं करेगा अब आतीज है
6: कोनो बात नहीं देखो जब चेत आवे तब धई दे कलसा आज कोनो बात नहीं कि पहले दिन धरो
3: आप पंचमी को रख दीजिएगा
1: पंचमी का
3: हाँ।
1: तो बनी मन कहीं कहीं बात है तुम मटकी ले आई
3: हाँ, जैसे अगले साल रखी थी आप ऐसे ही रख दीजिएगा
6: मटकी ले आओ गोबरा तो तेरे घर कम है ये नहीं
1: बहुत है
6: डलिया डलिया गोबरा है
1: हाँ।
6: लेके बैठ जाओ और गोबरा का गूठ डालो कलसा
1: हाँ,
6: का
1: हाँ, हाँ, हाँ।
6: और जवा ले लो जवा ऐसे ऐसे लगाए दो चावल
5: रंग बिरंगे चावल भर दो
6: बस बनेगा
1: और पन्नियों भरा जाते बहनी
6: पन्निया मार डालो सुपारी अच्छा तो पैसा
1: पैसा डाले पड़ी
6: पैसा डाल दी
1: पैसा डाल दी
6: अरे रुपया तो रुपया डाल दिए और ज्यादा थोड़े न डाले खाए
5: और आम का पत्ता
1: और जो 10 के नोटिया डाल दी दो
3: अरे
6: डाल दिए और कहा मिल जाइए यहाँ चाहती हूँ तो
1: अच्छा गिलट लोहवा डारी
6: हाँ, हाँ,
1: अच्छा, अच्छा अच्छा
3: तो आप लोग भी कुछ गा दीजिए और अच्छा सा
1: बहन एक हमारे चेताव थे हमारे सास गावत रही
3: अच्छा
1: हाँ तो वहाँ हम गाए देते
6: अरे हम तो बोलते हैं हम तो साथ है पुरवाई
1: चलो गाओ
6: हाँ

0: अब सभी बोलो एक बार जोर से,
1: जय हिंदी।
2: हमें बहुत नीक
0: बहुत नीक। अब भैरी सुनी लो, जब बजरिया की निकली थे तो चारी ओर हल्ला होते है, जय माता की जय माता की, और गौनैया सुनाई पड़त। मैडम जी
3: जी,
0: आपके गंगा धाम में भी बाजत है?
3: जी हाँ।
2: अब देखो इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति धरी गई है कि जिकर लागत है जैसे हमें बोल रहे हैं देवी की।
0: बहुत नीक मूर्ति तोरे यहाँ सिका धरा गा है मूर्तिया
3: धरा जाये पंचमी का आयु।
0: अच्छा पंचमी
2: धरा नहीं गए, कोई पंचमी में धरी कौन सप्तमी में धरी।
0: हाँ।
2: चलो दुलारी हम सब चली बे हाँ।
0: हाँ,
2: गोड़ा चली
0: मेला करे।
2: हाँ गोड़ा
3: चलनी है चाची।
2: हम तो लहंगा लहंगा पहनब हम
3: बैंक
2: काहे लहंगा पहनो सब
0: भैया उनके बहुत नीक लहंगा है चमचम वाला।
3: चल ले हो तू लहंगा
2: भैया, हम तो लहंगा पहन के ही चलब भाई, हम तो बनवाए लिया है।
0: हाँ
2: अपन लहंगा पहनब और दू जो डंडी ले ली
0: चाची
4: है डांडिया को डांडिया खेल वही
2: पहले घाघरा पहरब तो तू घाघरा पहन लियो
4: लहंगा चोली पहन ली
3: चाची
2: बहुत नीक लागे और सब
3: दुई कब चलियो
0: पंचमी चलो पंचमी।
3: हाँ दुई रोज बचा
4: मंदिर
0: बनी तो सी जाई
2: डंडी बजाए बजाए नाचा जाए।
0: हाँ
2: हाँ।
0: तो हम चलवा नहीं लेब जोन बारी थे तुम
2: और गानों हमें याद आएगा पिछली बार मतलब पिछली बार गाय रहा ना।
0: हाँ
2: तो गात रही वो गाना रहा है हे नाम रे।

0: मजा आएगा तो सुन ही लियो।
1: सुनो सब है अपने जे जे चैला बारत हूँ चूल्हा में तो चैला ले लियो।
2: रंग बिरंगा कपड़ा
3: सुंदर सुंदर सीधा सीधा दर्जा ले आवा जाए और हेमा लैस वैस से हम सब
4: सजावा
0: बजावा जाए। चाची आप डांडिया खेले जावा जाए या मार करे जावा जाए चैला लेके
1: तो हम चैलवा पीते के बहनी
2: नहीं डंडी हो पातक पातक।
1: अच्छा ओके वैसे डंडी है आओ थे सब पैसा हाँ।
3: बजरिया में बिका था कोनो ये ना है कि हम लोग तूर तूर लाए
1: चलो तो बजरिया में काहे पड़ी थी हमें
4: हम लोग ना ही खरीदे हम लोग खुद ही बनाई भाई वो सारी जो नीचे पातर पातर लस लगा हुआ था
1: हाँ लसवा
4: लसवा लेके होकर बस ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे
1: घुमाई
4: दिए हाँ।
1: तो चक्की कैसे हो
4: वो चपक जाए आगे आगे
0: कौन से ना
4: डोरा डोरा लेके आगे बांध दी बन जाए
1: तो हमार बना दे बो
4: हम बना दे तो
0: हाँ, हाँ, हाँ, ललका सड़िया आपके पास है
1: चमचम वाली
0: हाँ चमचम वाली ओके नीचे वाला लैस वाला आगे ओके दे दिया जाए
1: सड़िया नोच कर लैसिया दे दी है देखो तो नहीं
2: ऐसे सिखाई
1: भाई से ये पत्थर का वहाँ बड़ी हुई भाई
2: हाँ आई भी बहुत
3: यह चाची बहुत जुगाड़ू जानती हूँ चाची इनके तू कला बताई दी इन्हें वह दिन जो त्योरानी चाची बगले मिश्रा चाची रात नही है
1: हाँ, हाँ, हाँ,
3: वो इन्हें रुपया दिन कहीं बहनी बहारिया से अपने स्कूलिया जायो तो इन्हें पैसा दिन कहीं के हमरे मन रुबट्टा में यहाँ फाट गया है तनी लैस लगाए को का ताई ले बे
1: हाँ।
3: दे दिन और यही गई चाची अपने अम्मा में से सड़िया वहाँ से निचवा से फाड़ के उनका दया ही रुपया था
1: अरे बड़ी कलाबाजी हो
0: अरे बच्ची है तनोना सोचे जाए इतना तो सोच रही हो
1: हाँ कितना कला बाज इनके कितना कला वो तो पातर पातर हाँ, दुई हड्डी
4: ऐसे दुई हड्डी के लगन दिमाग हुआ आता ना दही
0: जी दिमाग क्या बहुत चला आए थे तो सड़िया मांगे ने दही दी चाची हम कहें ना आपसे कि देखें खाली पातर
1: हाँ, ही पूरे कहूँ बहनी पूरे कहूँ ये बड़ी भैया इकरे बड़ा अकेल बहुत ही लगा हुआ
3: चाची जो इतना पढ़ लिए हो तो एक दिमाग सही दिशा
1: हाँ पूरे के पढ़ा तो ही बनो ड्रेसवा पहरे ड्रेस देखो ड्रेस बहनी पढ़ा तू ना
3: जाते मेरी वो पढ़ा लिखा ना ही बिटिया
0: दीदी झूठ ना बोले
1: ए अब्बा लड़ी नहीं बड़ी लड़का ही
3: रह दो चाची आज हम कम खाएं हैं लड़ना भाई
1: हाँ रे बहुत
0: अब हम खाइबो नहीं कर लेकिन लड़बो कर दीदी
1: तेवरनिया जोन लड़ाई है कह होते दादा आज कहो तेवरनिया आई नहीं है
0: तेवरनिया जानो मर तो नहीं गई कब नहीं
4: बराम हो
1: बराम ही तेवरनिया फिर बराम हो गए हे बदरका
4: चलो ये सब परपंच कर
1: ये बदरका जाओ सुनी दे हमारे बतिया पूर कह ले दो जाए आज वही रास्ता से तेवरान के घर परत है और जाए उनके हाल चाल लेके हम और चटपटी खान दोनों का बताई दी
0: बिस्तर पर ही तब लड़ाते
1: तू देख के चली आ बस कहती हो कि हमें भेजी नहीं
0: के मन के बताई दे
1: हाँ का कहती हो अब बताओ
4: हाँ तो चलो हम ही कही रहा है कि अब तैयारी करो निवरता है और सबका जाए दो
1: ये कजवाएं धाती चटपटी जब देखो तो कजवाएं
3: हाँ चाची थोड़ा हम लोग भी आराम कर रहे हैं
4: बारे खाए बाती करे खाए दो चार भजन हो गाए खाए
1: हाँ
4: तो देर हो जाए अब
3: जाए थे हम सब रास्ता में हो डंडवा तूर ले
4: हाँ डंडवा बनाई लियो बहनी हाँ
3: तो राम राम राम चाची
1: हमारा बनाई लियो बहनी
0: चाची
1: हम हूँ हुआ पांडिया खेला
0: हाँ
1: अच्छा वहाँ
2: डांडिया
1: डंडा से डांडिया
4: तो चलो भाई सबका नमस्ते
1: कहते हैं भाई जय माता दी जय माता दी
0: जय माता दी।
3: और हमारे सबके एक रिक्वेस्ट है कि हमारे सबके ये शो आप सब रोज सुना जाए और सुनत रहा जाए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM
5: ये है गोंडा शहर की धड़कन
1: आई हमारा रिक्वेस्ट है
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित ताकि करियर बने मजबूत और सफल
7: तो आइए NJPG कॉलेज जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी
6: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन
6: तो देर किस बात की आज ही कॉलेज विजिट करिए पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा
8: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: अरे सुना
10: क्या,
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ,
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
11: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं?

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी का, आप सभी के कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। ज़्यादा देर लगेगी और ये देर लगती है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी देर इंसान करता नहीं, कभी देर हो जाती है, लेकिन किसी ने कहा कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ जाके उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो कुछ लोग तो जानबूझकर देर करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि परिस्थितियाँ देर करा देती हैं। हमारे साथ हमारी को होस्ट मौजूद है, जी हाँ आप सभी के साथ, प्यारी सी आवाज़ की मालकिन है, बहुत ही खूबसूरत सा अंदाज़ है, और सबसे पहले तो आपका आपके ही शो में स्वागत है, अभिनंदन है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी बस बस, आप लोगों की दुआएं हैं।
1: और हमारे लिसनर कैसे हैं ये भी पूछ लीजिए।
0: जी हाँ, श्रोता लोग भाई जाए, आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं। निधि जी पूछ रही हैं कि आप कैसे हैं, तो जरा अपना हालचाल दे दीजिए ताकि तसल्ली हो जाए कि हमारे श्रोतागण ठीक ठाक हैं।
1: और सर आज सबको आने जाने में ज़रा देर लग रही है।
0: हाँ देर लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है?
1: कजरी का तीज सर, त्यौहार।
0: अच्छा,
1: आपको भी आने में शायद थोड़ी देर हो गई।
0: थोड़ी देर हो गई, क्या बात है, मतलब हर रास्ता बंद है।
1: जी हाँ।
0: तो भाई जो लोग हमको सुन रहे हो गोंडा से सुन रहे हो और आपको कहीं जाना हो, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये सोच कर रखा हो कि वहाँ से आप 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको आधे घंटे से ऊपर का समय लग सकता है, इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी निकलिए, नहीं तो हो सकता है आपको भी देर हो जाए।
1: जी, और आप ये गाना भी नहीं सुन पाएंगे, जरा देर लगेगी।
0: हाँ, जरा देर लगेगी। अच्छा, ये जो कजरी का तीज है जिसको हरियाली तीज कहा जाता है, निधि जी, हाँ, तो मतलब क्या लगता है आपको कि इस त्योहार को, इस व्रत को मनाने के पीछे कुछ परंपराएं रही होंगी?
1: जी सर, बिल्कुल रही होंगी।
0: तो क्या लगता है, मतलब उस मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि कजरी का तीज या हरियाली तीज जिसे बोलते हैं वो क्यों मनाया जाता है?
1: जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं।
0: लेते हैं एक संगीत में अंतराल और फिर आपसे मिलेंगे और फिर बताएंगे भाई, और आपको कल हिंदी जिसके माथे की बिंदी भी बोलती है।
1: जी सर,
0: तो हिंदी दिवस भी है, 14 सितंबर है कल। हिंदी हमारी राजभाषा है, यह राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। तो हिंदी के बारे में भी कुछ बात करेंगे, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे साथ निधि जी भी उपस्थित हैं। फिलहाल क्या लगता है आपको, हिंदी कैसी ज़ुबान है?
1: यार हिंदी सर कोई ज़ुबान नहीं, हिंदी एक ऐसी भाषा है, आप नींद में हो, चल रहे हो, जहाँ भी हो, आपके मुंह से इंग्लिश तब निकलती है जब आपको बहुत ज़रूरी स्पीच देना है, गुस्सा आ रहा है, कुछ है, पर हिंदी वो कभी भी। जी हम आए, कैसे हैं आप, जल लेंगे आप हमारी मूवी से भी रिलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, हिंदी जो दिल को छू जाती है।
0: अच्छा, और अन्य भाषाओं के बारे में आपका क्या मानना है?
1: सर सारी भाषाएं अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, पर हिंदी मुझे कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छी लगती है।
0: अच्छा, तो हिंदी का ऐसा कौन सा लेखक या कवि है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया?
1: मुंशी प्रेमचंद।
0: क्या बात है, मतलब उनकी किस कहानी ने या किस उपन्यास ने आपको बहुत अंदर तक हिलाया?
1: सर मैंने उनका एक उपन्यास पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा था। उसकी कहानी मैं आपको अगले संडे बता सकती हूँ।
0: जी, मतलब मुंशी प्रेमचंद हमको लगता है इसलिए भी अच्छे लगते होंगे कि जब आप उनकी कहानियों को पढ़िए या उनके उपन्यास को पढ़िए तो लगता है कि आप एक और पढ़ती जा रही हैं और आपको लगता है आपके आँखों के सामने वो दृश्य चल रहा है, बन रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: ऐसा दिखाई पड़ता है ना कुछ।
1: आपने सही कहा, ऐसा ही होता है।
0: मतलब 10th क्लास में एक कहानी है उनकी मंथ।
1: जी सर,
0: जहाँ पर वो डॉक्टर चड्ढा रहते हैं, भगत रहता है।
1: जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: सांप वाली ना?
1: जी सांप वाली कहानी।
0: मतलब लगता है कितना रियलिस्टिक है,
1: ऐसा लगता है वो सच ही, ऐसा सच में घटना घटी थी, ऐसा हुआ था।
0: हाँ, और अगर आपने कही 5th या 6th की बात आपको याद होगी तो एक बहुत ही प्यारी कहानी चलती थी, ईदगाह।
1: ईदगाह, जी सर।
0: वहाँ पर जो हामिद है, प्रोटैगोनिस्ट है, जो वो चिमटा लेता है
1: अपनी माँ के लिए लेके जाता है मेले से,
0: और मतलब सोचिए सुबह से न कुछ खाया न कुछ पिया। मतलब बच्चे न, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है।
1: जी, वो जैसे भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि लोग क्या महसूस करेंगे, वैसी कहानियाँ लिख रहे हैं, लोग बिल्कुल रिलेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जाता है और ले आता है वैसी चीज़ें जो माँ को ज़रूरत सच में होती है। या आप भी कभी वैसी चीज़ें ले जाते होंगे जो आपके बच्चों को लगता होगा चाहिए, पर वो आपसे कह नहीं रहे होते हैं। उनकी माँ भी कही नहीं थी मुझे चिमटा चाहिए, पर वो पूरे मेले से वो चिमटा लेके आया।
0: हाँ, मतलब एहसास की बात अगर हम करें तो वास्तव में अगर इस दुनिया से एहसास को ख़त्म कर दिया जाए तो मुझे लगता है ज़िंदगी जीना बहुत दूभर हो जाएगा।
1: जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: मतलब माता और पुत्र, मतलब एक बेटा जिसको वास्तव में खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए।
1: जी,
0: गरीब घर का बेटा है।
1: जी सर।
0: और इसके बाद भी जब वो पहुँचता है तो मेले में कई सारी आकर्षक चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, लेकिन जहन में उसको उसके याद रहता है कि उसकी माँ जब
1: रोटी बनाती,
0: रोटी सेकती है
1: तो हाथ जल जाता है।
0: हाथ जल जाते हैं। वास्तव में जो अगर हम ध्यान से देखें तो पुराने ज़माने में, आज के कुछ में पहले की ओर जाए तो एहसासात लोगों के पास कुछ ज़्यादा थे। अगर इधर देखते हैं तो लगता है कि इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल अधिक हो गया है।
1: जी सर आप सही कह रहे हैं, इंसान प्रैक्टिकल के साथ साथ जब इंसान को ज़रूरत होती है कि हाँ ये ऐसा है, तब वो इंसान से रिश्ता रख रहा है। और पहले के समय ऐसा नहीं था, बस हर कोई अपना ही था। रिश्ता रखने के लिए कोई वैसी चीज़ नहीं चाहिए होती थी कि इंसान के पास हो, रिश्ता है तो है।
0: हाँ, मतलब एक पंक्ति की बात की, रिश्ते का अगर हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखें तो हमको लगता है कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है।
1: जी बिल्कुल,
0: इसलिए लोग रिश्ता रख रहे हैं।
1: यस सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और लोग रिलेट भी कर पा रहे हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं कि फ़ोन बजते ही आप पूछ लेते हैं, हाँ तो बताइए क्या काम है, क्योंकि आपको पता है वो आपका हालचाल लेने के लिए, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए वो कॉल नहीं किए हैं। आपका काम है या उनको आपसे कोई काम है?
0: हाँ, ज़रूरत है,
1: ज़रूरत है।
0: इसीलिए मुझसे अभी मैं पढ़ा रहा था तो परसों शनिवार को, हाँ पिछले शनिवार को जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो शनिवार को हिंदी पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में, तो एक बच्चे ने बहुत ही मासूम सवाल किया कि सर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है। अब कुछ देर तक मैं तो सोचता रहा, तुमने कहा भाई देखो खूबसूरती देखने वालों की आँखों में होती है, लेकिन उसने कहा नहीं आपसे बताइए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है। कुछ देर तक मैंने सोचा और उसके बाद मैंने उस बच्चे से कहा ज़रूरत।
1: यस सर।
0: तो उसने कहा क्यों? हमने कहा क्योंकि उसी की वजह ही से तो रिश्ते हैं, अगर ज़रूरतें समाप्त हो जाएंगी तो शायद रिश्ते दम तोड़ देते हैं।
1: ये बात सच है सर।
0: मैंने देखा कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, और रिश्ता वही है जहाँ तक आपकी ज़रूरत है, और जहाँ वो ज़रूरत पूरी हुई वहाँ पर इंसान ने उस रिश्ते का परित्याग कर दिया।
1: पर ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा नहीं होना चाहिए
0: ऐसा
1: ना, ये बहुत गलत है।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए निधि जी, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बदलती हुई दिखाई पड़ती हैं, जहाँ पर कुछ जो भावुक लोग होते हैं जिनके लिए एहसास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, शायद उनका हृदय थोड़ा सा चुभता है।
1: सर जो एहसास होता है उनके अंदर से ख़त्म हो जाता है, इसका ये भी कारण हो सकता है उनको उसी चीज़ पे बहुत बार ठेस पहुंचा हो तो उनके मन में ऐसे सोचने की वो ही ख़त्म हो गई हो कि सब लोग बस मतलब से ही आते हैं।
0: हाँ, मतलब एक पंक्ति है कि जहाँ तक मुझको मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है।
1: एक सर ऐसे मैंने भी एक पंक्ति सुनी थी, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ।
0: क्या बात है, क्या बात है। और जी हाँ, शीशी है जहर की, शीशी की जहर की शीशी जो हमको दिखाई पड़ती है
1: जी सर,
0: उस पर पॉइजन लिखा होता है।
1: यस बिल्कुल लिखा होता है।
0: तो इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, अरे बड़े नादान हो साहब, शीशी है जहर की और दवा ढूंढ रहे हो।
1: वाह क्या बात है।
0: तो ये चलता है, मतलब तो अब तो जहर की शीशी में दवा खोजने के जैसा काम इंसान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगता है कि ये बातें सिर्फ बातें होकर रह गई हैं।
1: शायद हमारे लिसनर अब कजी तीज के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो हमें लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक और उनको बहुत ढेर सारी बातें बतानी चाहिए।
0: जी हाँ, बिल्कुल, चलिए सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत और हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं और झुमाते हैं, और राजेश खन्ना जी को भी प्यारी सी आवाज़ किशोर कुमार की है, और इसके बाद लौटते हैं और बताते हैं हरियाली तीज का महत्व क्या है।
1: जी बिल्कुल, गोंडा मैसेज मसाला में कुछ मसालेदार चीज़ें।
0: जी आप सुन रहे हैं रेडियो वर्सलिक 9.6 FM में, ये है गोंडा शहर के धड़कन, मैं हूँ मनु आप सभी का दोस्त, और हमारे साथ हमारी को होस्ट है निधि, आप सबकी प्यारी सी दोस्त।
1: जी बिल्कुल।

0: जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत, इस्तकबाल। कजली का तीज एक ऐसा पर्व जिसकी अपनी बहुत ही ऐतिहासिक और मिथोलॉजिकल विशेषताएं हैं। हमारे साथ हमारी को होस्ट निधि जी हैं। तो निधि जी, ये बताइए, ये त्यौहार आपको कैसा लगता है?
1: सर, मुझे तो ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्या कुछ होता है इस त्यौहार में?
1: सर, महिलाओं इस त्यौहार को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरती से मनाती हैं, कुछ व्रत रखती हैं। 2 महीने पहले से ही कजरी तीज आ रही है वाली, और उनका सजना संवरना, मंदिर जाना, और शहर की भी रौनक बढ़ जाती है। मुझे लगता है जैसे कोई त्यौहार आती है, आपके चेहरे घर के साथ उस शहर की भी रौनक बहुत अच्छी हो जाती है।
0: मतलब क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही इसका महत्व है, या कुछ अन्य राज्य में भी इसको हम मनाते हैं?
1: सर, इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ, मेहंदी लगाना, जल चढ़ाना, और कुछ जगह गीत गा के मनाई जाती हैं, कुछ जगह शोभा यात्रा निकाली जाती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इसे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आपको नहीं पता था सर?
0: नहीं नहीं आप जैसे माता शिव और पार्वती की बात हुई
1: जी,
0: तो माता पार्वती के पहले माता पार्वती का एक जन्म और था
1: जी सर।
0: आप कहें तो मैं आपको बताऊं।
1: जी सर, बिल्कुल बताइए, मेरे साथ हमारे दर्शक भी सुनने के लिए बहुत बेकरार हैं।
0: जी हाँ, तो हमारे श्रोताओं भाई, आप सभी को पता होगा कि दक्ष की कन्या, और उनका नाम सती था, और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। तो सती का विवाह जब भगवान शंकर के साथ हुआ, तो भाई देवों के देव महादेव हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: है कि नहीं? तो हुआ क्या कि भगवान राम का अवतार हुआ था, रामावतार हुआ था, और भगवान, ये उस समय का दृश्य है जिस समय भगवान राम पूछत चले लता और उपाती, माता सीता का हरण हो गया, और लता और पत्ती से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब बहुत रोए थे राम जी अपनी अपनी पत्नी
1: के लिए।
0: हाँ, अच्छा, उस समय भगवान शंकर और सती जी जो है वो जा रहे थे, और आप जानती हैं कि भगवान शंकर के लिए राम जो है वो उनके आराध्य हैं।
1: जी,
0: मतलब वो उनको पूजते हैं। तो सती साथ में थी, तो उन्होंने कहा कि अब अगर भगवान ने मानव शरीर धारण किया है, उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, तो अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रणाम करूंगा तो शायद अभी लोग उनके मानव जीवन पर संदेह करेंगे। तो उन्होंने बस केवल चलते चलते कहा कि जय सच्चिदानंद घनश्यामा, तो प्रणाम करके चल दिए।
1: यस सर।
0: अब सती को लगा कि मेरे पति देवों के देव हैं, और उन्होंने एक साधारण मनुष्य को
1: प्रणाम कर लिया।
0: प्रणाम कर लिया, तो पत्नियों का फंसा है, होता है ना पति पर अधिकार। तो उन्होंने कहा कि आप देवों के देव हैं, त्रिकालज्ञ हैं, और आपने एक साधारण मनुष्य को, जिनकी पत्नी गायब है और वो विरह में है, और ऐसे एक साधारण से इंसान को आपने क्यों प्रणाम कर लिया? तो भगवान शंकर ने कहा है कि देखो, वो नारायण के अवतार है। तुमने कहा नगर नारायण के वो अवतार हैं, तब तो उनको सब कुछ पता होगा कि उनकी पत्नी कहाँ है, कैसे है। नहीं हो सकता। नगर नहीं होता है, मतलब है, चूंकि वो नर लीला कर रहे हैं, तो नर बन के लीला कर रहे हैं।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: लक्ष्मी, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन सती के समझ में नहीं आई बात,
1: नहीं मानी सती जी।
0: हाँ, तो अब भगवान शंकर ने देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर आपको संदेह होता है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए आप, और तब तक मैं ही बैठा हूँ। तो सती ने कहा ठीक है, वो चली। तो सती ने कहा परीक्षा लें कैसे? तो सती ने क्या किया कि सीता का वेश धारण कर लिया
1: जी।
0: और सीता का वेश धारण करने के बाद जहाँ भगवान राम जा रहे थे तो आगे आगे चलने लगी,
1: मैं ही सीता हूँ।
0: हाँ, मतलब कि अब देखते हैं, जरा टेस्ट लेते हैं
1: जी।
0: भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण तो सबसे अचंभित हुए कि अरे तो माता सीता यहाँ पर है। तो भगवान राम ने कहा कि विपिन अकेर फिरो खई हेतु कहो बहोरी कहाँ बिशकेतु। उन्होंने कहा कि माता प्रणाम, आप अकेले हैं और भगवान शंकर कहाँ है। अब सती को यह एहसास हो गया कि भाई साधारण मनुष्य तो इस बात को नहीं जान पाता कि मैं सती हूँ और भगवान शंकर की पत्नी हूँ। अब वो वहां से चली तो जिधर से देखे उधर से राम लक्ष्मण सीता उनको दिखाई पड़े। बहुत पश्चाताप हुआ कि पति की बात नहीं मानी। आई शंकर जी के पास, बड़ा पछतावा था, बात मान ली होती, मान ली होती। भगवान शंकर ने पूछा कि क्या हुआ, परीक्षा ले आई। तूने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, सिर्फ आपकी तरीके से प्रणाम किया और लौट आई, क्योंकि आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती
1: जी। बिल्कुल।
0: तो भगवान शंकर त्रिका लग गए, वो बैठे हुए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पास्ट में क्या हुआ वो उन्होंने देखा। तो देखा कि
1: ऐसा हुआ था।
0: अब उन्होंने विचार किया कि सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया है और सीता जी मेरी मातृवत है
1: जी।
0: तो जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटाई धर्म पथ होई अनीति। उन्होंने कहा कि अब अगर मैं सती से प्रेम करता हूँ तो ये धर्म के विरुद्ध होगा
1: जी। अब उन्होंने हमारी माता का भेद धारण कर लिया।
0: हाँ,
1: था
0: तो हमारी माता जी ही होगी
1: जी।
0: उन्होंने कहा यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की नमन माही। उन्होंने कहा अब इस शरीर से, सती के शरीर का कोई संबंध नहीं रहेगा। और ये प्रतिज्ञा कर ली कि हमने, मतलब जिसको कहते तलाक दे देना
1: जी। बिल्कुल।
0: तो चले, जब वो चले तो आकाशवाणी हुई कि आपके जैसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है और आपके जैसा राम भक्त कौन होगा। तो सती ने पूछा कि क्या हुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात आगे बढ़ती रह गई।

0: अब सती जान गई कि प्रभु जान गए हैं, लेकिन अब तो व्हाट इज डन इज डन,
1: जो हो गया वो तो हो गया,
0: उसको कैसे वापस लाए। बड़ा विस्मय था बड़ा। और भगवान शंकर गए और जब सीता को मतलब जहाँ सती को बिठाने की बात आई तो उन्होंने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने कहा कि सामने बैठिए आप, बगल में बैठने का अधिकार आप
1: खो चुके

0: जाएं। तो उसी समय क्या हुआ कि सती के पिता का नाम है दक्ष, तो दक्ष को एक बड़ा अधिकार मिला, तो उन्होंने सबको बुलाया लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया, मतलब ससुर और दामाद की पट्टी नहीं थी। तो सती ने देखा कि बहुत सारे विमान पर चढ़कर लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि ये क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आपके पिता जो है वो बड़ा अधिकार पा गए हैं, बड़ी सी पार्टी दे रहे हैं और हमको नहीं बुलाया, और चूंकि हम आपसे वैर है तो आपको नहीं बुलाया। तो सती ने कहा क्या हम चले जाएं कुछ दिन अपने पापा के यहाँ। तो भगवान शंकर ने कहा देखो, गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर, ये आप बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हुए। लेकिन अगर कोई विरोध आपका करता है तो मत जाइए, कल्याण नहीं होगा। फिर उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हम चले जाएंगे। तो ठीक, जाइए, आपकी इच्छा है तो चली जाइए। अब वो सती गई तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि शंकर भगवान का कोई स्थान ही नहीं, मतलब जो तीन देवता होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पर शंकर जी की कोई जगह ही नहीं। अब उनके पिता ने भी उनसे ठीक ढंग से बात नहीं की, बहने मिली तो मुस्कुराती हुई मिली कि देखो बुलाया नहीं गया तब भी चली आई, ऐसा कुछ। अब ऐसी स्थिति में सती ने जो है वो यज्ञ वहां पर हो रहा था और इस अपमान को नहीं सहन कर पाई अपने पति के, और प्रार्थना की कि अगर मैंने मन वचन और कर्म से भगवान शंकर को अपना पति माना हो और मेरे अंदर कोई दोष न हो तो अगले जन्म में मुझको यही पति के रूप में मिले। और इतना विचार करके, इतना कहकर वो यज्ञ में कूद गई और अपने शरीर को उन्होंने जला डाला। आपने सुना होगा कि जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे हैं, शक्तिपीठ हैं, तो वहाँ से जब भगवान शंकर जो है वो सती को लेकर चले थे, तो जब पहुँचे वहाँ पर तो जब देखा कि सती मतलब यज्ञ में आहुत दे डाली अपने प्राणों की, तो उन्होंने वहाँ पर नृत्य किया था क्रोध में आकर के, और उस नृत्य को एक तंडु नाम के ऋषि ने देख लिया था, इसीलिए उस नृत्य का नाम आगे चलकर पड़ा तांडव। हाँ, मतलब तांडव, ये तंडु ऋषि थे जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनके डांस को याद किया था, और भगवान शंकर को जो है वो नृत्य का देवता कहा जाता है, आपको पता ही होगा।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: हाँ, नटराज के रूप में देखा। हाँ, तो अब अगले जन्म में उनका जन्म हुआ हिमाचल के घर, और तब उनका नाम वहां पर पड़ा पार्वती,
1: सती से पार्वती।
0: हाँ, पार्वती बनी, पार्वती उनका दूसरा जन्म है
1: जी।
0: तो नारद जी आए तो उन्हें हाथ देखा तो कहा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इनको जो पति मिलेगा वो उसका घर द्वार नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, बाकी सब ठीक है। तो यह हुआ कि अगर ऐसा ही पति मिलना है तो क्यों ना तपस्या की जाए और भगवान शंकर को पति बना लिया जाए
1: जी।
0: तो पार्वती ने तपस्या करनी शुरू कर दी, और जब तपस्या की उन्होंने तो बहुत दिन तक तो जो है वो फलाहार किया, कुछ दिन तक पानी पिया, और इसके पश्चात जो है वो बेल की पत्ती खाती थी, बेल पत्त होते ना
1: जी जी।
0: हाँ, तो लिखा है श्री रामचरितमानस में कि बेल पाति मही परे सुखाई, एक सहस संबत सोई खाई। 1000 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ बेल का पत्र ही खाया था, बाकी कुछ नहीं खाया था।
1: इसीलिए तो नहीं भगवान को बेल पत्र चढ़ता है
0: जी, इसीलिए चढ़ता है, उन्होंने खाया है उसके पहले नहीं चढ़ता था
1: जी।
0: अब पुण्य परिहरे सुखानु परना, उमही नाम तब भयउ अपरना। उन्होंने जब बेल पत्र भी छोड़ दिया खाना तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा माता पार्वती का नाम है, और ये नाम इसलिए है, आ माने नहीं, पर्ण मतलब होता है पत्ता, जो पत्ता भी न खाए वो अपर्णा। हाँ, तो ये पहली बार अपर्णा नाम उन्हीं का रखा गया, उन्हीं के नाम पर पड़ा। भगवान शंकर के पास लोगों ने गए, बताया कि भाई तपस्या की है, भगवान शंकर ने विवाह किया और माता पार्वती का व्रत सफल हो गया। कहीं ना कहीं जो ये सावन और भादो, ये कजरी का तीज है, ये हम समर्पित करते हैं भगवान

0: शिव और माता पार्वती,
1: माता पार्वती को। और शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला, जो कल्याण करे वही शंकर। तो ये इसके पीछे एक पौराणिक कहानी थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी।
0: जी, मतलब कजरी के तीज के पीछे माँ पार्वती की बहुत तपस्याएं छुपी हुई हैं।
1: हाँ, मतलब मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बुलंदी पर पहुंचा है तो उसके पीछे संघर्ष होगा, जरूर होगा। कहा भी जाता है कि मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है कई लोग, पर किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो हाँ, आपकी ऊंचाई दिखाई, सोना ना होता है, निधि जी आप तो उसके सोने का कुछ पहनती भी हैं, तो ये सोना निकलता है तो बहुत काला होता है और इसको लोहे में तपाया जाता है
0: जी।
1: तो ये सोने की चमक दुनिया को दिखाई पड़ती है, लेकिन वो कितना तपा है ये सिर्फ
0: वही जानता है।
1: तो जो तपते हैं वो जानते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक सकता नहीं है दोस्त, जो जल रहा है उसे दिए से उजाला होगा।
0: जी बिल्कुल, आप कहना चाहते हैं जो तपते हैं वो चमकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और मुझको लगता है आप मेरी बात से इत्तेफाक भी रखती होंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, तो चमकने के लिए थोड़ा सा
0: तपना पड़ता है।
1: जी हाँ, और तपन सूर्य के जैसी हो तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: आइए भाई, भगवान शंकर की बात हुई तो चलिए भोले जी को याद कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत। फिर आते हैं किशोर कुमार की तरफ और आइए भोलेनाथ जी को समर्पित अपना ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। पर्दे पर है अमजद खान के साथ अमिताभ बच्चन सदी के महानायक और फिल्म का नाम याराना। देखिए बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये है
0: गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ, धड़कते रहिए और सुनते रहिए।

0: जी हाँ जी हाँ। और अब भाई वो घड़ी आ गई।
1: सर कौन सी घड़ी आ गई?
0: अब HMT वाली आई।
1: जी बिल्कुल, लोग सुन सकेंगे अपने पसंदीदा गाने।
0: जी अब जो घड़ी आ चुकी है वो घड़ी आ चुकी है, गीत बजेंगे और वो बजेंगे जो आप चाहेंगे। जी अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतजार करेंगे आपके फोन का और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम इस गीत के बाद करते हैं प्रारंभ। सुनते रहिए रेडियो गन असली 89.6 FM। क्यों सुनते रहिए नेहा जी?
1: क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: जी हाँ, मैंने आपको नेहा जी बोला।
1: जी बिल्कुल सर, आप मुझे यही बोलते हैं।
0: जी हाँ, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आपका नाम नेहा जी नहीं है, आप
1: निधि।
0: जी हाँ, तो भाई अब गीत बजेंगे और गीतों का आनंद उठाइए। आप जो सुनना चाहें वो हम सुनाते हैं आप।

जी हाँ मित्रों, और अब चलते हैं भाई आपके गीतों की तरफ। और पहली फरमाइश हमारे पास पहुंची है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, हमारी प्यारी सी बहन आशु मिश्रा जी सुनती हैं हमको। और उनकी पहली फरमाइश है हनुमान अंश मूवी का पार्वती सॉन्ग। और क्या अच्छी बात है, कल कजरी का तीज है और आज पार्वती जी के ऊपर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको ये गीत भेजने के लिए। फिलहाल सुनते हैं।

आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

जी हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत ही प्यारा सा गीत है भाई अनु जी की फरमाइश पर। और इसके बाद चलते हैं श्री राजेश सिंह जी, जो हमको सुनते हैं मालवीय नगर से, बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता, और गीत भेजा है पीते पीते कभी कभी यू जाम बदल जाते हैं।

हाँ जाम तो बदलते रहेंगे, लेकिन पहले भाई मोहब्बत हो तब तो जाम बदले जाएं। और अब भाई हमारी बहुत ही प्यारी सी श्रोता सोनिया त्रिवेदी की बहुत ही प्यारी फरमाइश, होते होते प्यार हो गया।

जी हाँ, होते होते प्यार हो गया और इस बात को पूरा करेंगी भाई हमको हमारी बहुत ही प्यारी और आदरणीय बहन जी हैं प्रीति शुक्ला जी, जो सुनती हैं हमको बहराइच से और कहती हैं हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। जी हाँ, हम सभी को समर्पित करते हुए प्यार सा गीत, और वास्तव में हम भी यही चाहते हैं आप जहाँ कहीं भी रहें बहुत खुश रहें, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। उसके बाद चलेंगे अरविंद जी की फरमाइश पर, मेरे प्रीतम मेरे बालम।

0: कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाएगा।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती तुम्हें अंधेरे में ही रहना होगा।

जहाँ भी रहे जी हाँ, बहुत ही पैसा गीत हमने एंजॉय किया। और अब चलते हैं अरविंद जी, जो हमको सुनते हैं मनकापुर से, मेरे प्रीतम मेरे बालम।

या भाई भोले हो, भोले हो गया। और भाई जब प्रभु का नाम ले लिया तो माता का नाम कैसे न लिया जाए। हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता पंडित भोलेनाथ जी हैं और गीत उन्होंने बहुत प्यारा भेजा है, तेरी उंगली पकड़ के चला। बहुत ही प्यारा सा गीत पंडित भोलेनाथ जी की सर।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। और अब चलते हैं भाई जुग्गू भाई जी की फरमाइश और शराबी फिल्म का गीत उन्होंने चुना है, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, पर्दे पर अमिताभ बच्चन सदी के महान नायक हैं।

जी हाँ, मतलब चलते हैं भाई, हमारी बहुत ही प्यारी सी फरमाइश निब्बल भाई, भाइयों का भाई निब्बल भाई की फरमाइश, एक डाल के दो फूल खिले, फिल्म का नाम अमर अकबर एंड थाने।

नहीं तो दवा कैसे आएगी?

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
8: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
10: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुका है हम आरे और आपके दिलों की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी बेहद और थोड़ी सी खास। कल दो महान दिवस हैं, एक तो कल हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है 14 सितंबर, और कल ही कजरी का तीज। इन दोनों की आपको हार्दिक हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। हिंदी फले फूले और हम सभी के हृदय में निवास करे, ऐसी मनोकामना। और भगवान शंकर हम सभी के मनोरथ को पूर्ण करें, देवों के देव महादेव, ऐसी उनसे प्रार्थना। अब चलते हैं अपनी गजल की ओर। आज जिस शायरा को हम आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम अना देहलवी है। बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही आराम के साथ अपनी गजलों को कहती हुई चली जाती हैं, और लगता ही नहीं कि जिंदगी का इतना बड़ा सच इतने आसान लफ्जों में इस तरह से भी कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा कि हर सितम सह के मुस्कुरा देना, हर सितम सह के मुस्कुरा देना, मैंने सीखा है गम भुला देना। हर सितम सह के मुस्कुरा देना, मैंने सीखा है गम भुला देना। उंगलियां जो उठाते हैं सब पर, उंगलियां जो उठाते हैं सब पर, आईना उनको भी दिखा देना। है मोहब्बत की आरजू जिनको, है मोहब्बत की आरजू जिनको, उनको मेरा पता बता देना। उनको आता है क्या सिवा इसके, उनको आता है क्या सिवा इसके, हाले दिल सुनना मुस्कुरा देना। अयना है यही मेरा सेवा, सब बोलते हैं व्यवहार को तरीके को, आप जो भी कहें, है अयना है यही मेरा सेवा, अपने दुश्मन को भी दुआ देना। जी हाँ, वास्तव में दुश्मन को दुआ देना आसान काम नहीं होता, लेकिन अना देहलवी कहती हैं कि हम ईश्वर ने अगर हमें आवाज़ दी है, अगर हम शब्दों का प्रयोग जानते हैं, तो किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं करते, सबके लिए बस दुआ ही करते जाते हैं। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक प्यारी सी गजल की तरफ। हो सकता है ये गजल आप बहुत दिनों के बाद सुन रहे हो सकता है आपने हाल ही में सुनी हो, और यह हो सकता है आपके जहन में रही हो लेकिन कुछ दिनों के बाद आई हो। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और शुरुआत करते हैं कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी के साथ। जी हाँ, तो आइए रफ़ी साहब की गाई हुई एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं, और उम्मीद है ये गज़ल आपके दिल को छुएगी, और इसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी हाँ, इस संगीत में अंतराल के उस पास सुनते रहिए, और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: अब सुर में गाना सीखिए पधानी सा ऐप के साथ। AI powered personal music teacher from सारेगामा।

ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। चंदन दास की बहुत ही प्यारी एल्बम मुझे याद है, आई थी तमन्ना, और उस तमन्ना एल्बम का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही प्यारी सी गज़ल जो एहसासात को छूती हुई हमारे पास आती है। चलते हैं ना देहलवी साहिबा की ओर। उन्होंने कहा कि जब कभी हुस्न की पाकीज़ा कहानी लिखना, जब कभी हुस्न की पाकीज़ा कहानी लिखना, पाकीज़ा मतलब पवित्र, श्याम के इश्क में मीरा को दीवानी लिखना, जब कभी हुस्न की पाकीज़ा कहानी लिखना, श्याम के इश्क में मीरा को दीवानी लिखना, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, उस घड़ी बैठ के अंजामे जवानी लिखना। मतलब अगर फूल मुरझाया है तो इसका मतलब ये सब के साथ होता है, हर फूल मुरझाता ही है। जो युवा है वो वृद्ध होगा, और जो वृद्ध है मृत्यु शायद उसका अंतिम सच है। तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, उस घड़ी बैठ के अंजामे जवानी लिखना, जिंदगी जिसके तसव्वुर से संवर जाती है, तसव्वुर मतलब ख्याल, जिंदगी जिसके तसव्वुर से संवर जाती है, मेरे हिस्से में वही शाम सुहानी लिखना, अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ, अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ किस तरह खोई बुजुर्गों की निशानी लिखना। इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, अपना हर किस्सा है गम अपनी जबानी लिखना। इसलिए मैं कहता हूँ, हाले दिल मुझसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे आप रहने दीजिए। ये बात वही है, इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, अपना हर किस्सा है गम अपनी जबानी लिखना, जिक्र जब भी छिड़े तहजीब का दुनिया में है ना संस्कार, जिक्र जब भी छिड़े तहजीब का दुनिया में है ना, इस कलम से कोई तारीख पुरानी लिखना। जी हाँ, वास्तव में जो गजलें हैं, जो नगमे हैं, जो गीत हैं, जो साहित्यकार हैं, वो चाहते हैं कि तरबियत बची रहे, संस्कार बचा रहे, और इसलिए वो अपनी लेखनी से कुछ ऐसा लिख जाते हैं जिससे तरबियत पर असर न पड़े। आइए अब आपने चंदन दास की आवाज़ को सुना। इसके पहले जगजीत सिंह की आवाज़ में हमने आपको बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनाई थी जो लिखी थी डॉक्टर बशीर बद्र ने। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आइए अब जगजीत सिंह की एक प्यारी सी गज़ल आपको और सुनाते हैं, हम तो हैं परदेश में। मिलते हैं आपसे संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, वो लड़की याद आती है छोटे माजिद कि जब ये गज़ल आई थी हमको दौर याद है, हम लोग शायद हाई स्कूल के विद्यार्थी थे लगभग मतलब डेक का ज़माना चलता था, कैसेट बजती थी और जिधर देखिए वो उधर इस गज़ल की धूम रहती थी। आज अचानक हमको याद आ गई तो हमने सुना दिया। मेरे साथ संजय जी हैं पटना से जुड़े हुए, बहुत बहुत आभार आपका। मनीष शर्मा जी को बहुत दिन बाद देख पा रहा हूँ मैं। जी हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप मनीष जी भाई, भूल ही गए आप। और अभिराज पांडे जी NCR दिल्ली से हैं। जी हाँ हेलो, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जी बात करेंगे अब अन्ना देहलवी साहिबा को फिर लाते हैं आपके बीच। उन्होंने लिखा कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली। मतलब कभी कभी जिंदगी में होता है कि अगर आपने कोई उसूल बना लिया है तो फिर उससे टिकना, उससे डिगना नहीं ठीक है, उस पर टिकना बहुत जरूरी है। एक शेर है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी हो, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वही बात अन्ना जी कहती हैं कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली, कभी तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाली। मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली, कभी तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाली, मुझको नजराना ए दिल पेश न कीजिए साहब, मुझको नजराना ए दिल पेश न कीजिए साहब, हर किसी से मैं मोहब्बत नहीं करने वाली। जो शराफत की हदों में कभी रहते ही नहीं, जो शराफत की हदों में कभी रहते ही नहीं, ऐसे लोगों की मैं इज्जत नहीं करने वाली। तूने दिल तोड़ दिया कर दिया महरूम वफा, तूने दिल तोड़ दिया कर दिया महरूम वफा, फिर भी मैं तेरी शिकायत नहीं करने वाली। खूने मजलूम से जो प्यास बुझाए अपनी गरीबों के, खूने मजलूम से जो प्यास बुझाए अपनी, मैं कभी उसकी हिमायत नहीं करने वाली। मेरे दिल ने जिसे चाहा वही सब कुछ है मेरा, मेरे दिल ने जिसे चाहा वही सब कुछ है मेरा। मैं मोहब्बत की तिजारत नहीं करने वाली, तिजारत मतलब व्यापार, मैं मोहब्बत की तिजारत नहीं करने वाली। ऐना मेरी तबीयत में है शोखी, लेकिन शोखी मतलब चंचलता। ऐना मेरी तबीयत में है शोखी, लेकिन दिल शिकन कोई शरारत नहीं करने वाली। मेरा अंदाज थोड़ा सा चुलबुला है, लेकिन किसी का दिल दुखे, किसी को मेरी वजह से कष्ट हो, ऐसा कोई कार्य मैं नहीं कर सकती। बहुत ही आसान लफ्ज़ियात में, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कह देने का हुनर अन्ना देहलवी साहिबा के पास है। और वाबस्ता है वो जिंदगी की हकीकतों से। और कई सारी ऐसी गज़लें उनकी हैं जो मुशायरों की दुनिया की जान हुआ करती थी। चलिए भाई अब आपको ले चलते हैं। अभी तक हमने आपको पंकज उधास की आवाज नहीं सुनाई है। जी हाँ आइए अब चलते हैं, जरा रुक करते हैं पंकज उधास की तरफ और आपसे मिलते हैं इस खूबसूरत सी गजल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुंडा ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप

जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 9:30 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत

नमस्कार श्रोताओं, रात का ये समय हमेशा कुछ अलग होता है। दिन का शोर थम चुका होता है, लेकिन यादों की आवाजें जाग जाती हैं। कई लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं और कुछ लोग अपनी अधूरी बातों के साथ जाग रहे होते हैं। मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें ना कोई खूनी हवेली है, ना कोई चीखती हुई आत्मा, लेकिन यकीन मानिए कहानी समाप्त होने के बाद आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं सिर्फ अपना वादा निभाने लौटती हैं। आज की कहानी का नाम है आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव

रहते थे हरि प्रसाद, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, चेहरे पर सादगी और आंखों में बरसों की ईमानदारी। पूरे 40 वर्षों तक उन्होंने डाकिया बनकर लोगों के घर घर खत पहुंचाए। किसी के बेटे की नौकरी का पत्र, किसी की बेटी की शादी का निमंत्रण, किसी माँ के नाम विदेश से आया संदेश, हर खुशी और हर दुख उनकी इस पुरानी चपड़े की थैली से होकर गुजरता था। रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी एक आदत आज भी नहीं बदली थी। हर शाम वो अपनी पुरानी डाक थैली साफ करते, उसे बड़े प्यार से कपड़े से पोछते और मुस्कुरा के कहते, जब तक ये थैला मेरे पास है, मुझे लगता है मैं अभी भी लोगों की उम्मीदें ढो रहा हूँ। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से डाक बाबू कहते थे। उस दिन भी शाम से बारिश हो रही थी। हरि प्रसाद आराम से बैठ गए, अपनी थैली की फटी हुई सिलाई ठीक करने लगे। फिर अचानक उनके मन में आया, क्यों ना अंदर भी टटोल के देख लें। और फिर अचानक उंगलियां भीतर किसी कागज से टकराई। उन्होंने हैरानी से अंदर हाथ डाला, धीरे धीरे एक पुराना पीला लिफाफा बाहर निकला। धूल जमी हुई थी, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उस पे लिखा नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था। श्री अर्जुन मिश्र, भेजने वाली मीरा, तारीख 16 जुलाई 1994। हरि प्रसाद की आंखें फैल गई। उन्होंने खुद से कहा, हे भगवान, ये खत मेरी थैली में आज तक कैसे रह गया। उनके हाथ कांपने लगे। 40 साल की नौकरी में उनसे कभी ऐसी भूल नहीं हुई थी। उन्होंने लिफाफा मेज पे रखा और गहरी सांस ली। उसी क्षण बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा और सन्नाटा घिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद उन्हें बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री बहुत दूर से कोई पुराना दर्द भरा गीत गा रही हो। हरि प्रसाद ने टॉर्च जलाई। कमरा एकदम खाली था। उन्होंने खिड़की की ओर रोशनी डाली। बारिश की बूंदे कांच पे फिसल रही थी। कोई नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद पड़ोस में से कोई आवाज आ गई होगी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेज पे गई, उनका दिल जोर से धड़क उठा। मेज खाली थी। वो पुराना लिफाफा मेज से उड़के उनकी गोद पे आ गया था। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कभी उठाया भी था। उन्होंने धीरे से हाथ में लिया। लिफाफा बिल्कुल सूखा था, जबकि खिड़की खुली हुई थी और बारिश की फुहारें कमरे में आ रही थी। उसी समय हवा के साथ चमेली की भीनी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हरि प्रसाद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, कौन है, कोई है क्या इस कमरे में? कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। उस रात हरि प्रसाद ने चाह कर भी वो खत नहीं खोला। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन निश्चय किया, कल सुबह चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, ये खत अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेगा। उन्हें तो बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि सिर्फ ये एक खत नहीं, बल्कि 32 वर्षों से अधूरी पड़ी एक कहानी थी, जो अब खुद अपना अंत लिखने के लिए बेताब थी। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हरि प्रसाद को खत की मंजिल तक ले जाना चाहती थी, या ये सब एक बूढ़े डाकिये का भ्रम था? इस रहस्य का पहला पर्दा उठेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुबह हो गई, बाहर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। हरि प्रसाद की आंख में तो नींद थी ही नहीं, बार बार उनकी नजर उसी पुराने लिफाफे पर चली जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो खत उन्हें बुला रहा हो। सुबह की पहली चाय पीकर उन्होंने अपना पुराना झूला उठाया, लिफाफा उसके अंदर रखा और निकल पड़े उस पते की तलाश में जहां उन्हें 35 साल पहले पहुंचना था। सड़कें अभी भी कच्ची पक्की थी, लोग आ जा रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी बह रही थी और बूंदाबांदी वो तो हो ही रही थी, मगर किसी ने भी हरि प्रसाद को रोका नहीं। वो अपनी साइकिल पे चलते गए। गांव बहुत बदल चुका था, जहाँ कभी मट्टी के घर थे अब वहाँ पक्की दीवारें थी। पुराने बरगद की जगह एक छोटा सा बाजार बन चुका था। हरि प्रसाद कई लोगों से पूछ रहे थे, बेटा अर्जुन मिश्र का घर किधर है? हर कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। किसी ने कहा, नाम तो कभी सुना ही नहीं। किसी ने कहा, शायद ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी, यहाँ तो कोई इस नाम का रहता ही नहीं। आखिरकार गांव के चौराहे पर एक बूढ़े चाय वाले ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, अरे आप तो डाक बाबू है ना? हरि प्रसाद मुस्कुराए, बोले, हाँ भाई, पहचाना तुमने? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी पहली नौकरी का खत भी तो आप ही लाए थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और ये चाय की दुकान पे बैठता हूँ। दोनों कुछ पल मुस्कुराए, पुरानी पुरानी बातें अपने मन में याद किया। फिर हरि प्रसाद ने धीरे से पूछा, अर्जुन मिश्र कहाँ मिलेंगे? इतना सुनते ही चाय वाले के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पूछा, आपको इतने साल बाद उनका नाम किसने याद दिलाया? एक खत, हरि प्रसाद ने बहुत धीरे से उत्तर दिया। चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। क्या क्या ये वो मीरा का खत है? हरि प्रसाद चौंक पड़े, तुम मीरा को भी जानते थे? चाय वाले ने गहरी सांस ली, पूरा गांव जानता था उनको। मीरा और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के दो दिन पहले मीरा अचानक गायब हो गई। डाकिया बाबू ने पूछा, गायब हो गई? हाँ, 3 दिन बाद नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली, लेकिन मीरा वो तो कभी मिली ही नहीं, ना उसके बारे में किसी ने कुछ सुना। हरि प्रसाद ध्यान से सुनते रहे। चाय वाले ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं उसने नदी में छलांग लगा दी, कुछ लोग कहते हैं वो नाव में बैठ करके कहीं दूर चली गई और अर्जुन मिश्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। हरि प्रसाद ने अपने झोले को कस कर पकड़ लिया। उन्हें लगा मानो भीतर रखा लिफाफा हल्का सा गर्म हो गया है। उन्होंने झट से झोला खोला, लिफाफा वही था, लेकिन उसमें चमेली की वही भीनी सी खुशबू आ रही थी जो पिछले रात उनके कमरे में फैली थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने रास्ता बताया। गांव के आखिरी छोर पे एक पुराना मकान है, वहीं रहते हैं अर्जुन बाबू अकेले, बिल्कुल अकेले। धीरे धीरे हरि प्रसाद उस मकान के सामने पहुँचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर समय की धूल जमी थी, उन्होंने धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला, फिर अंदर से बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, सामने लगभग 75 वर्ष का एक वृद्ध खड़ा था। चेहरे पे गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। जी कहिए, क्या काम है? हरि प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, क्या आप अर्जुन मिश्र हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया, जी मैं ही अर्जुन हूँ। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने झोले से वो पुराना लिफाफा निकाला, दोनों हाथों से आगे बढ़ाया और बस इतना कहा, अर्जुन जी मैं बहुत देर से आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसी उनकी नजर भेजने वाले के नाम पर पड़ी, उनका पूरा शरीर थरथरा उठा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा। उसी क्षण घर की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक टिक-टिक करके चलने लगी। हरि प्रसाद और अर्जुन दोनों एक साथ उस घड़ी की ओर देखने लगे। अर्जुन की आंखों में भय उतर आया। उसने धीमे स्वर में बोला, डाक बाबू, ये घड़ी तो 30 साल से बंद है। टिक टिक की आवाज और स्पष्ट हो गई, और फिर अचानक चमेली की खुशबू उस कमरे में फैलने लगी। श्रोतागण, क्या ये केवल संयोग था या किसी ने सचमुच समय को फिर से चलाना शुरू कर दिया था? क्या मीरा की कहानी अब खुद अपने शब्दों में सुनाई जाएगी? जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी सजा मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो इंतजार होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। 32 साल 384 महीने और 11,000 से भी ज्यादा दिन अगर कोई किसी का इंतजार करे तो क्या प्रेम बचा रहता है या सिर्फ आदत बन जाती है? आज इस प्रश्न का उत्तर शायद समय स्वयं देने वाला है। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत खोला। हर शब्द जैसे उसके सीने में उतरता जा रहा था। पत्र समाप्त हुआ लेकिन अर्जुन उसी कागज को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ रोते रहे। हरि प्रसाद ने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पे रखा, बोला, अर्जुन जी। अर्जुन ने कहा, नहीं डाक बाबू, आज मुझे बोलने दीजिए। 32 साल से जो शब्द मेरे भीतर कैद हैं, आज उन्हें बाहर आने दीजिए। मीरा, तुम्हें याद है, तुम कहती थी अगर कभी हम बूढ़े हो गए तो शाम को इसी बरामदे में बैठकर बारिश देखेंगे। मैंने ये बरामदा कभी नहीं बदला। हर साल इसकी टूटी हुई कुर्सी ठीक करवाई क्योंकि मुझे लगता था एक दिन तुम आओगी और फिर मुझे बहुत डांटोगी। अर्जुन, तुमने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम्हें पता है मीरा, लोग कहते थे तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा दिल हर बार कहता था नहीं, मेरी मीरा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जरूर लौटेगी क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। अर्जुन ने खत को चूम लिया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने लिखा है तुम मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मीरा, कभी कभी किसी को उसकी सांसों से अलग करके क्या बचाया जा सकता है। मैं जिंदा था लेकिन जिया नहीं, लोग मुझे अकेला कहते रहे, उन्हें क्या पता मैं अकेला था ही नहीं। हर शाम मैं तुमसे बातें करता था, तुम्हारे हिस्से की चाय भी बनाता था। आज भी रसोई में 2 कप रखे हैं। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर उस दिन ये खत मेरी नजर में आ जाता तो शायद। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं डाक बाबू, आज अपने आप को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं थी। अगर ये खत पहले आ जाता तो शायद मैं मीरा को कभी जाने ही नहीं देता और तब हर दिन वो अपने दर्द के साथ मरती रही। हरि प्रसाद फूट फूट के रो पड़े, लेकिन एक डाकिये की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं हार गया, मैं अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे, नहीं आप हारे नहीं हो, आप तो आज भी एक प्रेम कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। घड़ी में 12 बज गए। 12वीं घंटी बजते ही पूरा कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज जैसे किसी ने धीमी कर दी हो। दीपक की लौ बिना हवा के धीरे धीरे कांपने लगी और तभी वही चमेली की भीनी सी खुशबू जो पिछली रात हरि प्रसाद के घर आई थी पूरे कमरे में फैल गई। हरि प्रसाद ने चौक के चारों ओर देखा, अर्जुन क्या तुमने? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, उनके होंठ कांपे, हाँ वो आ गई है। हरि प्रसाद ने घबरा

की पूछा, तुम्हें तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? अर्जुन मुस्कुराए, अरे ये तो वो अपना पसंदीदा गीत गा रही है। जब भी बारिश होती थी वो यही गुनगुनाती थी। गुनगुनाहट धीरे धीरे और पास आने लगी, फिर बरामदे में रखी खाली लकड़ी की कुर्सी अपने आप हल्के से हिलने लगी। हरि प्रसाद का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। फिर गीले पैरों के निशान दरवाजे से कमरे की ओर दिखाई देने लगे। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर आते आते वे निशान सूख नहीं रहे थे बल्कि हल्की चमेली की पंखड़ियों में बदलते जा रहे थे। हरि प्रसाद ने जीवन में पहली बार डर और शांति दोनों को एक साथ महसूस किया। अर्जुन अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उन निशानों की ओर बढ़े। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वो बहुत शांत थे। मीरा, अगर सचमुच तुम हो तो प्लीज इस बार छिपना मत। 32 साल से मैं सिर्फ तुम्हारी खामोशी सुन रहा हूँ, आज एक बार अपनी आवाज सुना दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी अर्जुन के ठीक पीछे एक बहुत धीमी, बहुत परिचित और बहुत ही स्नेह भरी आवाज आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई, इस बार और भी पास। इस बार अर्जुन, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोतागण, कहानी अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां शायद प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होने वाला है। क्या सचमुच 32 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है, या रात अभी कोई और रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी खत का सबसे भावुक और सबसे अलौकिक पल अभी बाकी है। सुनते रहिए 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो, और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ 32 वर्षों का इंतजार पहली बार आवाज बनकर लौटा था। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में एक युवती खड़ी थी। वही मासूम मुस्कान, वही बड़ी बड़ी सी प्यारी आंखें, समय जैसे उसके लिए कहीं रुका ही नहीं था। लेकिन इस बार अर्जुन भागकर उसके पास नहीं गए, वो बस उसे देखते रहे, जैसे डर हो कि पलक झपकते ही फिर वो खो जाएगी काफी समय के लिए। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखें बोलती रहीं। फिर मीरा मुस्कुरा

भाई, इतने सालों बाद भी सिर्फ देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अर्जुन की आवाज टूट गई। अगर बोलने लगा तो शायद रोना बंद नहीं कर पाऊंगा। मीरा की भी आंखें भर गई। रो लो अर्जुन, आज 32 साल का हिसाब आंसुओं से ही पूरा होने दो। अर्जुन एक एक कदम उसकी ओर बढ़े। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं माना कि तुम इस संसार में नहीं हो या तुम मुझे छोड़ के चली गई। सब कहते थे भूल जाओ, लेकिन जिसे दिल हर सांस में महसूस करे उसे कोई कैसे भूल सकता है। मैं हर शाम तुमसे बात करता था, तुम्हारे पसंद का दीपक जलाता था, तुम्हारे पसंद की चाय बनाता था, और जब बारिश होती थी तो एक कुर्सी हमेशा खाली छोड़ देता था। मीरा धीरे से बोली, मैं आती थी अर्जुन। अर्जुन ठिठक के, क्या? हाँ, हर बारिश में जब तुम बरामदे में बैठते थे मैं यही होती थी। जब तुम कहते थे मीरा आज बारिश बहुत हो रही है, तो मैं मुस्कुराती थी। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाती थी, सिर्फ तुम्हारे पास बैठी रहती थी। अर्जुन फूट फूट के रो पड़े। तो फिर मीरा इतना दर्द क्यों दिया? एक बार सामने क्यों नहीं आई? मीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अर्जुन तुम्हें जीना था। जब तक तुम्हारी सांसों में किसी का सहारा बनने की ताकत थी, मुझे लौटने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया है। हरी प्रसाद चुपचाप कोने में खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैंने जीवन में लाखों खत पहुंचाए, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि कुछ खत कागज पर नहीं लिखे जाते, वे दो धड़कनों के बीच लिखे जाते हैं, और उनका पता सिर्फ ईश्वर जानता है। मीरा ने सर झुकाकर प्रणाम किया। डाकिया बाबू, अगर आप उस दिन ये खत पहुंचा देते तो शायद अर्जुन मुझे जीने के लिए मजबूर करता। मैं बहुत बीमार थी और मैं हर दिन उसे टूटते हुए देखती। आज जो कुछ हुआ वो शायद ईश्वर की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर योजना थी। हरी प्रसाद की आवाज भर्रा गई। तो क्या प्रेम का अंत यही होता है? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबूजी, सच्चे प्रेम का अंत नहीं होता, उसकी प्रतीक्षा समाप्त होती है। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। मीरा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन आज चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर अचानक उन्होंने हरी प्रसाद की ओर देखा। डाक बाबू जी, बेटा अगर कभी ऊपर भी डाक खाना हुआ तो वहाँ भी नौकरी कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत से खत अब भी पहुँचना बाकी हो। तीनों हंस पड़े और उसी हंसी में तीनों की आंखें भीग गई। मीरा ने धीरे से कहा, चलो अर्जुन, अब वहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों साथ होंगे। धीरे धीरे कमरे में एक उजली शांत रोशनी फैलने लगी। हरी प्रसाद ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा हो। गांव वालों ने अर्जुन के घर का दरवाजा खुला देखा। सब अंदर पहुंचे। अर्जुन अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, सिर हल्का सा पीछे टिका हुआ था, होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो शायद 32 वर्षों से कहीं खो गई थी। उनकी मुट्ठी बंद थी। जब हरी प्रसाद ने धीरे से उसे खोला तो उसमें वही पुराना खत था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कल रात वहाँ नहीं थी। उस पे लिखा था, डाक बापू धन्यवाद, आपने मेरा खत नहीं पहुँचाया, आपने मेरा इंतजार खत्म किया है, धन्यवाद मीरा। हरी प्रसाद की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने खत को अपने माथे से लगाया। धीरे से बोले, आज मेरी 40 साल की नौकरी सफल

हो गई। उसी समय बरामदे से हवा का एक झोंका आया, खाली कुर्सी धीरे से अपने आप हिली और चमेली की दो ताजा कलियां अर्जुन के चरणों के पास आकर ठहर गई। श्रोताओं, हम जीवन भर लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन शायद प्रेम में कोई कभी खोता नहीं। कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमारी यादों में और कुछ हमारी हर बारिश में। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने बरसों से बात नहीं की, तो उसे याद कीजिए। अगर वो इस दुनिया में है तो उसे अपना समय दीजिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी यादों को अपनी मुस्कान दीजिए, क्योंकि सच्चे प्रेम को आखिरी खत की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल से भेजा जाता है और रूह तक पहुंच जाता है। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। अगली मुलाकात तक अपने अपनों से अपनी बातें अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि कुछ खामोशियां पूरी जिंदगी का इंतजार बन जाती है। नमस्कार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

संगीत तो मेरा देश है और सप्तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसे अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीजों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और उपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हue उस पद पर आगे गईं, जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं

दोनों ने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर पर सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी भारतीय को, हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीज़ों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को स्वर कोकिला कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी न भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो। यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हम अपने लिए, हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में यानी कि एक बड़े से कमरे में उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

आवाज उनकी अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रही। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

सभी संगीतकारों के, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने हैं जिसमें लता जी हैं और आशा जी हैं, आरजी वर्मन साहब जी हैं और उसके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लेकिन लता दीदी ने जब इन सब के साथ में काम किया, इन सब के साथ में गाने गाए, तो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था, हमारी प्यारी लता दीदी। लता दीदी की सादगी, लता दीदी का चलन, लता दीदी की बोली इस तरीके से थी मानो सबको मोह लेने वाली। जब वो सेट पे आती थी तो एक उनकी बहुत ही प्यारी सी आदत हुआ करती थी कि जब वो कोई भी सॉन्ग को गाती थी, जब वो उनके साथ में बैठ करके रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो चप्पल कभी नहीं पहनती थी। आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी बस, तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में 4 चांस लग गए थे। संगीत के साथ साथ उनकी सादगी इस तरीके से फैली जैसे मानो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब फैलती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। बेवफाई के बहुत सारे गाने जब उन्होंने गाए, तो उनमें से कुछ ऐसे गाने जो आज के शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और प्यारा सा गाना।

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गाकर के अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर यह साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे खयाम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो कि गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ए वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया। पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थी जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई ऐसे गानों को गाए जो कि आज हमारे जहन में हमेशा से रहते हैं। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल, हर शैली में अपनी आवाज को इस तरीके से पहुंचाया जैसे मानो कि हम उन्हें सदियों से खोज रहे थे और आज वो हमें मिल पाई हैं। नई पीढ़ी के साथ में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के 2010 के बीच में तो कई ऐसे संगीतकार भी उनके साथ में आए तो भी उनके साथ मिलकर के कई उन्होंने गाने गाए जैसे कि हमारी श्रेया घोषाल जी हैं और उनके साथ में भी उन्होंने कई सारे गीतों को अपनी आवाज दी। तो आइए इस प्यारे से एक और गीत को सुनते हैं जो कि बेवफाई के नाम पर कई हम सबके जहन में आज भी रहते हैं।

गूंजती रहेगी। लता दीदी सिर्फ गायिका नहीं बल्कि सुरों की वह गंगा थी जिनका प्रभाव हमेशा हम सबके जहन में रहेगा। उनकी आवाज हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी धरोहर भी हैं। लता दीदी हमारे संगीत की आत्मा हैं, जिन्होंने अपने स्वरों से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है। उनकी गायकी हमें भक्ति, प्रेम और जीवन के हर रंग का अनुभव कराती है। इसी तरीके से आज का सफर, यानी कि आज का सफर हमारा लता दीदी के साथ उनकी यादों को लेकर के था। मैं हूं आपकी आज एक ख्वाहिश, मिलूंगी एक नए सफर पे, एक नए संगीत के साथ में, एक नए गायक के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर मगर
1: क्या?

खून पसीना बिक जाता है, मौत और जीना बिक जाता है।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9861-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।